0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं। प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: परमेश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

वंदे सूर्य शशांक वन्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। श्रावण प्रभात के इस पुण्य वेला में मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल ट्रेडिशन के तत्वावधान में प्रस्तुत श्रावण मास के इस कार्यक्रम में आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, पूरे देश भर के मंदिरों में भगवान शिव की उपासना हो रही है। भगवान शिव महामृत्युंजय भी हैं। भगवान महामृत्युंजय की और प्रार्थना करते समय कहा है कि हस्ताभ्याम कलशद्वयामृतरसैर आप्लावयन्तं शिरो द्वाभ्याम तौ ददतं मृगाक्षवलये द्वाभ्याम वह

0: तं परम् अङ्कन्यस्तकरद्वयामृतघटं कैलाशकान्तं शिवं स्वच्छाम्भूजगतं नवेन्दुमुकुटं देवं त्रिनेत्रं भजे। ऐसे भगवान जो त्र्यंबक देव हैं, आठ भुजाओं वाले हैं, उनके एक हाथ में अक्षमाला तो दूसरे में मृगमुद्रा, दोनों हाथों से दोनों कलशों में अमृत रस लेकर के और उससे अपने मस्तिष्क को अप्लावित कर रहे हैं, और दो हाथ से उन्हीं कलशों को थामे हुए हैं, शेष दो हाथ उन्होंने अपने अंक पर रख छोड़े हैं, और उनमें दो अमृत पूर्ण घट हैं, श्वेत पद्म पर विराजमान हैं, मुकुट पर बालचंद्र सुशोभित है, मुखमंडल पर तीन नेत्र शोभायमान हैं। ऐसे देवादिदेव कैलाशपति भगवान शिव की हम और शरण ग्रहण करते हैं। हस्ताम् भोजयुगस्तकुम्भयुगलाद् उद्धृत्य तोयम् शिरः सिञ्चन्तम् करयोर्युगेन दधतम् स्वाङ्के सकुम्भैः करौ अक्षत्रङ्मृगहस्तमम्बुजगतम् मूर्धस्तचन्द्रस्रवात् पीयूषार्धतनुं भजे स गिरिजम् त्यक्षम च मृत्युंजयम्। जो अपने दो करकमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकाल करके और उससे अपने और ऊपर वाले दोनों हाथों के द्वारा अपने मस्तिष्क को लगातार सींच रहे हैं, अन्य दो हाथों से दो घड़े लिए हुए और उन्हें अपनी गोद में रखे हुए शेष में रुद्राक्ष और मृगमुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर चंद्रमा निरंतर और अमृत की धारा बहा रहे हैं, उनका पूरा शरीर भीगा हुआ है, तीन नेत्र धारण कर रहे हैं। ऐसे गिरिराज नंदिनी उमा भी जिनके साथ हैं, उनका हम निरंतर वंदन करते हैं, पूजन करते हैं। आज यहीं पर समय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार। श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। बिनु अध तेजी सती असी नारी, इस पद में अध शब्द आया है। अध और अपराध में महान अंतर है। अध उस दुष्ट कर्म को कहते हैं जो वेद आदि द्वारा निषेध होने पर भी जान बूझ कर अपने वासना अनुसार किए जाते हैं, अतः वह शम्य कभी नहीं हो सकता। उनका फल अवश्यमेव भोगना पड़ता है। परंतु अपराध चुक को कहते हैं जो सदा शम्य होती है, क्योंकि वह किसी पाप बुद्धि या कुवासना के कारण न होकर भूल से की जाती है। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया था उसमें कदापि कोई कुवासना न थी। उसका उद्देश्य तो केवल यही जांच करना था।

0: हाँ, कि श्री रघुनाथ जी सचमुच ही सचिदानंद ब्रह्म के अवतार है अथवा राजपुत्र है। केवल भागवत स्वरूप में बोधार्थ सीता का वेश धारण करना अध नहीं कहा जा सकता है और नारी का त्याग केवल अध के ही कारण हो सकता है, परंतु केवल अपराध हो जाने पर जो क्षम्य भी हो सकता है, भगवान शिव के उस क्षमा न करने उपासना में विरोध पड़ने के भय से त्याग दिया। भगवान शिव की इस रघुपति व्रत निष्ठा को धन्य है। उपयुक्त चौपाय में कई कई अर्थ करने वाले बिनु अध पद को विशेष मानकर अधम शिव जी ऐसा अर्थ करते हैं, परंतु सती को यदि अध युक्त माना जाए तो उसके त्याग से श्री शंकर जी के रघुपति व्रत निष्ठा का महत्व ही नहीं रह जाता। फिर जिस मुख्य विषय के उद्घाटन के लिए इस चौपाई की रचना की गई है उसका महत्व ही नष्ट हो जाएगा। यदि कोई शंका करे कि सती ने शिव के मिथ्या भाषण किया था तो वह अध था। इसका उत्तर यह है कि इसे तो शिव जी ने भागवत माया की प्रेरणा समझकर उस पर कुछ ध्यान ही नहीं दिया था। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
2: हरि ओम तत्सत् वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि

श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः, श्री राम दूताय नमः, श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का आज मंडे 17 अगस्त 2026 के इस पावन श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज का दिन अत्यंत पावन और शुभ है। आज श्रावण मास का तृतीय तीसरा सोमवार है तथा आज हम सभी नाग पंचमी का पावन पर्व मना रहे हैं। नाग पंचमी का पर्व हमें भगवान शिव के दिव्य स्वरूप तथा नागों के प्रति आदर, संरक्षण और सनातन संस्कृति की उस भावना का स्मरण कराता है जिनमें संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर का दर्शन किया जाता है। शास्त्रों में नागों को भगवान शिव के आभूषण तथा भगवान श्री हरि विष्णु के अनंत शेष स्वरूप के रूप में भी वर्णन किया गया है। अतः आज का यह दिवस हमें भगवान शिव, शेष नारायण तथा समस्त सृष्टि के प्रति श्रद्धा, करुणा और सम्मान का संदेश देता है। चलिए शिव सती प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। शंकर भगवान जान गए कि सती माता ने परीक्षा तो ली परंतु सही बात नहीं बताए। तुलसीदास जी आगे वर्णन करते हुए कहते हैं,

फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मोह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है।

0: सती माता ने सीता का वेश धारण किया यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। आज इसको यही विराम दो आपके ध्यान के लिए। बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति ही शांति ही शांति। ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद। जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव। प्रिय श्रोतागणों, श्रावणी के पावन उपलक्ष्य में आप सबों को बहुत बहुत बधाई। यह पर्व श्रावण मास का त्यौहार, संकल्प का त्यौहार है। भक्त परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। हे पिता, हम आप सारे सृष्टि के स्वामी हो प्रभु। हे मालिक, हमारे जीवन से सारी बुराइयों को दूर कर दो। और फिर भक्त कहता है, यद भद्रम तन्न आसुव, और जो भद्र है, कल्याणकारक है, वो आप हमें प्राप्त कराएं। सत्य है, जब तक हमारे अंदर से बुराइयां दूर नहीं होंगी, तब तक हमारे जीवन में भद्रता आ ही नहीं सकता। इसलिए बुराई को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हे प्रभु, मैं अपने जीवन से इन बुराइयों को दूर करूंगा। संसार के अंदर अनेक बुराइयां हैं, लेकिन भद्र तो भद्र है। इसलिए भक्त भगवान से कहता है, मेरे जीवन में जितनी बुराई है सब दूर कर दें, और हमारे जीवन में जो भद्र कल्याणकारक है वो आप हमें प्राप्त कराएं। भद्र की प्राप्ति के लिए और अभद्र को दूर करने के लिए हमें हर समय तटस्थ रहना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। भगवान से जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो उसके अनुसार आचरण भी करना चाहिए। अगर हम उसके अनुसार आचरण नहीं करेंगे तो हम जीवन में कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दुर्गुणों के खान को दूर करने के लिए और जीवन में अच्छाई को धारण करने के लिए इस मास हमें तटस्थ रहना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए। आओ इस अवसर पे हम सभी मिल करके निश्चय करें कि हमारे जीवन में जो आज ये दुर्गुण है, इन दुर्गुणों का हम त्याग करेंगे। जैसे पात्र दुर्गुणों से खाली होगा, उसी समय हमारे जीवन में भद्रता आएगा। हम दूसरों के प्रति सुख की कामना करेंगे, हम दूसरों के प्रति कल्याण की कामना करेंगे, और जब तक हमारे अंदर कुविचार रहेगा, हम उनसे दूर होते चले

जाएंगे, उनसे परे हटते चले जाएंगे। तो इस मंत्र के अंदर भक्त ने ईश्वर से यही प्रार्थना करी है कि हे प्रभु, हमारे जीवन में जितने भी दुर्गुण है, दुर्वेशन है, दुर्बुराइयाँ हैं, उन सबों को दूर करें और जो हमारे लिए कल्याणकारी गुण, कर्म, स्वभाव व पदार्थ है वो आप हमें प्राप्त कराएं। इति ओम सम, धन्यवाद।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: गहलोत राजपूत महासभा की ओर से प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में पंडिता सुनीति देवी प्रसाद मुगोल का सादर सप्रेम नमस्ते और इस वेद मास के संदर्भ में प्रस्तुत है मंत्र व्याख्या। ओम सपरियगा

तथ्यथो अर्थान् व्यदधाच चास्वतीभ्यः समाभ्यः। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8। अर्थात परमात्मा है अजन्मा, अनादि, अनंत, नित्य, अजर, अमर और अविनाशी। वह न जन्म लेता है, न ही उसकी मृत्यु होती है। वह निराकार, अरूप और अनश्वर है। उसका कोई शरीर, आकार और रूप नहीं है। वह नस नाड़ी से रहित है। वह अदृश्य और अस्पृश्य है। परमात्मा सर्वदा अजेय और अविभाज्य है। वह असीम और अनंत है। न है कोई उसका उद्गम, आरंभ, न अंत। वह है अगाध, जिसकी गहराई का पता न लगाया जा सके। अथाह और बेअंत। परमात्मा सब मनुष्यों के हृदयों का भेद जानता है, परंतु उसका भेद कोई नहीं जानता। वह सदैव है पवित्र, पाप रहित और निर्विकार। वह दोष, दुर्गुण और दुर्बलता से मुक्त है। वह है स्वयंभू, सनातन, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि और सर्वोत्तम। वह है तेजस्वी, दीप्तिमान, दिव्यमान, प्रभापूर्ण और प्रकाश युक्त। उसका स्वरूप है केवल प्रकाश और आनंद, सब सत्य विद्या और सब प्राणियों का उत्पत्ति कर्ता और आदि मूल ईश्वर ही है। संपूर्ण संसार के सब प्राणी परमेश्वर से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। वह है सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वह उपस्थित न हो। वह सृष्टि की वस्तु वस्तु में विद्यमान है। उसका न कोई स्वामी है, न कोई उत्पादक, न अधिनायक, स्वामी और अधिष्ठाता मुखिया। वह ही है सबका स्वामी। वह महान अद्भुत शक्ति है, जिसकी प्रतिष्ठा और प्रताप, उदारता और ऐश्वर्य, महत्व और महिमा का यश गाते हैं सब विद्वान। वह अद्वितीय वैभवपूर्ण परमात्मा है। उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। वह और वह अकेला ही हमारा आराधना का अधिकारी है। ओम शांति शांति शांति।

0: स्पर्शसम।
1: जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं और पृथ्वी को उर्वरा बनाते हैं, तथा अन्न आदि महत्वपूर्ण पदार्थ उत्पन्न करके प्राणियों का बड़ा उपकार करते हैं, वैसे ही परमात्मा पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों का निर्माण करके नियम पूर्वक चलाते हैं, नियम पूर्वक धारण पोषण करते हैं। सभी मनुष्य उसी परमेश्वर को अपने पिता के समान रक्षक और माता के समान माननीय जानकर उसकी उपासना करें। अनेक प्रकार से पोषण करने वाला परमेश्वर हमें परोपकार करने की प्रेरणा प्रदान करे।
0: ओम इंद्रवायु बृहस्पतिम सुहवे हवामहे यथा नः सर्वम इज्जनः संगत्या सुमना असत्।
1: प्रत्येक जीव सामूहिक कार्यों में सुंदर मन वाला होवे, प्रत्येक संगठित कार्यों में सुंदर विचार वाला होवे। इसलिए हम इंद्र, वायु और बृहस्पति को एक साथ बुलाते हैं और आहुतियों द्वारा सम्मान प्रदान करते हैं, जिनसे मन में सदैव संगठन की भावना बनी रहे। सामूहिक कार्यों में हम सदा जागृत रहें और स्वार्थवश अपने आप को उन श्रेष्ठ कार्यों से अलग न करें।
0: ओम स्तुता सोनो मरुतो मृणयन्तु उतस्तोता मघवाशं भविष्ठः ऊर्ध्वानः सन्तु कौम्या वनानि अहानि विश्वा मरुतो जीषा।
1: मनुष्यों को चाहिए कि जिनमें जैसे गुण कर्म स्वभाव हो उसी के अनुरूप उनकी प्रशंसा करें। प्रशंसा के योग्य वे ही हो जो औरों की उन्नति और सुख के लिए प्रयत्न करें। अत्यधिक प्रशंसा के योग्य वे हैं जो दुष्कर्म एवं पापाचरण को छोड़कर धर्म को अपनाया हो एवं उत्तम शिक्षा और विद्या की वृद्धि के लिए नित्य प्रयत्नशील हो। विद्या से ही मनुष्य ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है, अतः सत्कार के योग्य विद्वान शूरवीर हमारे जीवन को सुखकर और उत्कृष्ट बनाने में प्रशंसनीय योगदान देते रहें।

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति नमस्कार।
1: नमस्कार नीतूषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम कल दोपहर दक्षिण अफ्रीका के डर्बन शहर पहुंचे, जहां वे सादे के राष्ट्र और सरकारी नेताओं की 46वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसका उद्घाटन आज किया जा रहा है। सादेक की 16 सदस्य देशों के अधिकारी इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अंतर्गत दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के समक्ष खड़ी चुनौतियों का बेहतर सामना करने के लिए इलाकाई सहयोग को नई गति देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मामी गावा तोमांगा मामले में आज एक नई कानूनी कार्रवाई शुरू हो रही है। मेडागास्कर के ये व्यवसायी एक बार फिर बेल एंड रिमांड कोर्ट के सामने पेश होंगे। वे जमानत पर रिहाई की मांग कर रहे हैं, जबकि फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने इस पर आपत्ति जताई है। इस मामले में आज और कल होने वाली सुनवाई महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। मामी गावा तोमांगा को अक्टूबर 2025 से मेलरोज के हाई सिक्योरिटी कैदखाने में रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, हंगेरी में एक मोटरवे पर पोलैंड के श्रद्धालुओं को ले जा रही एक बस के उलट जाने से 12 लोगों की मौत हुई है और दर्जनों घायल हुए हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बस चालक को नींद आ जाने के कारण उसने नियंत्रण खो दिया था और ये हादसा पेश आया, उसे हिरासत में लिया गया है। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके को प्रभावित कर रहा अस्थिरता का जोन पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है, जबकि पूर्व से आ रहे कुछ बादल रात के दौरान हमारे इलाके से गुजरेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह और दोपहर बाद रह रहकर बारिश हो सकती है, खासकर पूर्व और ऊंचाइयों पर। रात के दौरान भी पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लेटू पर बारिश की संभावनाएं हैं। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। हवा पूर्व की तरफ से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिणी समंदर में 3 मीटर

0: पृथक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर तथा पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में भी न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सरल प्लाटू पर न्यूनतम 16 से 18, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, साहिली इलाकों पर न्यूनतम 20 से 22, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:30 पर सूर्योदय, शाम को 5:57 पर सूर्यास्त होगा। ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मिलेंगे ठीक 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर, हज़ार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के सभी तो जहाँ में खुशियाँ मना रहे हैं। आप तमाम सुनने वालों को हमारी जानिब से माह नूर, माह रबीउल अव्वल की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। मौज़ सामईन, आज की इस उर्दू नशरियात में आप समात फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक, हम्द, बयान और नातो सलाम। तो आइए आगाज़ करते हैं कलाम इलाही से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

ऐ बनी आदम, हर नमाज के वक्त अपने आप को मुजय्यन किया करो और खाओ और पियो और बेजा न उड़ाओ कि अल्लाह बेजा उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता।

पूछो तो कि जो जीनत व आराइश और खाने पीने की पाकीजा चीजें अल्लाह ने अपने बंदों के लिए पैदा की हैं, उनको हराम किसने किया है? कह दो कि ये चीजें दुनिया की जिंदगी में भी ईमान वालों के लिए हैं और कयामत के दिन सिर्फ उन्हीं का हिस्सा होंगी। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें समझने वालों के लिए खोल खोल कर बयान फरमाता है।

कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो बेहयाई की बातों को जाहिर हो या पोशीदा और गुनाह को और नाहक ज्यादती करने को हराम किया है, और उसको भी कि तुम किसी को अल्लाह का शरीक बनाओ जिसकी उसने कोई सनद नाजिल नहीं की, और उसको भी कि अल्लाह के बारे में ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें कुछ इल्म नहीं।

और हर एक उम्मत के लिए मौत का एक वक्त मुकर्रर है, जब वो आ जाता है तो न तो एक घड़ी देर कर सकते हैं और न जल्दी ही कर सकते हैं। ऐ बनी आदम, हम तुमको ये नसीहत हमेशा करते रहे हैं कि जब हमारे पैगंबर तुम्हारे पास आया करें और हमारी आयतें तुमको सुनाया करें तो उन पर ईमान लाया करो कि अब जो शख्स उन पर ईमान लाकर अल्लाह से डरता रहेगा और अपनी हालत दुरुस्त रखेगा तो ऐसे लोगों को न कुछ खौफ होगा और न वो गमनाक होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया और उनसे सरताबी की, वही दोज़खी हैं कि हमेशा उसमें जलते रहेंगे।

बस उससे ज्यादा जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए। उनको उनके नसीब का लिखा मिलता ही रहेगा, यहां तक कि जब उनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते जान निकालने आए।

आएंगे तो कहेंगे कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे वो अब कहां हैं? वो कहेंगे कि वो हमसे गुम हो गए, और इकरार करेंगे कि बेशक वो काफिर थे। तो अल्लाह फरमाएगा कि जिन्नों और इंसानों की जो जमातें तुमसे पहले हो गुजरी हैं उन्हीं के साथ तुम भी दाखिले जहन्नम हो जाओ। जब एक जमात वहां जा दाखिल होगी तो अपने जैसी दूसरी जमात पर लानत करेगी, यहां तक कि जब सब उसमें दाखिल हो जाएंगे तो पिछली जमात पहली की निस्बत कहेगी कि ऐ परवरदिगार, इन्हीं लोगों ने हमको गुमराह किया था, तो इनको आतशे जहन्नम का दुगना अजाब दे। अल्लाह फरमाएगा कि तुम सबको दुगना अजाब दिया जाएगा मगर तुम नहीं जानते। और पहली जमात पिछली से कहेगी कि तुमको हम पर कुछ भी फजीलत ना हुई, तो जो अमल तुम किया करते थे उसके बदले में अजाब के मजे चखो।

जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुठलाया और उनसे सरताबी की, उनके लिए न आसमान के दरवाजे खोले जाएंगे और न वो बहिश्त में दाखिल होंगे, यहां तक कि ऊंट सुई के नाके में से निकल जाए। और गुनहगारों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं। ऐसे लोगों के लिए नीचे बिछोना भी आतश जहन्नम का होगा और ऊपर से ओढ़ना भी उसी का, और जालिमों को हम ऐसी ही सजा दिया करते हैं।

और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे और हम किसी शख्स को उसकी ताकत से ज्यादा तो जिम्मेदार बनाते ही नहीं, ऐसे ही लोग अहले बहिश्त हैं कि उसमें हमेशा रहेंगे। और जो कीने उनके सीनों में होंगे हम सब निकाल डालेंगे। उनके महलों के नीचे नहरें बह रही होंगी और कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमको यहां का रास्ता दिखाया, और अगर अल्लाह हमको रास्ता न दिखाता तो हम रास्ता न पा सकते। बेशक हमारे परवरदिगार के रसूल हक बात लेकर आए थे, और उस रोज मुनादी कर दी जाएगी कि तुम उन आमाल के सिले में जो दुनिया में करते थे इस बहिश्त के मालिक बना दिए गए हो।

और अहले बहिश्त दोजखियों से पुकार कर कहेंगे कि जो वादा हमारे परवरदिगार ने हमसे किया था हमने तो उसे सच्चा पा लिया, भला जो वादा तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे किया था तुमने भी उसे सच्चा पाया? वो कहेंगे हां। तो उस वक्त उनमें एक पुकारने वाला पुकार देगा कि बेइंसाफों पर अल्लाह की लानत, जो अल्लाह की राह से रोकते और उसमें कजी ढूंढते और आखिरत से इनकार करते थे।

उन दोनों यानी बहिश्त और दोजख के दरमियान आराफ नाम की एक दीवार होगी और आराफ पर कुछ आदमी होंगे जो सबको उनकी सूरतों से पहचान लेंगे और वो अहले बहिश्त को पुकार कर कहेंगे कि तुम पर सलामती हो। ये लोग अभी बहिश्त में दाखिल तो नहीं हुए होंगे मगर उम्मीद रखते होंगे और जब उनकी निगाहें पलट कर अहले दोजख की तरफ जाएंगी तो अर्ज करेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार हमको जालिम लोगों के साथ शामिल न कीजो।

और अहले आराफ काफिर लोगों को जिन्हें उनकी सूरतों से शनाख्त करते होंगे पुकारेंगे और कहेंगे कि आज न तो तुम्हारी जमात ही तुम्हारे कुछ काम आई और न तुम्हारा तकब्बुर ही सूदमंद हुआ। फिर मोमिनों की तरफ इशारा करके कहेंगे, क्या ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम कस्में खाया करते थे कि अल्लाह अपनी रहमत से इनकी दस्तगीरी न करेगा? तो मोमिनों, तुम बहिश्त में दाखिल हो जाओ, तुम्हें कुछ खौफ नहीं और न तुमको कुछ रंजो गम होगा।

0: और दोज़खी बहिश्तियों से गिड़गिड़ा कर कहेंगे कि किसी कदर हम पर पानी बहाओ या जो रिस्क अल्लाह ने तुम्हें इनायत फरमाया है उसमें से कुछ हमें भी दो। वो जवाब देंगे कि अल्लाह ने ये दोनों नेमतें काफिरों पर हराम कर दी हैं, जिन्होंने अपने दीन को तमाशा और खेल बना रखा था और दुनिया की जिंदगी ने उनको धोखे में डाल रखा था। तो जिस तरह ये लोग अपने इस दिन के आने को भूले हुए और हमारी आयतों से मुनकिर हो रहे थे, उसी तरह आज हम भी इन्हें भुला देंगे।
1: सदक अल्लाहुल अज़ीम। ए पाक परवरदिगार, हमें कुरान

शरीफ समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इंसान बनाया, उसका हम पर बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें मुसलमान बनाया, और इस एहसान को कुरान शरीफ में इस तरह बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने अहले ईमान पर बहुत बड़ा एहसान किया कि जब एक रसूल उनमें भेजा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम

बाहम तीर अंदाजी में मुकाबला कर रहे थे। तो आपने फरमाया, ए बनू इस्माईल, तीर फेंको, क्योंकि तुम्हारा बाप तीर अंदाज था और मैं फलां कबीले के साथ हूँ। दूसरे ग्रोह के लोग फौरन रुक गए। आपने पूछा कि तीर क्यों नहीं फेंकते? बोले, अब क्यों कर मुकाबला करें, कैसे मुकाबला करें, जबकि आप उनके साथ हैं। फरमाया, तीर फेंको, मैं तुम सब के साथ हूँ। ये भी अबू दाऊद शरीफ में। हाफिज इब्न हजर ने इस हदीस की शरह में लिखा कि ये लोग इसलिए रुक गए कि वो अपने फरीक पर गालिब आ गए। दरा हाले के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ हैं। अगर ये गालिब आए तो फिर यूं आप भी मकलूब हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने अदब से मुकाबला करना ही छोड़ दिया। इस अदब और एहतराम का नतीजा ये था कि आपकी निस्बत किसी किस्म की बेअदबी सहाबा गवारा न करते। आप मदीना मुनव्वरा आए और सैयदना अय्यूब अंसारी अली रहमतुल बारी के मकान में क़याम फरमाया और वो आपके नीचे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नीचे हिस्से में और उनके अहल आयाल ऊपर के हिस्से में रहने लगे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी बेदार हुए तो कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चलें फिरें, इस ख़्याल से तमाम अहल आयाल को एक कोने में कर दिया। सुबह को आपकी खिदमत में गुजारिश की कि आप ऊपर क़याम फरमाएं। इरशाद हुआ कि नीचे का हिस्सा हमारे लिए ज़्यादा मौजू है। बोले, जिस छत के नीचे आप हों हम उस पर नहीं चढ़ सकते, मजबूरन आपको बालाखाना पे क़याम करना पड़ा। ये मुस्लिम शरीफ किताबुल अशरबा में ये रिवायत मौजूद है। साहबे किराम इतना अदब करते, इतना अदब करते कि जिसका जवाब पूरी तारीख़ इंसानियत में नहीं मिलता। इसलिए लोगों, जब भी सहाबा का तस्करा करो तो बड़े अदब से, बड़े एहतराम से। इसलिए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने महबूब का जानो दिल से अदब किया, हुजूर की अदाओं का अदब किया। अगर नादानिस्ता उनकी ज़ुबान से कोई नामुनासिब कलमा निकल जाता तो उस पर नादिम होते। एक सहाबिया का बच्चा मर गया, वो उस पर रो रही थी। आपका गुज़र हुआ तो फरमाया, अल्लाह से डरो, सब्र करो। बोली,

0: तुम्हें मेरी मुसीबत की क्या परवाह। आप चले गए तो लोगों ने कहा कि अल्लाह की, ये तो अल्लाह के रसूल थे, उन्होंने पहचाना ना था कि ये गुजरने वाले नसीहत करने वाले महबूब हैं। सो जब मालूम हुआ तो दौड़ी हुई आई, अर्ज किया कि हुजूर मैंने आपको पहचाना ना था। अबू दाऊद शरीफ किताबुल जनाइज बाबु सब्र इंद सदमा में ये हदीस मौजूद है। अल्लाह अकबर। किसी शख्स के मुतालिक आपकी निस्बत गुस्ताखी का ख्याल होता तो सहाबा सख्त नाराज हो जाते। एक बार सैयदना अबू बकर सिद्दीक काशाने नबूवत में आए तो देखा कि हज़रत आयशा आवाज़ बुलंद बोल रही है। फौरन उन्हें वहाँ से उठाया और फरमाया कि अभी कभी आपके सामने आवाज़ बुलंद न होने पाए। ये इब्ने माजा में और अबू दाऊद शरीफ किताबुल अदब माजा बाब माजा फिल मजाह में रिवायत। सफ़र में एक बार आप सफ़र में थे, एक बद्दू आया, वहशियाना लहजे में बाबाज़ बुलंद पुकारा, या मोहम्मद या मोहम्मद। तो तमाम सहाबा इकराम ने कहा ये है ये है, ये क्या है, ये मना है। यानी ज़रा सी नामुनासिब बात भी होती तो सहाबे किराम उसे बर्दाश्त न करते। अल्लाह पाक उनके अदब का सदका इस उम्मत को अता फरमाए। अदब इस उम्मत की मीरास है जिससे ये उम्मत महरूम होती चली जा रही है। अल्लाह हमें अपने हबीबुल सलाम और जो भी आपसे मंसूब है उनके अदब की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ल बलाग।
1: अभी आप समाअत फरमा रहे थे जुमा मस्जिद पोर्ट लुइस के खतीब मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इसहाक कातिर साहब की ज़ुबानी एक बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी इन दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। मोहतरम सामईन, हज़रत अनस रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्मो हिकमत के सबसे ज़्यादा जानने वाले थे, सबसे ज़्यादा मोहतरम, सबसे ज़्यादा मुनसिफ, सबसे ज़्यादा हलीमो बुर्दबार, सबसे ज़्यादा पाक दामनो अफीफ, और लोगों को सबसे ज़्यादा नफ़ा पहुँचाने वाले, और लोगों की ईज़ा रसानी पर सबसे ज़्यादा सब्र तहम्मुल करने वाले।

चूम लेते हैं अंगूठे आपका सुनते ही नाम, चूम लेते हैं अंगूठे आपका सुनते ही नाम, आशिकाने मुस्तफ़ा की ये भी एक पहचान है, आशिकाने मुस्तफ़ा की ये भी एक पहचान है। मौज़ सामईन, बुखारी और मुस्लिम में सैयदना अनस रदी अल्लाह ताला अन्से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा हसीन, बहादुर और फयाज थे। इसकी वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों में सबसे अशरफ थे और आपके मिजाज में सबसे ज़्यादा एतदाल था, और जिसमें ये औसाफ हों तो उसका हर फेल बेहतरीन अफ़ाल का नमूना होगा। वो तमाम लोगों में हसीन तरीन सूरत वाला होगा और उसका इखलाक आला तरीन इखलाक का नमूना।

मौजूद सामीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को खूबसूरत नहीं देखा, गोया आपके रुखसार मुबारक में सूरज तैर रहा है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो दीवारों पर उसकी चमक पड़ती थी। हिंद बिन अबी हाला रज़ी

अल्लाह ताला से रिवायत है कि देखने वालों की नज़र में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर अजीम बुजुर्ग और दबदबे वाला था। आपका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे चौदहवीं का चांद चमकता है। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पजीर हो जाएगी। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा।

94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.96 94.

0: 10:52 हो चुके हैं दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं आपके साथ RM3 पर रेडियो मनोरंजन में पूनम, शो आप ही के भक्ति में शक्ति के साथ। सबसे पहले तो हम सभी को कहेंगे नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आज का शो एक ऐसे विषय पर है जिसे देखकर कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग भागते हैं, लेकिन सनातन धर्म इसे पूजता है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे नागदेव की, और आज हम जानेंगे कहाँ से आए ये नागदेव, कौन से नाग किस भगवान के साथ हैं, नाग ने देवताओं की मदद की तो कैसे की, लोग डरते क्यों हैं और नाग पंचमी मनाते क्यों हैं। भक्तों, आज के बाद आपको आप नागदेव को किसी अलग नज़र से देखेंगे। जिस तरीके से हम लोग रोज़ सांप समझ के डरते हैं, उसको अगर हम नागदेव समझ के जानेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आप सभी को हम सबसे पहले तो बधाई देते हैं नागपंचमी की, और शुरू करते हैं आपका भक्ति में शक्ति कार्यक्रम।
1: RM3 Radio.

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: भक्तों 11 बज चुके हैं। भक्तों नाग की कहानी शुरू होती है बहुत पहले से। हमारे शास्त्रों में ऋषि कश्यप का जिक्र आता है। उनकी कई पत्नियां थी और उनमें से एक थी माँ कद्रू। माँ कद्रू ने 1000 अंडे दिए और उन अंडों में से जन्म 1000 नागों का हुआ। तब तक उन्हें नाग देव नहीं कहा जाता था। इन्हीं में से थे वासुकी, शेषनाग,

0: यक्षक नाग, कालिया और कई और। भक्तों यही नाग वंश आगे चलकर देवताओं का सहारा बना। नाग सिर्फ जमीन का जीव नहीं है, वो पाताल लोक का राजा है, स्वर्ग का सहारा है और भगवान का आभूषण भी। इसलिए तो कहते हैं नाग को जब नाग देव की उपाधि मिली तो क्या हुआ, आगे चल के जानेंगे। इंजॉय कीजिए भक्तों ये प्रोग्राम को और इस भजनों को, कह सकते हैं गानों को, जो आपका दिल करे, पर इनको अपने दिल से साथ लगा के चलें।
1: RM3 Radio.

0: भक्ति में शक्ति। भक्तों, एक सच्ची बात है, नागों से डर लगता है, यानी सांपों से डर लगता है। जब सांपों ने इस उपाधि को पा लिया कि वो नाग है, तो का क्या हुआ। जी हाँ, बात कर रहे हैं आज हम नाग पंचमी में नागों की। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि नाग खतरनाक होता है, उसका जहर जानलेवा होता है। लेकिन भक्तों, डर और सम्मान में फर्क होता है। नाग अपने आप नहीं काटता, जब उसे छेड़ा जाए, जब उसे उसके रास्ते में कोई आ जाए, जब उसे डर लगे, तभी वो बचाव करता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम करते हैं। भक्तों, नागों को हमारे पूर्वज समझते थे, इसलिए वो उसे कभी परेशान नहीं करते थे, उसे जबकि पूछते थे, उसके आगे सम्मान से हाथ जोड़ते थे, उसको कहते थे कि आप हमारे देव हैं, आप हमारे पितृ हैं, आप हमारे पूजनीय हैं, और वो उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। भक्त, प्रकृति के हर जीव का अपना स्थान है, सम्मान दो, डर नहीं। इसी प्रकार से किसने उनको सम्मान दिया? जी हाँ, बात हुई, अगर बात की जाए नागों की, तो जिस नाग से हम डरते हैं, वही शिव के गले की माला है। जिसे हम खतरनाक समझते हैं, वही नाग विष्णु जी की शैया है। नाग भगवान के सबसे करीब है, और हम उससे डरते हैं क्योंकि हम हैं इंसान, पर परमात्मा उसी को पूजता है, परमात्मा भी उसी को देखता है। और सबसे पहले हमें परमात्मा के पास जाने से पहले नागदेव के पास जाना होता है। ये भक्ति भजन आप सबके लिए।
1: RM3 Radio.

0: मंथन की कहानी आप सबने सुनी होगी। एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर। देवताओं और असुर में समुद्र को मथा अमृत पाने के लिए, लेकिन मथने के लिए एक रस्सी चाहिए थी, इतनी बड़ी रस्सी जो मंदराचल पर्वत को लपेट सके। और वो रस्सी बनी नागराज वासुकी। उस समय तक तो जाने जाते हैं, पूजनीय माने जाते हैं, तब भी उनको नागों का राजा या नागों का सबसे बड़ा कहते हैं ना, पूजनीय नहीं माना गया था। पर वासुकी जी ने हाँ किया और कहा, मैं अगर इस्तेमाल में आ सकता हूँ कहीं पर भी तो आप मुझे इस्तेमाल कीजिए प्रभु। सोचो भक्त, वासुकी के शरीर पर एक तरफ से देवता खींच रहे थे, दूसरी तरफ से असुर। कितना दर्द हुआ होगा। वासुकी ने दर्द सहा बिना शिकायत किए, क्योंकि देवताओं का काम था और उसने अपना सब कुछ दिया। इसलिए तो महादेव ने जब देखा कि नागदेव इतने कष्ट में है, इतना खून बह रहा है, तब भी वो हार नहीं मान रहे, तो उन्होंने कहा, अगर तुम हार नहीं मान रहे तो आज के बाद मैं तुमको अपना हार बनाऊंगा। तो इसीलिए तो कहते हैं शिव महाराज जी ने अपने गले में उनको हार की तरह उस दिन से जो रखा, आज तक उनके साथ हैं। जो दूसरों के लिए दर्द सहे, भगवान उसे हमेशा अपने करीब रखते हैं।
1: RM3 Radio.

0: 11:24 हो चुके हैं भक्तों, अब बात है नाग पंचमी क्यों मनाते हैं। पहली वजह शिव जी, नाग महादेव का सबसे प्रिय आभूषण है। जब नाग की पूजा करते हैं तो असल में शिव जी की ही पूजा होती है, शिव जी खुश होते हैं। दूसरी वजह विष्णु जी, शेषनाग जो विष्णु जी की शैया है, उनकी पूजा से विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। और तीसरी वजह, सावन में नाग सबसे ज़्यादा बाहर आते हैं बारिश के कारण। हमारे पूर्वजों ने सोचा नाग बाहर हैं, डरना नहीं, पूजो, सम्मान दो तो नाग देवता प्रसन्न होंगे और घर परिवार को संपदर्श से बचाएंगे। यही है कि नाग पंचमी का असल सत्य। भक्तों, आज नाग पंचमी है और अगर नाग देवता को दूध चढ़ाया जाता है, मन से प्रणाम किया जाता है, याद रखो जो भगवान के इतने करीब है उससे डरना किस बात का, वो तो पूजनीय होंगे। हो सकता है कि नागदेव शायद आपके सामने कभी आ जाएं छोटे से रूप में, किसी भी रूप में, उनको मारिए नहीं, उनको वो पूजनीय है, उनको रास्ता दिखाइए, उनको उस जगह पर छोड़ दीजिए जहाँ पर आप, जहाँ पर ह्यूमन ना हो, जहाँ पर इंसान ना हो, जहाँ पर जंगल हो, वहाँ पर छोड़ दीजिए, पर आप मारिएगा नहीं और उनके आगे हाथ जोड़ेंगे तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। 11:25 हो चुके हैं, 11:30 आप जानते हैं कि ये हम शो की समाप्ति करते हैं, पर इसके बाद आप जुड़ पाएंगे डेविड के साथ, चाइनीज़ शो के साथ, और मैं थी आपके साथ पूनम। बहुत बहुत आपको नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई। भोलेनाथ के साथ जुड़े रहो, विष्णु जी के साथ जुड़े रहो और स्पेशली अपने साथ जुड़े रहो। जब आप अपने साथ जुड़ेंगे अपने दिल और दिमाग से तो आप परमात्मा के साथ भी जुड़े रहेंगे।
1: RM3 Radio.

空窗，能够发出金色的光。我挥至一方，抬头便会为你守望。一天天催逼生活在现代化，缤纷星空抛低我寄存繁荣。

0: 94.96 98.2। आप सुन रहे हैं RM3।
1: घड़ी मिला लीजिए, समय दोपहर की ठीक 12 बजे। आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ।

श्रोताओं को भी नमस्कार। सदैक शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा कल एक रात्रि भोज के लिए उन्होंने सभी राष्ट्र और सरकारी नेताओं का स्वागत किया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनकी पत्नी भी इस रिसेप्शन में शामिल हुए। इस मौके पर अपने संदेश में राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि अकेले चलकर कोई भी देश अपनी पूरी क्षमता विकसित नहीं कर पाएगा, बल्कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका संयुक्त सहयोग के साथ ही उचित तरीके से प्रगति कर सकेगा। मॉरिशस को सितंबर महीने के आखिर से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से ईंधन का सप्लाई प्राप्त होना शुरू होगा। इस संदर्भ में गुरुवार को स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और इस भारतीय कंपनी के बीच लंबी अवधि के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। उद्योग और व्यापार मंत्री माइकल सिक्यूएन के अनुसार सरकार की प्राथमिकता है देश में पेट्रोलियम पैदावारों की आपूर्ति का आश्वासन लंबी अवधि के लिए हो। मंत्रिमंडल ने पिछले 17 जुलाई को कंट्रोल ऑफ यूज ऑफ पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस ऑन स्कूल प्रीमाइसेस रेगुलेशंस 2026 अमल में लाए जाने पर स्वीकृति दी थी। इसके तहत छात्र स्कूल में मोबाइल फोन ले जा सकेंगे, लेकिन उसे साइलेंट मोड पर रखना होगा और उसका इस्तेमाल मात्र विशेष कारणों से किया जा सकेगा। ये नियम छात्रों की मौजूदगी में शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ पर भी लागू होंगे। जहां कुछ अभिभावक इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ युवा खुद ये सवाल उठा रहे हैं

0: की आवश्यकता पड़ने पर वे अपने माता पिता से संपर्क कैसे करें। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में हंगेरी में एक मोटरवे पर पोलैंड के श्रद्धालुओं को ले जा रही एक बस के उलट जाने से 12 लोगों की मौत हुई है, दर्जनों घायल बताए गए हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बस चालक को नींद आ गई थी जिसके कारण से उसने बस पर से नियंत्रण खो दिया और यह हादसा पेश आया, उसे हिरासत में लिया गया है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमारा आपका साथ भी आज के लिए यही तक था। अगली बार तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
1: Your news on
2: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
3: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

ना सफर सुहाना सफर घड़ी मना लीजिए समय बिल्कुल 12:12। ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का रेडियो मनोरंजन प्रसारण है और मैं हूँ रत्ना, आप पहुंची हूँ सुहाना सफर के आज के इस सेगमेंट को लेकर। और बिल्कुल दोपहर का समय है तो हम समझते हैं इस वक्त आप लंच की तैयारी कर रहे होंगे या फिर लंच ले रहे होंगे, तो आप सभी को हम कहेंगे बन पीछे और बिल्कुल शुभ आहार, और आहार के साथ साथ प्यारे प्यारे गानों का विहार। बिल्कुल गानों का ये सिलेक्शन हम लेकर आए

हैं आपकी इस दोपहर को और भी मदमस्त बनाने के लिए। और अगर आप भी किसी गाने की फरमाइश करना चाहते हैं, कोई गाना सुनना चाहते हैं जो पुराने ज़माने से यानी 50s, 60s, 70s या 80s के दौर का है, तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़िए ऑन 4028070, या फिर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं ऑन 5250600 नंबर है हमारा। तो बिल्कुल आज के इस सफ़र को सुहाने बनाते हुए हमारे कुछ ऐसे गाने जो बहुत ही यादगार है, बहुत ही लाजवाब है, और सुनने वाले हमारे जो श्रोता हैं वो उससे भी ज़्यादा लाजवाब है। तो चलिए इन लाजवाब श्रोताओं के लिए प्यार भरे गीतों का ये कारवां आगे बढ़ाते हैं फिल्म नूरी के इस अगले गीत के साथ।

0: का सफर।
1: भाई जिंदगी का यही तो उसूल है कि चलते जाना है, चाहे अपनों का साथ छूट जाए, चाहे जिंदगी की राहें बदल जाए, पर जब तक सांसें हैं तब तक हमें चलते रहना है। और ये प्यारा सा गीत फिल्म परिचय से लिया हुआ। वैसे हमारे जितने भी श्रोता हैं इस वक्त बहुत ही प्यार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बेसब्री से इस प्रोग्राम में अपने गीतों की फरमाइश हम तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश में लग चुके हैं। तो ज़रूर कोशिश जारी रखिएगा, 2 बजे तक हम हैं आपका साथ देते हुए। वैसे फ़िलहाल चलिए अगले गीत के साथ हम बढ़ेंगे। और ये जो अगली फरमाइश आई है बनमिया से, शीला जी आप हमारा साथ दे रही हैं और सभी माकुना परिवार

जो बुनमिया से हमारा साथ हमेशा देते रहते हैं. अगले गीत की फरमाइश आप करती हैं उन सभी के लिए, एक हसीना दो दीवाने. तो चलिए, इस फिल्म का ये गाना है मुकेश साहब और लता जी की प्यारी सी आवाज में. भाई जहां चलने की हमने बात की, तो यहां पर भी कदम से कदम मिलाकर चलने वाली ही बातें हो रही है.

0: सुहाना सफर,
1: सुहाना सफर है, मौसम हसीन है और दिल जवां है, बिल्कुल प्यारे प्यारे गीतों के सफर में। ओपेरा हाउस का ये गाना हमने अभी भी सुना, मुकेश साहब और लता जी की प्यारी सी आवाज में, और कुछ ऐसे ही हसीन गीतों से सजाया हुआ ये गुलदस्ता हम आपके लिए बिल्कुल प्रस्तुत कर रहे हैं। और किसी ने हमसे पूछा ये आवाज है किसकी, भाई मैं हूँ रत्ना, आज आ पहुंची हूँ वेदिता की जगह पर। क्यों वेदिता नहीं आई ये बहुत सारे लोग जानते हैं, चलिए अभी थोड़ी ही देर में उनके नाम भी हम डेडिकेट करेंगे ये गाना पर। अगला गाना जो है इस वक्त फिलहाल हम चलाने जा रहे हैं और ये एक गाना है फिल्म मैं चुप रहूंगी। फिल्म का नाम भले मैं चुप रहूंगी पर

मैं कभी चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि अगर मैं चुप हो गई तो भाई हमारी दुकान कैसे चलेगी, हमारे श्रोताओं के लिए हम गाने कैसे चलाएंगे। बिल्कुल, आपके चेहरे की मुस्कुराहट, प्यारी सी हंसी यूं ही बरकरार रहे, क्योंकि आज मन लगाकर दिन है काम करने का, क्योंकि मंडे है भैया। और चलिए इसी के साथ मोहम्मद रफी और लता जी की प्यारी सी आवाज, मैं चुप नहीं रहूंगी लेकिन मैं चुप रहूंगी का गाना आपके लिए हम जरूर चलाएंगे। और ये गाना जाएगा गायत्री जी की ओर से, जो इस वक्त सैंपिया से हमारा साथ दे रही है, और हमेशा की तरह उनकी प्यारी बहन अमृता जो हमेशा साथ जुड़ी रहती है, उनकी तीन प्यारी बेटियां हैं नेहा, क्षिति, दिव्या, साथ है बेटे सुधीर, बेटा कमलेश, बहू है सुधा, और भाभी मीरा के साथ उनकी दो प्यारी बेटियां गिरिशा और मेधा भी हमेशा साथ देती हैं। तो चलिए आज के इस प्यारे से लवली से सफर में जुड़ते हैं, और कुछ नए, कुछ पुराने, कुछ मजेदार गानों के साथ आज का ये सफर हम आपके नाम करते हैं।

0: वाला सफर।
1: भाई किसी ने हमसे कहा कि क्यों होता है दर्द? अरे भाई हर बार दर्द होना जरूरी नहीं है कि प्यार हो गया हो, जाके थोड़ा कोलेस्ट्रॉल चेकअप करवा लीजिए। कई बार हम कहते हैं ना कि सीने में दर्द हो तो हर बार प्यार नहीं होता मेरे दोस्त, कई बार ये एक बहुत ही अलार्मिंग घंटी होती है। वैसे हम इस ब्यूटीफुल से मौसम को नहीं बिगाड़ेंगे, वादा करते हैं, क्योंकि लाजवाब गीतों का सफ़र है, बस आपके चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे यही कोशिश में लगे हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर बिल विद्या से जीवंती जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और ये अगला गाना जो है बहुत ही प्यार से हम चलाने जा रहे हैं, लाजवाब सा ये गीत। और

ये गाना जो है प्यार किया है प्यार करेंगे प्यार में ही तो जीवन बिताना है और प्यार से वे उनके बड़े भैया को जन्मदिन की बेहद बधाइयां देना चाहती है सत्यानंद बागा जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सैं पिया से उनकी प्यारी पत्नी दो बेटियां दामाद बेटा है साथ है बहू नाती पोते और सभी लक्ष्मण परिवार जो बेलवेदिया से इस वक्त हमारे साथ है जुड़े हुए हैं तो सत्यानंद जी आपके नाम करेंगे ये प्यारा सा गाना जो आपकी प्यारी बहन जीवंती ने ढूंढा है आपके लिए और जितने लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं बहुत ही ख़ास मौका है तो इस लाजवाब से मौके को न्यू ना गवाएं अपनों के साथ बस ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं

0: सुहाना सफर।
1: चलिए इस वक्त बहुत सारे लोग हमारे साथ काम से जुड़े हुए हैं और बिल्कुल काम पर भी कई बार हम कहते हैं ना कि रेडियो साइड में बज रहा हो और साथ ही साथ गीतों का ये कारवां बस यूं ही हल्के हल्के मज़ेदार गीतों के साथ आपके मूड को और भी मज़ेदार बना रहा हो। और ज़रूर यहाँ पर चलिए हमारे साथ कुछ ऐसे भी अफसर जुड़े हुए हैं जो इस वक्त हमारे साथ काम पर से लुफ्त उठा रहे हैं सुहाना सफ़र का। तो चलिए डेडिकेट करना चाहेंगे ये अगला गाना और ये है संसीता, साथ है विंडी और रमेश, सुदेश और लाल माटी के सभी पुलिस स्टाफ्स के लिए हम चलाएंगे ये अगला गीत। और इसी के साथ यहाँ पर फुलवंती जी भी हमारा साथ दे रही हैं वाकवा से, पति देवानंद, बेटी है भावना, बेटा उषण हमेशा साथ देते हैं। और इस प्यारे से गीत को चलिए साथ मिलकर एंजॉय करते हैं। वैसे शायद आपको याद होगा इस फिल्म में राज बब्बर जी नज़र आए थे अमृता सिंह के साथ। बहुत ही लाजवाब सा ये गाना, आपके नाम।

0: RM3 Radio. Radio.
1: सुहाना सफर। वैसे हम जानते हैं आज आप वेदिता को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, क्योंकि ये शो भाई वो सजाती हैं और आज हमें मौका मिला है उनको रिप्लेस करने का। वैसे इसके पीछे का कारण जानते हैं? अरे भाई, जन्मदिन है आज उनका, तो वेदिता को हमारी सब सारी रेडियो मनोरंजन, रेडियो मस्ती और MBC की टीम की ओर से उसको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बधाइयाँ। और यहाँ पर हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो बहुत ही प्यार से उनके नाम मैसेजेस भेज रहे हैं, और बस ये प्यार का गुलदस्ता, उनके नाम अगर आप सुन रही हैं वेदिता, तो यहाँ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपके लिए। और हम आपको ये भी बताते चले, आपके बहुत सारे यहाँ पर फैंस एंड फ्रेंड्स

हैं जो आपको दिल से दुआ दे रहे हैं। यहाँ पर माधुरी और परी ही आपको ढेर सारी बधाइयाँ देती हैं और ये प्यारा सा गाना उन्होंने मांगा है खास आपके लिए, आपको बर्थडे विश करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर माधुरी, परी, साहिल, अंजू और आपके सभी टिकटॉक फैंस एंड फ्रेंड्स के ओर से आपको जाएगा ये गाना। चलिए दिल से, हमारे दिल से भी आपके नाम हम यही कहेंगे कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और बस ऊपर वाले का प्यार आप पर हमेशा ढेरों मात्रा में बरसता रहे। ऊपर वाला हमेशा आपको हिम्मत दे, साहस दे, आपके चेहरे की मुस्कुराहट कभी कम ना हो। और ये प्यारा सा गीत हमारी ओर से आपके नाम करना चाहेंगे हम।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. फिल्म थी कर्तव्य 1979 के दौर की ये मूवी और इस फिल्म से लिया हुआ ये प्यारा सा गीत आशा जी की आवाज़ में और ये गाना मांगा है शांति जी ने जो इस वक्त खिपकिया से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वे ये गाना मांगती

हैं रंभा जी के लिए जो इस वक्त स्विट्जरलैंड से, वैसे इस वक्त क्या वे हमेशा स्विट्जरलैंड से रेडियो मनोरंजन, रेडियो मॉरिशस और रेडियो मस्ती के साथ जुड़ी रहती हैं। तो रंभा जी, ये गाना आपके नाम, फिल्म है कर्तव्य आपकी बहन की ओर से।

0: चलिए वैसे समय हो चला है समाचारों के साथ जुड़ने का, पर फिकर नॉट, ये गाने को जारी रखेंगे समाचारों के तुरंत बाद। कहीं मत जाइएगा, सुहाना सफर का ये सफर है और बहुत ही लाजवाब सा ये सफर जारी रखेंगे अभी थोड़ी ही देर में।
1: चौरानवे 95.6 98.2 आप सुन रहे हैं RM3।
2: इससे पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कल एक रात्रि भोज के लिए सभी राष्ट्रों और सरकारी नेताओं का स्वागत किया। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम और उनकी पत्नी भी इस रिसेप्शन में शामिल हुए। इस मौके पर अपने संदेश में राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि अकेले चलकर कोई भी देश अपनी पूरी क्षमता विकसित नहीं कर पाएगा, बल्कि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका संयुक्त सहयोग के साथ ही उचित तरीके से प्रगति कर सकेगा। मॉरिशस को सितंबर महीने के आखिर से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से ईंधन का सप्लाई प्राप्त होना शुरू होगा। इस संदर्भ में गुरुवार को स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और इस भारतीय कंपनी के बीच लंबी अवधि के एक समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। उद्योग और व्यापार मंत्री माइकल सिक्वेन के अनुसार सरकार की प्राथमिकता है कि देश में पेट्रोलियम पैदावारों की आपूर्ति का आश्वासन लंबी अवधि के लिए हो। मंत्रिमंडल ने पिछले 17 जुलाई को कंट्रोल एंड यूज ऑफ पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस ऑन स्कूल प्रीमाइसेस रेगुलेशंस 2026 अमल में लाए जाने पर स्वीकृति दी थी। इसके तहत छात्र स्कूल में मोबाइल फोन ले जा सकेंगे, लेकिन उसे साइलेंट मोड पर रखना होगा और उसका इस्तेमाल मात्र विशेष कारणों से किया जा सकेगा। ये नियम छात्रों की मौजूदगी में शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ पर भी लागू होंगे। और विदेश में रूस के कार्यवाहक गवर्नर ने कहा है कि यूक्रेन के बेलगोरद क्षेत्र में रात भर हुए मिसाइल हमलों में 6 लोग मारे गए और 4 घायल हो गए। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
4: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
5: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
6: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: सुहाना सफर सुहाना
1: सफर। भाई वैसे हमने ये गाना नहीं काटा, ये किसी तकनीकी खराबी के वजह से ये गाना बीच में रुक गया है, पर चलिए इसी के साथ आशा करते हैं कि आप

खुश तो हुए होंगे। और चलिए इसी के साथ यहाँ पर लाजवाब गीतों का सिलेक्शन आपकी ओर से हम तक आ रहा है और बहुत सारे लोगों की जो कह सकते हैं कि बेस्ट विशेस है वेदिता के लिए, बिल्कुल उसको हम जारी रखेंगे। और यहाँ पर शमीमा हमारे साथ जुड़ी हुई है पॉइंटो साहब से और कहती है जिंदा दिल का प्लीज गाना चला दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने ये गाना बहुत लंबे अरसे से नहीं सुना है। और ये जो गाना है नीतू सिंह और ऋषि कपूर पर फिल्माया गया, बहुत ही लाजवाब सी जोड़ी। और इसी के साथ चलिए इस गीत को साथ मिलके सुनते हैं और बहुत ही प्यारा सा गाना सुहाना सफर के बीच हम लेकर आए हैं आपके नाम।

0: सुहाना सफर
1: सुहाना सफर
2: बिल्कुल कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये सफर जारी है दोपहर के 2 बजे तक
1: और मैं हूँ आपका साथ देने के लिए आपका दिल लुभाने के लिए और लाजवाब गानों का जो सिलेक्शन है वो तो आपने किया है हम तो बस यहाँ से चला रहे हैं आपके लिए वो गाने और यहाँ पर बिल्कुल हमारे साथ बाबू अनातवा जो हमेशा साथ देते हैं काठबोन से उनके सभी परिवारों के साथ और अनातवा परिवार के साथ साथ उनके बेटे हैं विदेश और पत्नी है उषा और उनकी बेटी है भावना और मुकेश साहब के बहुत ही बड़े फैन कह सकते हैं तो चलिए फिल्म आशिक का ये गाना आपको आशिक ना बना दे तो नाम बदल देने हमारा मैं

गाना है फिल्म भाभी का और 57 के दौर का ये गाना मोहम्मद रफी और लता जी की प्यारी सी आवाज में ये गाना चुनती हैं राधा जी मोचिदा से राधा बाल गोबिन और ये गाना जाएगा उनकी प्यारी सखी शोभा जी के लिए जो हमेशा वाकवा से जुड़ी रहती हैं। तो बस एंजॉय कीजिए सुनहरी धूप के साथ, कहीं कहीं बादल घिराए हैं, कहीं मौसम में परिवर्तन, पर चलिए गानों का ये लाजवाब सा

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: चलिए सफर सुहाना तब होता है जब सुहाने से हमारे श्रोता भी साथ देते हैं और यहाँ पर बहुत सारे प्यारे प्यारे श्रोता इस वक्त जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ। वैसे आपको याद दिला दें कि आप मॉरिशस से दूर भी हो जाएं तब भी हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं ऑन www.radiomanoranjan के साथ, बिल्कुल www.mbcradio.tv के साथ रेडियो मनोरंजन पर आप हमारे साथ ट्यून रह सकते हैं। और इस वक्त बिल्कुल 1:22 हो चुके हैं। चलिए संजना नाई को यहाँ पर जन्मदिन मना रही हैं और बहुत सारी विशेस उनकी प्यारी सासू माँ जयश्री, ससुर जी हैं सुरेश और पति जेविन जो है तायाक से उनको ढेर सारा प्यार भेजते हैं। तो बस आप भी खुश रहें और आज का दिन बहुत ही प्यार से अपनों के साथ बिताएं और ये प्यारा सा गाना हम ज़रूर आपके नाम करना चाहेंगे। वैसे यहाँ पर बॉस अनिल भी हमें मैसेज कर रहे हैं, साहिल उष

परी माधुरी, वे एक बार फिर वेदता को जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयां देना चाहते हैं। तो चलिए ज़रूर हम आपका नाम ज़रूर जोड़ना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में, और दिल से बहुत सारे लोग वेदता को आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपका नाम भी आज के इस कार्यक्रम में शामिल ज़रूर करेंगे। बस साथ देते रहिएगा।

जिंदगी में इससे बड़ी दुआ कोई हो नहीं सकती। और बिल्कुल, जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं उनके लिए आज का दिन नहीं पर आने वाला हर पल खुशियों से भरा हो। चलिए इसी के साथ लेते हैं ये अगला गाना, और ये है सलमा आगा की आवाज में रखा हुआ फिल्म निकाह से लिया हुआ गीत। और बिल्कुल इस फिल्म में दीपक पराशर नजर

सुहाना सफर, सुहाना सफर। और इस वक्त बिल्कुल 1:30 हो चुके हैं। नंदा जी पाई से जुड़ चुकी हैं और कहती हैं, भाई पन्ना की तमन्ना है कि हीरा कहीं खो जाए, और ये गाना प्लीज हमारे लिए जरूर चला दीजिए। और फिल्म है हीरा पन्ना, बिल्कुल बहुत ही लाजवाब सा गाना है। ये गाना है किशोर कुमार और लता जी की प्यारी सी आवाज में। और चलिए, इस प्यारे से गीत को बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, और जिन जिन लोगों को ये गाना पसंद आता है, चलिए सोचिए कि ये गाना हम आप ही को लेकर, आप ही के बारे में सोच कर चला रहे हैं।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: भाई भुलाने थोड़ी देंगे आपको। सुहाना सफर जो है वो रोज चलता है 12 बजे से 2 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर, जहां पर बेहतरीन से बेहतरीन पुराने गाने हम चलाते हैं और आप मजा लूटते हैं। अब ऐसे गाने चले तो मज़ा लूटने का मज़ा ही कुछ और होता है ना। और बिल्कुल पगला कहीं का फिल्म से लिया हुआ ये प्यारा सा गीत हमने अभी भी चलाया मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, 1970s के दौर का ये गीत रहा। चलिए एक और प्यारा सा गाना हमारे दिमाग में कब से बज रहा था और हमने सोचा ये गाने को हम ज़रूर शामिल करना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम में। 1967 के दौर का ये गीत है, लव इन टोक्यो फिल्म से लिया हुआ। इस फिल्म में शायद आपको याद होगा आशा पारेख नजर आई थी, साथ नजर आए थे जॉय मुखर्जी। लव इन टोक्यो

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: भाई जब प्यार हो जाए तो कहते हैं ना कि जिंदगी में आप उन सारी छोटी छोटी खुशियों को अपने आंचल में समेट लेना चाहते हैं, और अगर प्यार ना हो तो चाहे जिंदगी भर की खुशियां आपके कदमों में क्यों ना पड़ी रहे, उसकी कदर नहीं होती। इसीलिए सिर्फ प्यार ही वो चीज़ है जो हमें ज़िंदगी जीने के लिए एक ईंधन का काम करता है। और इसी के साथ यहाँ पर नम्रता बारोट भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, कहती हैं क्या लाजवाब गानों का सिलेक्शन है भाई, सुनने वाले भी तो कमाल है। चलिए इसी के साथ यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं पृथ्वीराज जी, जो इस वक्त त्रिवोली से बिल्कुल जुड़ चुके हैं, आशा भोसले को, आशा भोसले के गानों को बेहद पसंद करते हैं, और उन्होंने फरमाइश की है फूल और पत्थर फिल्म से एक प्यारे से गीत की। 1966 के दौर का ये गीत है तो ज़रूर आपका दिल खुश करेंगे। और बिल्कुल कुछ समय रह गया है और हम आपको याद दिला दें, 2 बजे के समाचारों के बाद आप जुड़ पाएंगे संस्कृति की बातें कार्यक्रम के साथ, जहां पर हमारे साथ जुड़ेंगी किरण जान की। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गीत, जिंदगी से प्यार करना सीख ले।

तो चलिए इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को बस यहीं पर समाप्त करेंगे। साखरी गीत के साथ किशोर कुमार की प्यारी सी आवाज और जिंदगी का ये हसीन गाना और इसी गीत के साथ सुहाना सफर यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और ऐसे सफर में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं विधिमा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को नमस्कार। सादिक, आज 17 अगस्त को दक्षिण गणराज्य के डर्बन शहर स्थित डर्बन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में अपने राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का 46वां आम शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। 46वें सादिक शिखर सम्मेलन का विषय एक न्यायपूर्ण दुनिया की तलाश में बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि और महत्वपूर्ण खनिज परिवर्तन के माध्यम से मजबूत, टिकाऊ और समावेशी औद्योगिकीकरण है। सादिक के सर्वोच्च नीति निर्माण निकाय के रूप में ये शिखर सम्मेलन इलाकाई सहयोग, एकीकरण और विकास के लिए रणनीतिक प्राथमिकताएं तय करता है। सादिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम भाग ले रहे हैं। मॉरिशस को सितंबर महीने के आखिर से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से ईंधन का सप्लाई प्राप्त होना शुरू होगा। इस संदर्भ में गुरुवार को स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और इस भारतीय कंपनी के बीच लंबी अवधि के एक समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। उद्योग और व्यापार मंत्री माइकल सिक्वेन के अनुसार सरकार की प्राथमिकता है कि देश में पेट्रोलियम पैदावारों की आपूर्ति का आश्वासन लंबी अवधि के लिए हो। मंत्रिमंडल ने पिछले 17 जुलाई को कंट्रोल एंड यूज ऑफ पर्सनल मोबाइल डिवाइसेस ऑन स्कूल प्रीमाइसेस रेगुलेशंस 2026 अमल में लाए जाने पर स्वीकृति दी थी। इसके तहत छात्र स्कूल में मोबाइल फोन ले जा सकेंगे, लेकिन उसे साइलेंट मोड पर रखना होगा और उसका इस्तेमाल मात्र विशेष कारणों से किया जा सकेगा। और विदेश में जून में हस्ताक्षरित ईरान अमरीका समझौता ज्ञापन बातचीत के गतिरोध के बीच समाप्त हो गया है। IRGC कमांडर ब्रिगेडियर जनरल के अनुसार नई अधिकतम अवरोध नीति के तहत ईरान का रक्षात्मक रुख अब आक्रामक रुख में बदलने के लिए तैयार है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
2: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
3: You are listening to your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: संस्कृति की बातें नमस्कार, संस्कृति की बातें कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ। संस्कृति की बातें आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ एक पर्व पर, और वह है रक्षाबंधन। देश भर में रक्षाबंधन के लिए राखी की जो बिक्री है वह बहुत ही ज़ोर शोर से वो चल रही है। हर तरफ राखी ही राखी नज़र आ रही हैं, साथ में बहनें और भाई भी बहनों और भाइयों के लिए तोहफे खरीदने में लगे हुए हैं। इधर श्रावण मास चल रहा है, श्रावण मास की पूर्णाहुति के दिन हम रक्षाबंधन मनाएंगे। तो इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ संस्कृति संस्थान की को फाउंडर श्रीमती सविता तिवारी जी स्टूडियो में उपस्थित हैं। सविता जी नमस्कार।
1: नमस्कार किरण जी, बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए।
0: आप स्टूडियो में आई इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चाहते हैं कि हम अपने श्रोताओं के साथ कुछ सांस्कृतिक जो बातें हैं रक्षाबंधन को लेकर और इस दिवस को लेकर, एक पूरा मास चल रहा है श्रावण मास जिसकी पूर्णाहुति पर हम ये बहुत बड़ा दिन मनाएंगे, और यह दिन सिर्फ लड्डू खाने का और राखी का धागा बांधने का नहीं होता। जब हम इसकी गहराई में जाएंगे तो देखते हैं कि ये चंद्र से जुड़ा हुआ है, यह श्रावण मास से जुड़ा हुआ है, और फिर साथ में जो पारिवारिक वातावरण बनता है उसका भी इससे बहुत गहरा संबंध है, और फिर इसके अलावा हम रक्षाबंधन के दिन एक और बड़ा दिन मनाते हैं और वह है संस्कृत दिवस। और संस्कृत दिवस की जब बात करते हैं तो आपकी जो आपका जो योगदान है संस्कृत की पढ़ाई को लेकर, संस्कृत की चल रही कक्षाओं को लेकर, हम चाहते हैं कि इस योगदान को आप हमारे श्रोताओं और हमारे दर्शकों के साथ आज बाटे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूँ सविता जी, आप हमें इस रक्षाबंधन के बारे में थोड़ा बताएं। रक्षाबंधन आखिर हम क्यों मनाते हैं, ज़रा इस पर हम चर्चा करते हैं।
1: जी बहुत धन्यवाद इस परिचय के लिए। तो रक्षाबंधन की हम बात करते हैं, पर्व क्यों मनाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिर्फ रक्षाबंधन के लिए नहीं, सभी त्योहारों के लिए
0: ज़रूर।
1: और एक बात सबको अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि जो सनातन धर्म के जितने भी पर्व हैं वो एक ही उद्देश्य होता है उन सभी का, कि हमें एक अच्छा इंसान बनने की तरफ हमें बढ़ना है। एक कदम हर त्यौहार हमें उस ओर आगे बढ़ाना है, एक कदम लेना ही है हमें बेहतर इंसान बनने के लिए। हमें हमारी कोई ना कोई कमी हमें पूरी करनी होती है, कमी को हमें दूर करना चाहिए। हर त्यौहार हमें कुछ ना कुछ सिखाता है,
0: और हर त्यौहार हमको अपनी संस्कृति से और गहरा रिश्ता जो है उसको जोड़ता है।
1: बिल्कुल। तो चाहे वो दिवाली हो, जब हम कहते हैं कि अंधेरी रात होती है उसमें दिया जलाते हैं हम, तो उसका उद्देश्य ये है उस त्यौहार का कि हमें जीवन में अंधेरा तो आएगा ही, लेकिन हमें रोशनी जीवन में जलाए रखनी है। और साल भर में अगर आपके जीवन में कोई भी कठिन घड़ी आई है और आप उसमें संबल रख पाए हैं तो वो आपने दिवाली मना ली।
0: जी हाँ,
1: वो त्यौहार मना लिया। वैसे ही गणेश चतुर्थी, कि गणेश जी की छोटी छोटी आंखें होती हैं, बड़े कान होते हैं, ज़्यादा सुनना चाहिए,
0: कम पेट होता है,
1: हाँ कम बोलना चाहिए। हाँ। तो ये त्यौहार अगर आपने ये सीख लिया गणेश जी से कि कम बोलना है, ज़्यादा सुनना है, फोकस्ड रहना है,
0: पेट
1: में पचाना है, तो आपने गणपति मना ली। वैसे ही रक्षाबंधन, कि एक दिन आपने बहन को राखी, बहन ने भाई को राखी बांधी, भाई ने गिफ्ट दिया, ये त्यौहार मना लिया। लेकिन अगर साल भर आपने वो वादा निभाया कि कैसी भी सिचुएशन आए, कैसी भी स्थिति हो, आप भाई के साथ खड़ी रहीं, आप बहन के साथ खड़े रहे, तो आपने वो त्यौहार मनाया। तो ये एक भाई बहन का त्यौहार है। बहुत सारे हमारे हिंदू धर्म में त्यौहार हैं अलग अलग रिश्तों के लिए, जैसे करवा चौथ है पति के लिए, अलग अलग त्यौहार हैं, वैसे ये भाई बहन का एक त्यौहार है। तो आज का जो समाज है उसमें ये त्यौहार और महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम फैमिली बॉन्डिंग की बात करते हैं, बाहर बहुत सारी चीज़ों से बच्चे घिरे हुए हैं, तो ये इस बॉन्डिंग को और ज़्यादा मजबूत करने का एक पर्व है। भाई बहन के लिए दो पर्व आते हैं साल भर में, रक्षाबंधन और भाई दूज, है ना। एक दिन भाई जाता है बहन के घर, एक दिन बहन जाती है भाई के घर। तो कितना भी मनमुटाव हो, पता था हमारे जो जिन्होंने शास्त्र लिखे, जिन्होंने हमारा धर्म बनाया, कि कठिन समय आएगा ही, बहन भाई के जीवन में मनमुटाव होगा ही। दो त्यौहार ऐसे

0: बनाए कि जुड़ाव बना रहे, घर घर बंधा रहे, है ना। माँ बाप सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं? जब बच्चे अच्छे से रहते हैं।
1: ज़रूर।
0: तो ये त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है कि पारिवारिक समरसता बनी रहे। बहन भाइयों के बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें लड़ते हैं। छोटे बच्चे होते हैं वो तो चलो ठीक है, लेकिन बड़े जैसे जैसे होते हैं तो बड़ों के साथ बड़ी समस्याएं आती रहती हैं। तो ये एक बड़ा त्यौहार रहा। इसकी एक ऐतिहासिक कहानी है जो मैं दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगी।
1: अवश्य।
0: जो राजा बलि है, जब रक्षा सूत्र बांधती है बहन भाई को, तो एक मंत्र बोला जाता है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वाम अभिबध्नामी रक्षे माचल माचल, कि जैसे लक्ष्मी जी ने राजा बलि को बांधा था वैसे मैं आपको बांध रही हूँ और आपको हर कदम पे मेरी रक्षा करनी है। कथा ऐसी आती है कि वाम राजा बलि थे, बड़ा यज्ञ कर रहे थे और वो यज्ञ पूर्ण होता तो वो सभी त्रिलोक के अधिपति हो जाते, बहुत शक्तिशाली हो जाते। तो सब देवताओं ने जाके भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब वामन अवतार लिया विष्णु भगवान ने और यज्ञ के बीच में वो जाते हैं कि बलि राजा है वो तो दान के लिए प्रसिद्ध थे, तो उन्होंने जाके कहा, तो राजा बलि भी प्रसन्न हो गए कि इतना छोटा सा ब्राह्मण आया है। उन्होंने सबसे ऊँचे आसन पर बैठाया उनको कि आप बैठो, मैं आपको क्या चाहिए ब्राह्मण देवता, मैं आपकी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। लेकिन शुक्राचार्य थे उनके गुरु, उन्होंने कहा नहीं, ये विष्णु आया है, तुमसे सब कुछ मांग लेगा। तो राजा बलि इतने प्रसन्न हुए कि विष्णु मेरे से मांगने आया है, इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। तो उन्होंने कहा मांगो आप। तो उन्होंने कहा मुझे सिर्फ 3 पग धरती चाहिए, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं क्या करूँगा ज़्यादा का, मुझे सिर्फ 3 पग धरती चाहिए जिस पर बैठ के मैं तपस्या कर सकूँ। तो राजा बलि समझते थे, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है। तो एक पग में वो बड़े हो गए वामन अवतार, एक पग में पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में उन्होंने स्वर्ग नाप लिया, जो राजा बलि जिसके अधिपति ऑलरेडी थे
1: जी।
0: तो फिर बोला आप तीसरा पग मैं कहाँ रखूँ राजा बलि? तो राजा बलि ने कहा कि ये तो आपने ले लिया, शरीर मेरा है, मेरे सर पे रखिए। तो उन्होंने सर पे रखा और उसे सुतल लोक में बलि को पहुँचा दिया। फिर नारायण इतने प्रसन्न हुए कि बलि तुम कुछ मांगो मुझसे, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें पता था कि मैं नारायण हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ ले लूँगा। तो उन्होंने कहा भगवान मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये सुतल लोक है, अंधेरा है, मैं जब आंखें खोलूँ तो मैं आपको देखूँ, आप यहीं रहो। तो उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु, मैं तुम्हारा द्वारपाल बन के रह जाता हूँ। तो वो द्वारपाल बन के सुतल लोक में राजा बलि के द्वारपाल हो गए नारायण। अब वहाँ लक्ष्मी जी परेशान कि भगवान चले गए, पति चले गए, अब क्या करूं, परेशान। तो नारद जी ने आके उनको सलाह दी, जाओ राजा बलि के पास। तो माता जी आई लक्ष्मी जी, एकदम नारी का रूप नॉर्मल रख के, और वहाँ आके वो थोड़ी रो रही थी गेट पे खड़े होके। तो राजा बलि ने कहा क्यों रो रही हो? तो मेरा कोई भाई नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे बना लो अपना भाई। तो तब पक्का बना लूँ? तो उन्होंने उनको राखी बांधी, लक्ष्मी जी ने राखी बांधी है राजा बलि को। राजा बलि ने कहा अब कुछ मांगो आप। तो वो बोलती है मेरा पति आपके यहाँ द्वारपाल है, वो मुझे वापस दे दो। तो फिर वो उनको वापस दे देते हैं। तो ये बोलते हैं लक्ष्मी जी ने कहा कि फिर वो दोनों आशीर्वाद दे के जाते हैं उनको कि हम आपने हमारी रक्षा करी, हम आपकी रक्षा करेंगे। तो ये आज के समय में ये एक म्यूचुअल है
1: जी,
0: है ना, कि राजा बलि ने उनको जानते हुए सब कुछ दे दिया और उन्होंने जाके वापस अपना लिया। तो उन्होंने अपना रक्षाबंधन तब से मनाया जाता है। और एक कथा और आती है, सबको पता ही होगा, जब द्रौपदी शिशुपाल वध करते हैं कृष्ण, तो उनका चक्र जब चलाते हैं तो उनकी उंगली में थोड़ी चोट लग जाती है। तो द्रौपदी उनको थोड़ा साड़ी का छोटा सा चीर बांधती हैं। तो वो कहते हैं द्रौपदी जब तुम्हें आवश्यकता हो मुझे पुकारना, मैं आऊँगा रक्षा करने। फिर जब चीर हरण होता है द्रौपदी का तो वो बुलाती हैं
1: हाँ।
0: और वो छोटे से टुकड़े का वो कितना उसे वापस करके देते हैं
1: जी हाँ।
0: तो ये बहुत ही इमोशनल मुझे थोड़ी लगती हैं ये कहानियाँ, लेकिन ये महत्व बताती हैं हमारे जो शास्त्र हैं, हमारी जो त्यौहार हैं, इनका ये इसका बेस है, सार है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर जो गिफ्ट लेना देना, अच्छी राखी खरीदना,
1: ये तो बात की बात है,
0: ये बात की बात है, हमें मूल नहीं भूलना चाहिए।
1: ज़रूर
0: जी,
1: ज़रूर। और ये जो कार्यक्रम अभी चल रहा है, हमारे श्रोता जानते हैं, हमारे दर्शक भी, कि ये अप्रवासी घाट ट्रस्ट फंड के सहयोग से चलता है। और अप्रवासी घाट हमारे पूर्वजों का जो विरासत है, उनकी जो धरोहर है, उसको लेकर हम काफ़ी शोध करते हैं
0: जी।
1: और एक परियोजना उसमें मौखिक इतिहास ओरल हिस्ट्री भी है, जिसका संचालन मैं खुद करती हूँ।

0: हूँ और इस परियोजना के तहत हमने जब बुजुर्गों से सवाल जवाब किए हैं तो हमको ये पता चला है कि रक्षाबंधन मॉरिशस में इतने पुराने समय से नहीं मनाया जा रहा जितना कि फगवा मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं। गरीबी के समय में भी हमारे पूर्वज जब यहाँ पर आए 1834 से ये दो पर्व वो हमेशा से मनाते रहे थे। लेकिन रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो 1900 के बाद से इसको मनाने की प्रथा शुरू हुई। कैसे इसकी प्रथा शुरू हुई? या तो फिल्मों को देखकर या फिर मॉरिशस में भी जब भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन चला, भारत को स्वतंत्रता मिली तो यहाँ भी कुछ ऐसे सुधारक थे, ऐसे प्रवर्तक थे धर्म और संस्कृति के, जैसे प्रोफेसर वासुदेव बी सिंधुयाल, जिन्होंने एक आंदोलन चलाया था कि अगर आप चाहते हैं कि इस देश में आपकी संस्कृति जीवित रहे, आपका धर्म चलता रहे, तो आपको सबसे पहले अपने जो पर्व हैं वो मनाने चाहिए। और फिर हम लगभग 1930-1940 की बात कर रहे हैं, तब से हमारे देश में जो भारतीय पर्व हैं वो और गहराई से मनाने की परंपरा शुरू हुई। इसमें गंगा स्नान भी है, इसमें रक्षाबंधन भी उनमें से एक है। तो हम चाहते हैं कि आप हमें जरा ये बताएं कि ये रक्षाबंधन जो मॉरिशस में 1900 के बाद से शुरू हुआ, भारत में आपको तो पता ही होगा कि किस तरह से मनाते आए हैं, कैसे मनाते हैं, और धीरे धीरे मॉरिशस में भी वो जो प्रभाव है, जब हम छोटे थे जिस तरह से रक्षाबंधन मनाते थे वैसे अभी नहीं मनाते,
1: नहीं मना रहे हैं, साधन बढ़ गए हैं ना,
0: देखने को मिलता है। तो हमें जरा हमारी जो जड़ है वहां से, वहां की जो कहानी है रक्षाबंधन की, वहां से बताइए कि परंपरा वहां कैसी है, प्रथा कैसी है रक्षाबंधन की, किस समय मनाते हैं, मिठाई में क्या बनाते हैं, कोई व्रत वगैरह रखते हैं या क्या?
1: जी, तो उसमें वहाँ जाऊँ मैं, भारत जाऊँ से पहले थोड़ा सा मॉरिशस का, जैसे आपने कहा कि 1900 के बाद मनाने लगे, हाँ उस तरह से जैसे एक प्रथा के रूप में मनाते हैं वो शायद संभवतः हो सकता है 1900 के बाद मना रहे हों, लेकिन जो रक्षाबंधन और भाई बहन का जो रिश्ता है ना
0: वो तो
1: मतलब
0: समय से है।
1: हाँ, क्योंकि मैं एक माता जी को जानती हूँ जो अब नहीं रही हैं, वो 90 की थी, तो वो अपने भाई से मिलने जाती थी नवलदीप क्वेत लालोरा से। वो कहती थी वो उसके दादा मेरे दादा जहाजी भाई थे
0: जी,
1: तो वो तो 1800 की बात है जब वो जहाज़ में साथ आए थे, तो वो उस उम्र में भी राखी बांधने जाती थी उनको।
0: अच्छा,
1: तो ये तो बहुत ही पुरानी बात है। तो जहाज़ी भाई बहन का रिश्ता, मतलब दादा दादा थे एक दूसरे के, दादा जहाज़ी भाई थे, लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी तीसरी पीढ़ी थी। तो तीसरी पीढ़ी में भी वो राखी बांधने जा रही थी वहाँ। तो भले ही हम एलिब्रेट में नहीं मना रहे थे, लेकिन वो भाई बहन का रिश्ता और वो कि कुछ
0: सादगी के साथ मनाते थे।
1: हाँ, सादगी और उसके सार के साथ कि भाई रक्षा करेगा जब जरूरत होगी, जब वो क्या बोलते हैं माटी कुराई होती है तब आता है ना भाई पीछे,
0: जरूर
1: तो वो खड़ा रहेगा।
0: भाई बहन का संबंध तो विवाह से ही वो और भी प्रगाढ़ होता है।
1: तो वो बोलता है कि जब तुम अपने बच्चों की शादी, मतलब मेरे बच्चों की शादी में वो मेरे आगे पीछे खड़ा था।
0: जी हाँ,
1: तो वो रक्षाबंधन भले ही नहीं बना रहे हो लेकिन रक्षा कर रहे थे एक दूसरे की, वो उसके साथ, और यही उसका मूल है कि वो खड़ी हो रही थी उसके साथ। और चलिए अब भारत चलते हैं।
0: हाँ, लेकिन इससे पहले कि आपने जब बात छेड़ ही दी कि आपकी वो जो
1: माता जी थी
0: वो अपने दादा की बात कर रही है, जहाजी भाई की बात कर रही है, माटी कोराई की बात हुई, तो एक ऐसा गाना है जिसको जतसार कहते हैं, वो गाना जाता चलाते वक्त गाते थे। और इस गाने में मैंने इस पर भी शोध किया है, वो जो भोजपुरी में, वो भारतीय भोजपुरी में वो जो गाने हैं बहुत सारे इसमें ऐसे हैं कि आज मेरे भैया मेरे घर आ रहे हैं तो मैंने सास से ये इजाजत मांगी है कि मैं भाई को कुछ खिलाकर भेजूं। सास ने कहा हाँ खिलाओ, फिर वो बैठती है जाता के साथ और अपनी दुख रोती हुई वो जाता चलाती है। मतलब भाई बहन का जो संबंध है वो रक्षाबंधन पर्व से कहीं ज्यादा,
1: वो पूरे साल भर है कि आप खड़े रहो उसके साथ, वही उसका सार है।
0: जी हाँ, तो अब भारत में चलते हैं।
1: भारत चलते हैं। तो भारत में ये होता है कि मुहूर्त देखा जाता है, सबसे पहले तो उसका मुहूर्त विशेष होता है कि कई बार होता है आधे घंटे का ही आता है, रात को आता है, तो वो वेट किया जाता है। बहन को व्रत करने की प्रथा थी, पहले हम व्रत करते थे जब हम राखी बांधते थे, राखी बांधने के बाद ही खाया जाता था, उसके बाद भोजन करते थे।
0: और पूर्णमासी भी होती है तो पूर्णिमा को तो व्रत रखते ही।
1: हाँ, वैसे भी पूर्णिमा को जो रखते हैं, लेकिन विशेष रूप से राखी का व्रत होता है। मिठाइयों में अलग अलग

0: प्रांत की अलग अलग मिठाइयाँ हैं, कहीं ठेकुआ बनता है, कहीं लड्डू बनते हैं, कहीं पेड़ा होता है, हमें हमारे जो क्षेत्र है वहाँ पेड़ा विशेष रूप से उसमें बनाते हैं, तो राखी बांधते हैं। और राखी में सबसे जो ये बाज़ार की राखियाँ हैं ये तो हैं ही, उसके अलावा मौली बांधना बहुत आवश्यकता ज़रूरी होता क्या? है मौली जो रक्षा सूत्र होता है ना कॉटन वाला, उसकी पूजा की जाती है और वो बांधा जाता है।
1: उसको रंगते हैं फिर?
0: नहीं, वो रंगा हुआ आता है, वो रंगा हुआ आता है ऑलरेडी, तो उसकी आके जो मतलब मुख्य होता है राखी, पेरेंट्स भी बोलते हैं पहले राखी बांधो, राखी मतलब ये नहीं बाजार वाली नहीं, रक्षा सूत्र, वो पहले गणेश जी को बैठा के उस रक्षा सूत्र की पूजा होती है, उसका अर्चन होता है, उसमें देवताओं का आवाहन होता है। पहले पति पिता भाई ये सब बाहर जाया करते थे काम के सिलसिले में, दूर दूर दूर जाते थे, तो उनको ये रक्षा सूत्र बांध के भेजा जाता था देवताओं के आवाहन के साथ कि ये जहाँ पर भी जाओगे आपकी रक्षा करेगा, तो वो उस उद्देश्य से बांधा जाता था और ये बहनें बांधा करती थीं, तो ये उस तरह से होता है। उसके बाद जो बाजार वाली राखी है वो बांधते हैं, तो मुख्य रूप से उद्देश्य ये है कि वो रक्षा सूत्र जो पूजन करके देवताओं का आवाहन हुआ है वो पहले बांधा जाए
1: जी,
0: वही है राखी कि आपकी रक्षा करेगी, क्योंकि जो आवाहन होता है ना जैसे हम अनंत पे भी करते हैं, अनंत चतुर्दशी करते हैं, तो रक्षा सूत्र बनाया जाता है, गांठ बांधी जाती है, देवताओं का आवाहन होता है, उसमें विशेष पावर आ जाती है और वो रक्षा के लिए होता है। बाजार से लाई हुई राखी तो ऐसा है कि आपने ले ली बांध दी,
1: हाँ
0: जी, तो रक्षा तो वही करेगा
1: जी,
0: रक्षा सूत्र।
1: और फिर बहुत बहुत पहले से हम देखते आए हैं कि बहन भाई को राखी बांधती हैं, लेकिन अब समय के साथ जब अलग अलग जो मत हैं, अलग अलग जो मान्यता हैं, उससे हमारा संपर्क ज़्यादा हो रहा है। और एक विश्वविद्यालय, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है ब्रह्म कुमारीज का, जहाँ पर वहाँ कोई किसी को राखी बांध सकता है, क्योंकि कहते हैं आत्मा आत्मा भाई भाई, वहाँ सभी को आत्मा के रूप में देखते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि क्या राखी सिर्फ बहन भाई ही को बांधती है?
0: जी, राखी बहन बांधती है, बुआ बांधती है, अगर बहन नहीं है तो बुआ बांधेगी, बुआ नहीं है तो बेटी बांधेगी,
1: मतलब फूफू अपने भतीजे को बांध सकती है।
0: हाँ, फूफू भतीजे को बांध सकती है और बेटी भी पिता को बांध सकती है। अगर फूफू नहीं है, बहन नहीं है तो बेटी बांध सकती है, बेटी नहीं है तो माँ बांध सकती है फिर, है ना। तो ये महिलाओं को अधिकार है, क्योंकि महिला खुद प्रकृति स्वरूपा है, है ना, जन्म देने का अधिकार माताओं को ही मिला है, तो क्योंकि वो प्रकृति का हिस्सा है। तो जब आदमी बाहर जाता था तो पृथ्वी पे किसी भी हिस्से में हो, तो अगर एक प्रकृति के हिस्से ने उसे आशीर्वाद दिया है, उसके लिए प्रार्थना की है, उसकी रक्षा की, तो प्रकृति के किसी भी हिस्से में हो प्रकृति उसका वचन पूरा करेगी।
1: जी हाँ।
0: ये मान्यता थी। तो महिलाएं जब बांधती हैं तो महिलाओं में यही आता है कि बहन हो बहन नहीं हो तो फूफू हो, फूफू नहीं हो तो बेटी हो, बेटी नहीं हो तो माँ बांध सकती है।
1: जरूर जरूर। और लेकिन हम जब देखते हैं, अभी आपने पौराणिक कथाएं सुनाई और कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जहां पर हमने देखा है कि शुरू में रानियां अपने राजा को राखी बांधकर फिर युद्ध के
0: युद्ध
1: लिए
0: भेजती थी।,
1: तो जब शुरू में पत्नी ने पति को रक्षाबंधन बांधा, फिर ये कैसे ऐसा एक ऐसी परंपरा हुई कि अब बहन भाई को बांधने लगी?
0: पत्नी का उसे राखी नहीं कहेंगे, रक्षा सूत्र कहेंगे, वो रक्षा सूत्र होता था, ये रक्षा बंधन है जो भाई बहन का त्योहार है। और पत्नी बांधती है जो युद्ध में आप बता रहे हैं, क्षत्रियों में, राजपूतों में, राजस्थान में विशेष रूप से ये है, वो उनकी पूजा करती है, एक देवता की तरह पूजा जाता है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है जब वो युद्ध में जाते हैं, वो एक अलग परंपरा है, वो इससे अलग है।
1: अच्छा।
0: और अब आपने बहन की वो बात करी कि कौन कौन बांध सकता है, तो कृष्ण भगवान की बहन नहीं थी उनकी माता जी उनको राखी बांधती थी। तो एक बहुत अच्छी सूरदास जी की कविता है, मैं वो सुनाना चाहूँगी।
1: जरूर।
0: राखी बांधत जसोदा मैया, राखी बांधत जसोदा मैया, विविध सिंगार किए पट भूषण, पुनि पुनि लेत बलैया, राखी बांधत जसोदा मैया, हाथ लिए थार मुदित मन, कुमकुम अक्षत माज धरैया, राखी बांधत जसोदा मैया, तिलक करत आरती उतारत अति हरक हरक मन भैया आरती उतारत यशोदा मैया। सूरदास गिरधर चिर

0: यो गोकुल बजत बधैया राखी बांधत यशोदा मैया।
1: वाह वाह वाह, आपने तो सच में समाही बांध दिया। मॉरिशस में, भारत में भी, लेकिन ये जो पर्व है यह सिर्फ भाई बहन का न रहकर एक पारिवारिक पर्व माना जाता है, जहाँ पर देखिए अभी रक्षाबंधन एक शुक्रवार का दिन है और इस दिन आप देखेंगे कि घर की जो महिलाएं हैं, चाहे वो भाभी हो चाहे वो ननद हो, वो जल्दी से ऑफिस से छुट्टी लेकर घर चली जाएंगी। भाई जो हैं वो या तो ऑफिस नहीं जाएंगे या फिर जल्दी आ जाएंगे। जो बहनें हैं वो भी छुट्टी लेकर जाएंगी भाई के पास और उनकी भाभियां ऑफिस से जल्दी से घर आ जाएंगी ताकि साथ में बैठकर भोजन कर पाए। और कम से कम ननद के लिए तो वो गिफ्ट तो वही लाती हैं और फिर मिठाई बनाना, मिठाई का की व्यवस्था घर पर करना, ये भी भाभी वही करती हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि ये सिर्फ भाई बहन का नहीं बल्कि पूरे परिवार को जोड़ कर रखता है और फिर समाज में भी एक जो एकता की भावना है, एक एकता की जो लहर है वो दिखाई देती है। और अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो पूरा देश इस रंग में रंग जाता है और राखी की जो मिठास है उससे कोई अछूता नहीं रहता। आज रक्षाबंधन सिर्फ जो फिजिकल भाई बहन है, मतलब कि एक ही गर्भ से जिनका जन्म हुआ है, सिर्फ वो नहीं
0: भाई बहन नहीं है, कजिन्स भी इसमें शामिल हैं, आस पड़ोस के जितने भाई बहन हैं, स्कूल कॉलेजों के जितने भाई बहन हैं, कई मेंटर्स होते हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, मार्ग दर्शाते हैं, तो उनको भी इसमें शामिल हैं। तो ये पूरा पर्व मिला जुला है, सबको एक जगह इकट्ठा कर देता है। ऐसे नहीं है कि भाई बहन इकट्ठे हो रहे हैं, पूरा फैमिली इकट्ठी हो जाती है।
1: और मॉरिशस एक बहुसांस्कृतिक देश है जहाँ पर हर दूसरे मजहब का जो व्यक्ति होता है वो हमारे आस पड़ोस में है, कम से कम ऑफिस में तो है। और ऐसे में आप देखेंगे कि दूसरे कौम के लोगों को भी राखी बांधी जाती है।
0: हाँ, ये भारत में भी होता है, बहनें बांधती हैं। रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी, उन्होंने आके रक्षा की थी। तो ये तो बहुसांस्कृतिक है, रक्षा करना और साथ खड़े रहना, इसके लिए आपको एक
1: ब्लड रिलेशन नहीं होना चाहिए,
0: ब्लड रिलेशन भी नहीं और धार्मिक एक होने की जरूरत नहीं है, इंसानियत। वही इसलिए मैं कह रही थी कि एक कदम इंसानियत की ओर हर त्योहार हमें बढ़ाने का मौका देता है और हमें बढ़ाना चाहिए।
1: जी जरूर। तो अभी हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन का जो सामाजिक सांस्कृतिक अर्थ है और किस तरह से यह परिवारों को, समाज को, देश को जोड़कर रखता है, संबंधों को और भी गहरा बनाता है, उसमें और भी मिठास लाता है, एक दूसरे की रक्षा करने का प्रण लेते हैं और एक इस दुनिया को, जैसा कि अभी श्रीमती तिवारी जी कह रही है, इस दुनिया को एक कदम बेहतर बनाने के जो उपाय हैं उसमें यह अपना योगदान देता है यह पर्व। और फिर हम ये भी देखते हैं कि रक्षाबंधन के दिन हम संस्कृत दिवस भी मनाते हैं और आज हमारे साथ संस्कृति संस्थान के को-फाउंडर हैं जो हमें संस्कृत और अपनी संस्कृति संस्थान और संस्कृत का हमारे धर्म, हमारी संस्कृति से क्या संबंध है, आज भी इसकी क्या सार्थकता है, इन सभी विषयों पर बात करेंगी। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम संस्कृति की बातें, जिसका प्रसारण MBC और आप्रवासिका ट्रस्ट फंड के मिले जुले सहयोग से होता है। और आज हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन का जो सांस्कृतिक अर्थ है, जो धार्मिक अर्थ है, और जिससे पारिवारिक और राष्ट्रीय एकता बढ़ती है। और साथ ही साथ अब हम ध्यान देंगे कि किस तरह से इसी दिन को, रक्षाबंधन को, हम संस्कृत दिवस मनाते हैं। और संस्कृत इस भाषा का प्रसार करने के लिए, इस भाषा को सिखाने के लिए हमारे देश में एक संस्था भी है, उसका नाम है संस्कृति संस्थान। और संस्कृति संस्थान के को फाउंडर श्रीमती सविता तिवारी जी आज हमारे साथ हैं। सविता जी, आपका एक बार फिर स्वागत है प्रोग्राम में।
1: धन्यवाद।
0: हमें ये बताइए कि रक्षाबंधन के दिन संस्कृत दिवस से भी इस दिन को हम क्यों जानते हैं?
1: जी, जो संस्कृत दिवस है उसकी स्थापना हुई थी 1969 में। भारत सरकार ने तय किया कि हमको संस्कृत का दिवस मनाना चाहिए, इस भाषा को आगे बढ़ाना चाहिए। तो तब सोच रहे थे कि कोई एक दिन रखते हैं, जैसे डेट होती है ना, तो डेट डिसाइड कर रहे थे। तो फिर जो विद्वान लोग थे उन्होंने कहा इसकी तो डेट नहीं होती है, इसकी तो तिथि रखनी चाहिए हमें, है ना, कि जो श्रावण पूर्णिमा है उसी दिन जो एंशियंट हमारा गुरुकुल होते थे वहाँ एकेडमिक ईयर शुरू होता था। अच्छा। इसी दिन से जो श्रावण पूर्णिमा है उसी दिन से
0: जी।
1: तो इसीलिए फिर इसी को संस्कृत दिवस की घोषणा की गई कि जो श्रावण पूर्णिमा है इसी को संस्कृत दिवस मनाया जाएगा।
0: जी हाँ।
1: और इसको क्यों मनाया जाएगा, इसके लिए हम एक महीना और पीछे चलते हैं गुरु पूर्णिमा में। जब आषाढ़ पूर्णिमा आती है उस दिन गुरु पूर्णिमा होती है, तो वो बच्चे को गुरु को दे आते हैं माँ बाप, पहले दे आया करते थे कि ये आपकी अब शरण में है। फिर श्रावण मास शुरू होता है, वहाँ से एक महीना वो श्रवण करता था। श्रावण का मतलब है श्रवण करना, गुरु को सुनता था, तैयार होता था उसके लिए। और जब ये श्रावण पूर्णिमा होती थी तो उस दिन उसकी श्रावणी की जाती थी, उपनयन संस्कार, जो जनेऊ पहनाया जाता है वो होता था, और उसी दिन से उसका विद्यारंभ होता था। तो अच्छा। वो वेद जो थे वो संस्कृत भाषा में थे, उसी दिन से उसको अधिकारी माना जाता था। तो इस दिन से इसलिए इसको संस्कृत दिवस की, आज से तुम संस्कृत के अधिकारी हो गए हो, वेदों के अधिकारी हो गए हो।
0: क्योंकि उस समय तो ये जो धर्म ग्रंथ हैं वो सारे संस्कृत में ही होते थे।
1: जी बिल्कुल
0: जी।
1: तो जो उपनयन है वो भी एक रक्षा सूत्र की तरह ही है, उसमें भी देवताओं का जनेऊ, हाँ वही जनेऊ ही है, तो वो भी एक रक्षा सूत्र ही है।
0: हाँ।
1: क्योंकि उसमें भी देवताओं का आवाहन होता है, बच्चे को पहनाया जाता है कि अब तुम्हारी देवता रक्षा करेंगे और गुरु की शरण में हो, आज से तुम वेदों के, संस्कृत भाषा के अधिकारी हो। तो इसीलिए उस दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है।
0: अच्छा, तो आप जैसा कि मैंने कहा संस्कृति संस्थान की को फाउंडर है, हमें ज़रा इस संस्थान के बारे में बताइए। आप लोग हिंदी नहीं बल्कि संस्कृत की पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर बच्चों को सिखाते हैं, हमें इस संस्था के बारे में कुछ ज़्यादा जानना है।
1: जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि संस्कृत क्यों,
0: संस्कृत क्यों,
1: संस्कृत
0: आज की दुनिया में।
1: जी, क्योंकि संस्कृत ही कह सकती है वसुधैव कुटुंबकम, है
0: हाँ।
1: ना, संस्कृत ही कहती है, और कोई भाषा नहीं कहती वसुधैव कुटुंबकम, संस्कृत ही कहती है असुतो मा सद्गमया, है ना, संस्कृत ही कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो स्वयं की बात नहीं करती है, वो सर्व की बात की करती है। तो जो भाषा ही ऐसी है जिस भाषा में अपशब्द नहीं है, है ना, इस भाषा में अपशब्द नहीं है, कोई

0: बात करेगा। राम ने गाया नमामि शमशान, रावण ने गाया डमट डमट डमट तांडव गाया, दोनों राक्षस गा रहा है और देवता गा रहा है, भगवान गा रहे हैं। संस्कृत भाषा में दोनों ही अच्छी स्तुतियां हैं, भले उनका भाव अलग हो लेकिन दोनों ही बहुत ही शरणागति वाली स्तुतियां हैं।
1: उसमें
0: अपशब्द नहीं है, भले वो राक्षस गा रहा है।
1: संस्कृत में अपशब्द की का कोई स्थान नहीं है,
0: स्थान ही नहीं है। तो इसीलिए ये कि अगर हमको पूरे विश्व को एक करना है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करनी है, तो हमको संस्कृत की ही शरण में जाना पड़ेगा, है ना। और किसी भाषा में ये ताकत नहीं है जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करे, पहली तो ये। और संस्कृत जो नाम है संस्कृतम, वो सबको समान कर देती है, ये सिर्फ संस्कृत ही कर सकती है।
1: जी हाँ।
0: सुखे दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जया जयो, ये संस्कृत ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता।
1: बहुत सुंदर।
0: इसीलिए और संस्कृत का उद्गम भी कहाँ से हुआ है, शिव जी के डमरू से हुआ है। नित्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्का नव पंचवारम उद्यत तु कामान संकादि सिद्ध एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम, शिवसूत्र की वहाँ से स्थापना हुई है। तो जो इतने, इसीलिए इसे देववाणी भी कहा जाता है, जो वहाँ से आई है, जिसका उद्गम ही इतना श्रेष्ठ है। तो अगर हमें थोड़ा बहुत भी श्रेष्ठता की ओर जाना है, मानवता की ओर जाना है, तो संस्कृत ही एक माध्यम है
1: जी।
0: तो हमने इसी उद्देश्य से संस्कृत शुरू किया, बच्चों के लिए विशेष रूप से। ये कोविड से पहले की बात है, हमने शुरू की थी क्लासेस, फिर कोविड आ गया तो हमने उसे ऑनलाइन किया, हमने बंद नहीं किया, हमने ऑनलाइन किया, ऑनलाइन पढ़ाया बच्चों को, और बच्चों के साथ माता पिता भी लगातार 2 साल तक हम, मतलब कई बार ऐसा होता था कि रोज़ ही कर रहे हैं क्योंकि कोई काम नहीं था, रोज़ क्लासेस हो रही हैं, रोज़ शाम को कोई मंत्र सिखा रहे हैं। और हमारा जो कैरिकुलम है, हमने शुरू से ये रखा कि ज्ञात से अज्ञात, आचार्य जी मेरे पति जो हैं आचार्य पूरन तिवारी जी, उन्होंने इसका कैरिकुलम बनाया है ज्ञात से अज्ञात, कि जो आपको पता है उससे जो नहीं पता है उसकी तरफ ले जाएंगे हम
1: जी।
0: संस्कृत में जो आपको जानना है, हम सीधा ग्रामर नहीं सिखाएंगे
1: जी,
0: ग्रामर सिखाएंगे सब भाग जाएंगे।
1: हाँ,
0: तो जो
1: जाएंगे।
0: हाँ, तो जो आपको पता है हम आपको उसी से शुरू करेंगे, तो त्वमेव माता से शुरू करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे त्वम एव माता, ये त्वमेव माता 2 शब्द नहीं है, ये 3 शब्द हैं। त्वम एव माता, त्वम मीन्स आप, तुम, एव मीन्स ओनली यू माता, कि आप ही मेरी माता हो। त्वम एव पिता, आप ही मेरे पिता हो, परमात्मा के लिए हम कहते हैं। तो जो आपको पता है हम उसी को थोड़ा एलिब्रेट करके समझाते हैं, तब हम मंत्रों के थ्रू, स्तोत्र के थ्रू, कि बच्चे गाने में बड़ा उनको अच्छा लगता है,
1: हाँ।
0: जो गाते हैं मुदा करात मोदकम सदा विमुक्ति साधकम, बड़े खुश होते हैं, भले मतलब नहीं पता हो उनको
1: जी,
0: तो उनको खुश कर दिया। अब फिर उनको मीनिंग समझाओ, फिर धीरे धीरे लाओ। हमारे यहाँ बच्चे जो आते हैं, ऐसा नहीं होता कि एक हफ्ता आया अगले हफ्ते नहीं आए, वो आते ही हैं।
1: कंसिस्टेंसी हमेशा रहती है।
0: कंसिस्टेंसी, हाँ। और मुझे लगता है यही सफलता है किसी भी कक्षा की, किसी भी प्रोजेक्ट की, कि कंसिस्टेंसी बनी रहे, सस्टेनेबिलिटी बनी रहे।
1: और कहते हैं, मैंने ये बात संस्कृत कक्षा में ही सीखी है, कि जब आप कुछ सीखते हैं अगर 9 दिनों के अंदर अंदर उसकी पुनरावृत्ति नहीं हुई, रिविजन नहीं हुआ,
0: नहीं,
1: तो आप भूल जाएंगे,
0: भूल जाएंगे।
1: तो अब अगर रोज रोज सीखते रहेंगे तब तो भूलने की गुंजाइश ही नहीं है।
0: हर शनिवार हमारे यहाँ लालोरा में क्लासेस चलती हैं, बच्चे आते हैं, और एक बड़ों के लिए ऑनलाइन चलती है, विशेष रूप से बड़े नहीं हैं उसमें, परिवार हैं, परिवार। हमने कहा है कि फैमिली जुड़ेंगी इसमें, हम एडमिशन ही फैमिलीज़ को देते हैं।
1: अच्छा।
0: माता पिता बच्चे साथ बैठेंगे, दादा दादी नाना नानी फुफू जो भी हैं, सब साथ में बैठो, सब साथ में गाओ।
1: ये तो बहुत दिलचस्प बात है, ताकि एक अगर उसे दूर होना चाहे तो बाकी परिवार के सदस्य हैं जो उसको दूर होने ही नहीं देंगे,
0: कि चलो बैठ जाते हैं, और एक फैमिली टाइम के रूप में देखते हैं कि फैमिली का जुड़ाव होता है, और वो एक इतनी अच्छी चीज़ के साथ हो रहा है, तो
1: एक सत्संग जैसा हो जाता है।
0: तो मैं जब बोलती हूँ कि मैंने कोई लाइन पढ़ी उसे रिपीट करना है, तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि चलो आनिया एंड फैमिली, उन लोगों ने नाम भी ऐसे लिख रखे हैं, ईशायु एंड फैमिली, आनिया एंड फैमिली, रिष्टि एंड फैमिली, धृति एंड फैमिली, ऐसे लिख रखे हैं सबके
1: मतलब
0: नाम।
1: कि संस्कृत सीखना आपके संस्थान में एक पारिवारिक गतिविधि हो गई
0: जी। और हम एक्टिविटीज़ पे भी बहुत ध्यान देते हैं, जैसे अभी हमने इसी सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे रखा है, शिवलिंग बनाएंगे बच्चे, मिट्टी मंगवाई है हमने, तो हमने ऐसे नहीं बोला है कि एक एक बच्चा बनाएगा, हमने कहा बहन भाई मिलके बनाओ, और अगले दिन पार्थिव पूजा करेंगे उसकी।

0: फैमिली के साथ कि तुम बच्चे बनाओ फिर फैमिली के साथ मिलके करो, क्योंकि मतलब मैं खुद एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हूँ, मैं करती रहती हूँ कि ड्रग्स की समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं कैसे दूर की है, कई देशों ने कैसे दूर की है। तो एक आइसलैंड का अनुभव मैंने पढ़ा कि उन्होंने फैमिली टाइम को बहुत जोर देना शुरू किया, कि फैमिली टाइम ज़्यादा उसको बढ़ावा देना शुरू किया, कि फैमिलीज को स्पोर्ट्स के वाउचर्स दे रहे हैं कि आप सब साथ में जाओ स्पोर्ट्स खेलो, तो वो ड्रग्स की समस्या सच में वहाँ बहुत कम हुई। तो अब जब मैं संस्कृत वाली हूँ, मैं स्पोर्ट्स के वाउचर तो नहीं दे सकती तो मैं संस्कृत के वाउचर देती हूँ कि हमारी फ्री क्लासेस चल रही हैं, आप फैमिली के साथ जुड़िए, ये हमारा एक सहयोग है, हमारा कहते हैं ना राष्ट्र के प्रति कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो हम सोचते हैं शायद इसी वजह से कुछ ना कुछ अच्छा हो देश का।
1: ज़रूर। और फिर ये कक्षा चलती कहाँ है, किस समय आपकी कक्षाएं चलती हैं
0: जी?
1: अगर इससे कोई जुड़ना चाहे तो उनको क्या करना चाहिए
0: जी? ये हम हर 6 महीने में एडमिशन्स नए लेते हैं, क्योंकि एक बार कोर्स शुरू हो गया तो मुश्किल होता है बच्चों को बीच में लेना
1: जी।
0: तो जो 8 साल के बच्चे हैं उनसे लेते हैं, वैसे हमारे यहाँ 7 साल के 5 साल के भी बच्चे कई बार आ जाते हैं, तो लेकिन वैसे हमने 8 साल रखा है, 8 साल के बच्चे। हम एडमिशन्स की जो घोषणा है वो हमारे फेसबुक के पेज के माध्यम से करते हैं, संस्कृति संस्थान भारत मॉरिशस पेज है हमारा फेसबुक पर, उसी पे हम अपनी वीकली जो क्लासेस हमने जो पढ़ाया है, क्योंकि कई लोग दूर दूर से मैसेज करते हैं कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन हम लालोरा सैपियर हमारा शिव शक्ति मंदिर जो है लालोरा में हाँ तो वहाँ नहीं कर सकते। तो हमने कोशिश की है कि आगे भी कई मंदिरों से हमने संपर्क किया है, संस्थाओं से, कि हम आपके यहाँ के क्लासेस कर सकते हैं, लेकिन वो इतना मुश्किल होगा। तो हम अब चाह रहे हैं कि हम कम्युनिटी टीचर्स बनाएं, ये हमारा एक कोशिश है। कि वो अभी 15 अगस्त पे गाना चल रहा था, आप लोगों ने सुना होगा, मैं रहूं या ना रहूं भारतीय रहना चाहिए। तो ये गाना मुझे लगता है कि ये गाना कह रहा है कि सस्टेनेबल होना चाहिए, आपका कोई भी मोटिव हो प्रोजेक्ट हो सस्टेनेबल होना चाहिए। तो हम कि हम रहे ना रहें मनुष्य हैं कितने दिन रहेंगे, तो हमारे बाद भी ये जो संस्कृत की शिक्षा है या आगे जारी रहे, इसके लिए हम कम्युनिटी टीचर्स को ट्रेनिंग देने की एक इनिशिएटिव ला रहे हैं, जहां हम ज़रूरी नहीं कि वो टीचर ही हों, अगर वो हिंदी जानते हैं थोड़ी बहुत संस्कृत जानते हैं तो हम उन्हें सिखाएंगे
1: जी।
0: और वो अपनी कम्युनिटी में अपने आसपास जो भी हैं उन बच्चों को सिखाएं
1: जी।
0: आगे बढ़ाएं
1: जी।
0: तो
1: कम से कम बेसिक तो बच्चे सीखें
0: तो हम एक आदमी कितना सिखा सकता है, तो हम ऐसे लोगों को
1: प्रशिक्षित करना है
0: कर रहे हैं जो आगे सिखाएं। और जिन फैमिलीज को हम सिखाते हैं ऑनलाइन, हम उनको कहते हैं एक परिवार को और जोड़ो, हमने तुम्हें जोड़ा अब तुम एक एक परिवार को और जोड़ो और एक आदमी को और सिखाओ, ये तुम्हारी मेरी गुरु दक्षिणा है। मैं ऐसे कहती हूँ कि हम ये सारा इनिशिएटिव सारा फ्री में हो रहा है।
1: अच्छा, ये फ्री में होता है?
0: सारी क्लासेस फ्री हैं, इसकी कोई चार्जेस नहीं है, ना ऑनलाइन न जो लालोरा में शिव शक्ति मंदिर में होती है उसके भी कोई चार्जेस नहीं है, सब फ्री में होता है। तो मैं कहती हूँ मेरी गुरु दक्षिणा यही है कि तुम एक आदमी को और सिखाओ।
1: जी हाँ। और फिर संस्कृत जो कि एक मिस्ट्री एक रहस्य जैसा लगता है उसको डिमिस्टिफाई करते जा रहे हैं, वो रहस्य न रह जाए, हर एक को संस्कृत के कुछ ना कुछ वाक्य कम से कम मंत्र तो समझ में आए
0: जी।
1: क्योंकि मंत्र हम ब्लाइंडली इस तरह से उच्चारण करते जाते हैं, इसका अर्थ क्या है बहुतों को नहीं पता होता है।
0: बिल्कुल।
1: तो आज हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन, और साथ में रक्षाबंधन के दिन जो संस्कृत दिवस मनाते हैं, संस्कृत का हमारे जीवन में आज क्या सार्थकता है, इस विषय को अभी हम थोड़ी देर में आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा विराम।

0: संस्कृति की बातें कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हम बढ़ेंगे और इसके अंतर्गत हम यही देखेंगे सविता जी के साथ कि आज की दुनिया में संस्कृत को सीखने और सिखाने की क्या सार्थकता है, क्या रेलेवेंस है, क्यों सीखना चाहिए संस्कृत।
1: जी, आज के समय में जैसे बच्चे बोलते ना, सितार फॉर मेंटल हेल्थ, दिस फॉर मेंटल हेल्थ, दैट फॉर मेंटल हेल्थ,
0: मेडिटेशन फॉर मेंटल हेल्थ,
1: हाँ, तो मैं कहती हूँ संस्कृत फॉर मेंटल हेल्थ, कि संस्कृत गाओ, संस्कृत सीखो। संस्कृत के पीछे इतनी अच्छी फिलॉसफी है, सबसे बड़ी संस्कृत की ताकत ही उसकी फिलॉसफी है। आदि शंकर

0: आचार्य इतने विद्वान आदमी थे, इतना उन्होंने फिलॉसफी दी, फिर अंत में उन्होंने यही कहा भज गोविंदम भज गोविंदम, कि ज्ञान कितना भी कर लो जब तक भक्ति नहीं आएगी तब तक ज्ञान का कोई वो नहीं है, ज्ञान और भक्ति साथ साथ चलनी चाहिए। तो इस तरह की फिलॉसफी आपको संस्कृत में ही मिलती है, और जब आप उसको गाते हो, जब उसको गा पाते हो, कहते हैं ना म्यूजिक हैज नो बॉर्डर, तो संस्कृत हैज नो बॉर्डर। जब आप उसके स्तोत्र गा पा रहे हो, आदि शंकराचार्य के, वल्लभाचार्य के निर्वाण शतकम गा पा रहे हो आप, तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में आता है, वो शक्ति आती है। अगर आप उसका मीनिंग भी समझ रहे हो, मतलब समझ रहे हो, तो वो आपको शक्ति देता है कहीं ना कहीं। हमारे बच्चों को हम गाने के बड़े ऑप्शंस देते हैं, जैसे हम मंदिर में, शिव शक्ति मंदिर में हर सोमवार को शिव अभिषेक होता है, तो गणेश पंचरत्नम तो गाते ही गाते हैं हमारे बच्चे, और बच्चे ही गाते हैं।
1: अच्छा।
0: हाँ, हम नहीं गाते उसमें, हम पीछे से कोरस देते हैं, लेकिन गाते वही हैं। और कितनी सारी पूजाएं होती है मंदिर में, उसमें उनको मौका मिलता है। और जो आयोजन होते हैं मॉरिशस भर में, MGI ने कितनी बार निमंत्रण दिया है, तो बच्चे वहाँ जाके परफॉर्म करते हैं। संस्कृत के जो कंपटीशन होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं स्कूलों में। और यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम हुआ था पिछले महीने, तो मंच पर जाके वो खड़े होके बोल पाए, ये कॉन्फिडेंस अगर उनको है, मैं क्लास में खड़ा करती हूँ उनको, चलो बोलो, सोचो तुम मंच पे खड़े हो, भाषण दे रहे हो, खड़े हो, चलो बोलो, गाओ।
1: तो क्या वो वाक्य बना पाते हैं संस्कृत में?
0: हाँ, वो अपना परिचय दे लेते हैं।
1: अच्छा।
0: सारे सबको मैंने सिखा रखा है, अपना नाम बताना, अपनी उम्र बताना, अपने मम्मी पापा का नाम बताना, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो, क्या बनना
1: कर लेते हैं।
0: हाँ, ये सब संस्कृत में बोल लेते हैं कि वो क्या बनना चाहते हैं, ये सब भी बता लेते हैं।
1: तो बहुत अच्छी बात है। और किस उम्र के हैं ये बच्चे?
0: जी, ये 8 साल से हैं और टीनेजर्स हैं, वैसे तो बड़े भी बच्चे हैं, जैसे कई बच्चों के साथ पेरेंट्स भी आते हैं, तो पेरेंट्स भी हैं उसमें, लेकिन ये है हमारे पास टीनेजर तक के बच्चे हैं इसमें, जो मंदिर में कक्षाएं चलती हैं उसमें। ऑनलाइन में तो फिर वो फैमिली पूरी बैठती हैं।
1: जी हाँ
0: जी। तो संस्कृत का यही है कि संस्कृत के थ्रू अगर आप अपने जीवन के कठिन समय में लड़ पाएँ, उनसे उभर पाएँ, स्ट्रेस को फाइट कर पाएँ। एग्ज़ाम्स के टाइम बच्चे हैं तो उनको तो बहुत ही टेंशन रहती है
1: जी।
0: लेकिन एग्ज़ाम्स के टाइम पे भी हमारे बच्चे आते हैं क्लास में, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो बच्चे नहीं आ रहे हैं, आते हैं।
1: उनको आना पसंद है इसीलिए आते हैं।
0: हाँ, क्योंकि क्लास के बाद हम थोड़ा योगा भी करते हैं, मेंटल एक्सरसाइजेस भी करते हैं, और क्लास के बाद वो जाते नहीं हैं, बातें करते रहते हैं। उनके पेरेंट्स बोलते हैं चलो चलो, वेट करते रहते हैं, और आ भी जल्दी जाते हैं। तो एक कम्युनिटी बॉन्डिंग बहुत ज़रूरी है आज बच्चों की। और बच्चे बैठ के बातें क्या करते हैं, हम नवरात्रि में कौन सा डांस करेंगे, वो मतलब एक तो मंदिर का स्थान है, ऊपर से संस्कृत क्लास है, तो दे आर
1: संस्कृति की बातें हो रही हैं।
0: हाँ, दे आर एट बेट देयर बेस्ट, उनका बेस्ट कैरेक्टर बाहर आता है उस टाइम पे।
1: इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है?
0: क्या हो सकती है कि बच्चे ये बातें कर रहे हैं कि हमको समाज के लिए क्या करना है, अगले कार्यक्रम त्योहार के लिए क्या करना है।
1: जी सविता जी, आज पहली बार आप मेरे प्रोग्राम में आई और आपसे बात करके बहुत हमें बहुत अच्छा लगा सच में। और मैं चाहूँगी कि किसी अन्य प्रोग्राम में आप एक बार फिर आएं, और जहाँ पर हम पूरे रूप से संस्कृत की पढ़ाई कैसे हो रही है, संस्कृत के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय हैं, किस किस किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है, इस पर विस्तार से बात कर सकते हैं। फिलहाल तो हम आपको धन्यवाद देंगे, और हम चाहते हैं कि आप अंत में रक्षाबंधन का संदेश देते हुए संस्कृत की विशेषता को उजागर करते हुए लोगों को संदेश दें।
0: जी देखिए, संस्कृत की, हम संस्कृति की बात करते हैं, मॉरिशस में बहुत सारे भाई बहनों को मैं देखती हूँ कोर्ट केसेस तक पहुँच गए हैं, लेकिन इस रक्षाबंधन पे आप लोग, ये मुझे पता है बहुत मुश्किल होता है, लड़ाई किए हुए हैं बहुत दिनों से, मन मुटाव है, लेकिन इस रक्षाबंधन पे ज़रूर कोशिश करिए कि अपनी बहन के पास जाएँ या बहन अपने भाई के पास जाएँ। हो सकता है आप जैसा सोचकर जा रहे हैं वैसा आपको रिएक्शन ना मिले, लेकिन आपको जीवन में ये अफसोस नहीं रहना चाहिए कि आपने कोशिश नहीं की। यही रक्षाबंधन का है कि कैसी भी स्थिति हो आप उनके साथ खड़े रहेंगे, तो कोशिश करिए। और बहुत मुश्किल है, मैं जानती हूँ, किसी को सॉरी बोलना या किसी से सॉरी एक्सपेक्ट करना, लेकिन कोशिश करिए, हमारे त्यौहार इसीलिए मनाए गए हैं।
1: ज़रूर, बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी।
0: धन्यवाद।
1: और हमारे सुनने और देखने वालों को भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है विधिमा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को नमस्कार। सादे का आज दक्षिण गणराज्य के डर्बन शहर स्थित डर्बन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में अपने राष्ट्राध्यक्षों और शासन अध्यक्षों का 46वां आम शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। 46वें सादिक शिखर सम्मेलन का विषय एक न्यायपूर्ण दुनिया की तलाश में बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि और महत्वपूर्ण खनिज परिवर्तन के माध्यम से मजबूत टिकाऊ और समावेशी औद्योगिकीकरण है। सादिक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भाग ले रहे हैं। मॉरिशस को सितंबर महीने के आखिर से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से ईंधन का सप्लाई प्राप्त होना शुरू होगा। इस संदर्भ में गुरुवार को स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और इस भारतीय कंपनी के बीच लंबी अवधि के एक समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। और कीमतों के संबंध में शर्तों पर हर साल फिर से बातचीत की जा सकती है और चर्चाएं समय सीमा से 2 महीने पहले शुरू होंगी। और यदि युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय तनाव समाप्त हो जाते हैं तो मॉरिशस बातचीत पर वापस लौटने और कीमतों की समीक्षा करने के लिए 30 दिन का नोटिस भी दे सकता है। मंत्रिपरिषद ने पिछले शुक्रवार को एसटीसी को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ ये सेल्स एंड परचेस एग्रीमेंट करने की मंजूरी दे दी थी। माइकल सिक्वेन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में सुधार होने पर बेहतर मूल्य शर्तें हासिल करने की कोशिश करने से पहले मुख्य उद्देश्य आपूर्ति की गारंटी देना है। और विदेश में सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला का प्रकोप अब उसके इतिहास का सबसे घातक बन गया है। 15 मई को इस प्रकोप की घोषणा के बाद से वायरस के कारण कुल 2,325 लोग मारे जा चुके हैं, जो देश के 2018-2020 के प्रकोप के मरने वालों के आंकड़े से अधिक है। तो इन्हीं खबरों के साथ ही 3 बजे के संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
2: RM3 Radio.

0: बहुत बहुत धन्यवाद हमने संगे जुड़ल हुआ आज की चर्चा कार्यक्रम में सब कोई के नमस्ते प्रणाम। आज लेंदी के दिन है और तने सुन बरसाती मौसम बातें अपन ख्याल रखिया तो हैजा पर आपके ख्याल रखे खातिर हमने संगे हमने के मेहमान हवन फिरो से फागद अने से जुन सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर हवन श्रीमान संजय शंभू जी। चला हमने के कार्यक्रम के शुरुआत करी ला जा। आज एगो ऐसन टॉपिक पर हमने बतियाब जा हमने तो पहला हला सुननी है सकेला तू हूँ पहला हला सुनब न तो सकेला तू जाने ला एक बारे में ई है पर्मा कल्चर कौन ची है कैसे ई करल जाला एक बारे में जस्ती हमने डेवलपे करब जा जुन चीज बातें बतियाए खातिर तो हमने के मेहमान के स्वागत करे ला जा। भाई शंभू प्रणाम नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: आज तो हम सब पका गई है जो टॉपिकवा बोल हव पर्मा कल्चर सबसे आगे यही प्रश्न तुहर से पूछब कौन ची है पर्मा कल्चर
1: परमानेंट कल्चर जन बाते दिराय के चेहरा का मैं दुगो दुगो नाम जुड़ल बा।
0: हाँ
1: एगो है परमानेंट और एगो है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर तो जानते हुआ कृषि
0: जी
1: कृषि बोला था ना तो मैं खेती बाड़ी बाते अब परमानेंट तो मैं जुड़ल बाते कि कैसे सकल्ला ऐसा गो कृषि करे कि सस्टेनेबल रही कि सकेला अपने से अपन देख रेख करे या तो फिर मिनिमम मिनिमम एहतियावशों चाहेला हाँ। हमने के जाके कोनो देख रेख करे के ता अब जब ये दोनों जब शब्द जुड़ गल पर माने एग्रीकल्चर तो ओके देखो कॉइन का जन से को वर्ड डला गल बा कर में तो ओकर नाम डला गल बा पर्मा कल्चर तो दो शब्द से जुड़ल बा
0: राहत मिलल हमके।
1: हाँ तो जन एगो एगो टेक्निक है कैसे अनेक अनेक प्रकार के योजना बातें
0: पर्मा कल्चर की बात करे थे तो तनि सुन एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमने के बात करे थे एग्रीकल्चर ये सब तनि सुन सिनोनिम सकब सब बोले।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल जैसे बोली परमानेंट

0: एग्रीकल्चर यानी कि कैसे से कब ऐसा नहीं कृषि अपनाए कि वो जो खेती बाड़ी कर रहते हैं जा हमने के मिनिमम एहतियातों से अपने आप से की अपन देख रेख करे उतर होगा सस्टेनेबल जी पर जो पर्मा कल्चर बातें ये टेक्निक एक शुरुआत एक डेवलपमेंट ये शुरू हो रहा ऑस्ट्रेलिया में
1: अच्छा
0: और उकर, उकर, उकर ट्रायल्स उकर जब ऐसे सब हो रहा था जे उकर उकर टेक्निकों अन्य रहा बिल मॉरिसन और डेविड हॉर्नगन तो वो लोग तस्मानी में खाली रहा है
1: अच्छा
0: तस्मानिया एक टापू है ऑस्ट्रेलिया के नीचे तो वहाँ से ही आल बा तो वहाँ के वो लोग तब किसी हमने दूसरा प्रकार के जानी लाचा सस्टेनेबल फार्मिंग क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से बता अपन अपन अपन छोटा छोटा मोटा खासियत भी बा ऑस्ट्रेलिया से
1: तो ऑस्ट्रेलिया से बात बोला था ई हो जैसे तो हम के यार बार हमने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर बतियली रह लीजा और जैसे बोले राजा जो प्रोफेसर जो सुभाष
0: पालेकर
1: अनले रहलन तो हौजा पर हमने देख लीजिए कि कैसे काउडक यूरिन बाटे बेसन कितना जो नेचुरल नेचुरल जो पदार्थ सब बातें वो लोग के इस्तेमाल तो कौन सिमिलैरिटी बा जो पर्मा कल्चर और कौन डिफरेंस बातें ये दुआ में
0: दोनों के देख बा दोनों तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हुई है दोनों में जीरो बजट हो या पर्मा कल्चर हो दोनों के खासियत ये बा कि हमने के ऐसा ऐसा टेक्निक मिला था अपनाए के कि जो हमने के कृषि के मिनिमम एहतियातों से सकी ले, ले जाए
1: जी।
0: और जो हमने के माटी के उपजाऊ रखी जो हमने के जो प्रोजेक्शन बा वो भी मिली और खासकर दोनों में जो हमने के जो पर्यावरण बा हमने के एनवायरनमेंट बा ओकरो भी रेस्पेक्ट करी
1: जी।
0: साथ साथ जो मनुष्य बा जितना जीव जंतु सब चीज बातें ओकर भी रेस्पेक्ट में कृषि करब जा यानी कि दोनों ही ZBNF जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग और पर्मा कल्चर में हमने कोनो प्रकार के हानि नहीं खोजते सर पर्यावरण के पहुंचाए के
1: जी। तो वहां से अभी पूछते एक और सिद्धांत हम देखा था वो है ऑब्जर्व एंड इंटरैक्ट मतलब
0: ऑब्जर्व एंड इंटरैक्ट पर्मा कल्चर में है लेकिन अगर हाँ। ऐसे आगे है एक चीज और बोल लेला कैसे तू सिमिलैरिटी पर पूछ ला जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से तो एक आध गो अंतर भी बात है तो सुभाष पालेकर जब जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग अनलग तो वह तो एनवायरनमेंट से कहना इंस्पिरेशन मिला लो के तो ओके कैसे जंगल कैसे अपने के देख रेख करेला तो वो सबसे पर्मा कल्चर तो उधर भी वह तो पर्यावरण के सेफ गार्ड होता करे के लेकिन कॉन्सेप्ट में एगो बड़ा अंतर बात है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो रहल ओकर में हमने आए ओकर टेक्निक में किसान के इंडिपेंडेंट बना होते हैं ओके जो जो एग्रीकल्चर इनपुट बा एथों बा ओके प्रयोग करे के अपन पदार्थ बा प्रयोग करे के अपन खेत में हो माटी के उपजाऊ बनाए खातिर कैसे हो एक आध कोई चीज बात कर लेनी चाहिए जीवन मित्रम सब वगैरह बातें वो अपन खेती में अपन वो अपन अपन फार्म में बना हुआ यानी कि खरीदारी नहीं पड़ेगा करे के जब वो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह जैसे फीमिया बातें तो अपन खेत में डाली तो खेत के उपजाऊ वगैरह बना हुआ था तो वो बाहर से फर्टिलाइजर नहीं किया था और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में वो खासकर वो खेती पर गनला ओकर योजना के ओकर इम्प्लीमेंटेशन हुआ पर्मा कल्चर में टेंशन जैसी ब्रॉड बात है किसी बात है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट से आलबा ओकर लॉन्ग्यूगमने उस अकेला तो घर भी इंटीग्रेट हो जाए जो बाछिमा बा जो रास्ता बा सब चीज़ों का मैं इंटीग्रेट हो जाए तब कैसे सकल जाए सब के हार्मोनी में रखे
1: जी।
0: जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में हो घर वगैरह वगैरह नहीं रहा तो हाई एकर में एगो अंतर बात है और ज़्यादा तक एगो अंतर बा कैसे कल्चर के रूप से देखा सा कल्चरल इम्पैक्ट तो एक तो भारत से बा तो वहाँ की संस्कृति और ऑस्ट्रेलिया वहाँ दूसर करती बा तो यहाँ पर ही जीरो बजट में खासकर गन्ना जो काउडंग बात तू ही बोल रहा गाय के फीमिया जो बातें और कर जो मूत बातें तो ओकर पर बहुत खास में बहुत खासियत बातें और ओकर पर बहुत अमल कर जाता वहाँ पर ही दूसर चीज के प्रयोग होता काउडंग के नहीं
1: जी
0: सब प्रयोग करे सस्टेनेबल

0: है, लेकिन जब कॉन्सेप्ट निकलल रहल तो वहाँ पर ही कनला हाई एम्फेसिस वा नहीं रहल।
1: तो हबी जन मोरिस में बाती जन पर्मा कल्चर में वो कितना प्रचलित हो गल बाती
0: ढेर कोई नहीं कहला एक हम ही नहीं लाकी करेला एक आज जना लेकिन सुनने में आल बाकी एक आज जना लोग करे लंचा
1: जी
0: तो देखा हमने जहाँ पर है सब मोरिशस तो हमने ऐसे ने को टापू हमने अपने आप में एक यूनिक जगह में है जा जहाँ पर अनेक प्रकार के किलचिया बा अनेक प्रकार के ओरिजिन के लोग बातें यहाँ पर ही तो हमने जब एक काम के ला सके जब खाना पकाया तो फ्यूजन रहेला तो हमने के जब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जब बात के ला जा तो ओकरे में एक फ्यूजन बातें तो हमने जब देखी ला जा जब एगो चीज यहाँ पर ही जब बोला जाता है एगो टेक्निक निमन बात अपनाए ला जा होंडर की टेक्निक निमन बात अपना ला जा अब सब टेक्निकें मिला के गना हमने अपन के एगो फ्यूजन कहते करके हमने सब चीज कर ला जा जहाँ तक हो सकेला तब
1: जी तो जैसे बोला था वह भाई शंभू की जो पर्मा कल्चर हो उस सगरो बातें हमने सब करे थे जा पर सकेला हमने नहीं जाना था जो त्याम हाँ तो हबी जैसे बोला है जो बातें वो घरवे से शुरू हो जाला कई जना वो लोग करेलन हबी बोलत रहला लाफोनेट भेरी खिड़की लगे हमने एगो चिप ओफले डाल दे ला सर कुछ ना कुछ डाल दे ला सर यही सब तो पर्मा कल्चर है तो ढेर चीज हमने अपन रसोई में इस्तेमाल करके हमने फेंक दे ला सर कई जना कई जला बात कर लिया है जब कॉम्पोस्ट के बारे में जो छिड़काव सब हमने फेंके ला सा तो ये जो यूजफुल रिसोर्सेस हवन सा ये लोग के इस्तेमाल हमने कैसे सकब सा करे
0: तो पर्मा कल्चर में ये गो चीज में सिखावेला कि कैसे सकब सा जो हमने लगे बा ओकर ओकर रिसिक्लाज करे ताकि फेंकअप जाना है
1: जी
0: है? ओके ओके फिर से ओकर प्रयोग हो फेंकअप जाना है फिर से प्रयोग हो अब जैसे बोला कि हमने के जो रसोई घर बा वहाँ पर ही तो किचन वेस्ट मिलेला तो ज़रा तक ऑर्गेनिक रहेला तो कुछ चला करेंगे तो चलाओ के कॉम्पोस्टे करेंगे कॉम्पोस्ट बिन में डाल दे तो कॉम्पोस्ट बिन में जब कॉम्पोस्ट हो जाए तो सगबा सगबा जाओ जब सड़ जाए निमन से तो कर प्रयोग करे तो खाद नहीं प्रयोग कर जितना चीज आज घर की बात करना चाहता तो घर पे तोहर अगर अगर सोच पा तोहर घर बा तोहर आंगन बा तोहर दरवाज़ा कुछ भी हो दीवार बा वगैरह वगैरह तो चला सोचे कि तोहर घर के आसपास कुंची बा तोहर घर में से कुंची निकलता कुंची ढुकता तो ओकर पर कैसे अब चला सोचे कि कैसे ओके तोहर तोहर अपन अपन लावताज में चेंज कर बदलावन बा ताकि ओके फिर से प्रयोग कर पाता किचन वेस्ट एगो है बाहर में जब पत्ता झरता ई दुगो है तोहर जन अधिक अभी शुरू में तो बोला वर्षा होता
1: जी
0: तो वर्षा होके तोहर घर पे हो पानी कहाँ जाता शायद रास्ता पर जाते हुए तक अब कैसे
1: जाया नहीं चाहला करे कि जुन चीज बातें ओकर सही इस्तेमाल
0: हाँ फिर से चला जितना चीज हमके मिले था जितना चीज प्रकृति
1: दे होता रियूज रिसाइकल
0: हाँ जितना चीज सकब जा हमने मनुष्य के और से कुछ कोने में वेस्ट जुन आवा था जब सकब से रियूज करे रिसाइकल करे तो कर अब जा अब इतना होल जो ऑर्गेनिक चीज बातें कहते हम जो बोली किचन वेस्ट जो उतना ऑर्गेनिक बता पत्ता तो ऑर्गेनिक बता पानी तो प्रकृति से मिला था दूसरा चीज बा घर में से तू सकेला कहानी कितना चीज हो फेंकत हो बा कैसे सकेला कोनो फेराई हुई कोनो लकड़ी हुई कहानी एक पुराना जो फर्नीचर हुई ओके फेंकत हुआ तब पर्मा कल्चर में जब सोच बा तो कैसे सकब है जो फेंके जाता है ओकर कोनो एगो इचिलिते नहीं सकला होए हाँ नहीं सका हाँ हाँ एगो नया जीवन जब मिली तो नहीं सका जाए वो नया जीवन दे अब कैसे सकेला होए अब कैसे फेराए बोलते हैं फेंका तो एगो बाहू फेंका तो एगो मेप फेंका तो तो सकेला कैसे कोई टनल सका बना दे सकेला कैसे एगो ट्रे कहते कुछ बना दे जो में सका वो में कॉम्पोस्ट माटी भर के तो करने सका कुछ रोपे तो देख ला एक हम जो वेस्ट बातें ओके ओके एकदम मिनिमम कर दे जा
1: माने कि जो प्रॉब्लम बा उस सॉल्यूशन बन जाला
0: हाँ वही हाँ ये अच्छा चीज बोला तब पर्मा कल्चर में जो समस्या रहेला कैसे सकब सा उस समस्या के उ उलझन के हमने एगो सॉल्यूशन सुलझा दे सा तो एगो सॉल्यूशन कहते बन जाए ई भी पर्मा कल्चर ई भी सिखावेला तो हाई एक दू को हम उदाहरण दे ली अनेक ऐसे प्रकार के चीज बा एगो देखा तोहर तोहर घर लगे बाहर में आंगन में
1: जी
0: तो हो आंगन में तू सगरू ने चले ला कैसे कैसे बोले खाते तोहर गनला सौ मित कागे के आंगन में
1: हाँ
0: जिसमें

0: 5 mètres, regarde là, t'as aussi, non, 10 mètres, pas 10 mètres, 100 mètres carrés, ouais. T'as aussi 100 mètres carrés, ouais, mais, allez, go, mettre, mais tout d'un coup, tu allais là. Non, tu allais là. T'as 100 mètres carrés, ouais, mais, chayad, tu ego rasta dans là, régulièrement. Ego, t'as, ghar se nikal la, t'as hawe rasale ke chal bai se. Non?
1: Ji.
0: T'as, ab, कैसे ये भी पमा कल्चर में इंटीग्रे कर पाते अब तू जान गए ला ये तो हर पर्फवे है तब हुआ परी रोपाई नहीं कर बा ये सब चला एनालिजे करे के तब ये तो हर होगल तो हर पर्फ तब पर्फ के सब डाले कर दे सब छोटा मोटा रोस या भी कुछ डाल के तब एक वो तो हर पर्फ कहते बना दे तब वो कर आस पास में वो कर भीरी में हुआ परी रोपाई कर बा ताकि जब वो पर्फ पर हो तसक बजा देख रेख भी करे अपन अपन पौधा वगैरह के
1: तो ये सच्ची बात बोला था तो जैसे बोला था भाई शंभू हमने सब यही करी ला सा पर हमने सकेला नहीं सोची ला सा एकर बारे में तो अब बखत चला बा जब मैं कल्चर कर रहा था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर रहा था तो सोच समझ के करिए और कोनो चीज जो अपन रसोई में इस्तेमाल करे ला जो प्रॉब्लम बा ओकरा सोल्यूशन में बदल देबा 402-8085-402-8085 पर सकबा जा कुछ पूछे जे तोहरो लगे कुछ ऐसा बा जे शेयर करे के मन बातें तो लाइन खुलल बाटे एगो छोटा सा स्क्रब ब्रेक के बाद हमने वापस आई लाजा।

0: तो बहुत बहुत धन्यवाद फिरों से हमने संगे जुड़ल हुआ आज की चर्चा कार्यक्रम में। आज हमने परमा कल्चर पर बतिया था ऐसा और हमने के मेहमान हवन श्रीमान संजय शंभू और फागिद अनी से। तो भाई शंभू अभी बोलत रहला जे एगो पाथवे चाहेला हुई के जब एगो एग्जाम देला तो अभी हबिया तोहरा तोहर से पूछ ले रहे जो ऑब्जर्व एंड इंटरैक्ट मान कि हमने सब करीला सर हमने धरला एगो पुफले हम दल्ली हैं अपन खिड़की लगे तो हम जो मनशावा बाती इमें आवेला जो ऑब्जर्व एंड इंटरैक्ट माने कि हमके खुशी मिलल हम एगो पुफले या एगो गांची रोपले हैं अब देखत है ओकर माने कि कैसे कुछ चाहेला ऑब्जर्व करे के और कैसे इंटरैक्ट करे के।
1: बहुत ज़्यादा ऐसे होला कि तोरा एगो उत्साह रहला कुछ एगो रूपाई करे के तो बोला चला
0: आज हाई करब
1: आज हाई करब कुछ जाके रोप देला जा जाके रोप देब जा से लेकिन शायद ऐसा जगह में जाके रोप दे जा कि बाद में वो जो पौधा बाते वो निमन से डेवलप नहीं हुई तो वो उत्साह के कारण शायद उत्साह रहल रुपाई करे के लेकिन ठीक से हमने ध्यान नहीं देने सा कि जहाँ पर रोपत ऐसा वो जगह ठीक बाकी नहीं। तो ऑब्जर्व एंड इंटरैक्ट यानी कि परमाकल्चर में वो डिजाइन प्रोसेस यानी कि कुछ रोपे से आगे कुछ करे से आगे कुछ करके जैसे कि बोलिए कुछ ट्यूनेल से कब से करे वो भी लगाए से आगे चला हमने के पहला निमन से ऑब्जर्व करके कि जहाँ पर हमने कुछ होते हैं सा खोजत हैं सा खेती करे के वो जगह कैसन बा कौन चीज वहाँ पर ही होता जैसे कि सूर्य किस दिशा में से उगाता
0: जी
1: और कौन दिशा में जाके डूबाता काहे क्योंकि जन जन दिशा में उगी डूबी तो छाँव करेला अब जब छाँव के बाद बोलनी तो जब सूर्य उगता डूबता तो कुंची कुंची हुआ पर ही दिशा बाते उस सकेला तोहर आज आंगन के बात करब जाता सकेला तोहर आंगन में अभी सकेला वो लेक्सी के पेड़ हुई तो बहुत छाँव करत हुई या वो कोको के गौछी हुई नारियल के पेड़ हुई तो बहुत दिक्कत हुई
0: तो हजत तोहरा अभी रुकब जब बोलत हुआ एक बारे में जब ऑब्जर्व करब सा इंटरैक्ट रह सा इतना हमने घर के अभी बात करे थे सर पर कारों में बड़का मात्रा में जब करब तो ये सब देखब
1: हाँ वो भी देखब जा कैसे उदाहरण नहीं एगो पेड़ हो तो बहुत हला बहुत सारा ऐसे ऐसे होला कि खेत में भी खेत में या खेत के बगल में पेड़ वगैरह रहेला एगो आदमी जब खेती करी अब गनला एगो आदमी खोजता थे लीजिंग करे के यानी कि खम्बा गाड़ के ओकर में रस्सी सब डाल के तब ओकर पर गन लायान चढ़ी अब ओके कोचले आज दल सूर्य के कोचले आज दल तो कुंच हुई हर एगो जन दीवार के थे खड़ा हो अब तोहर तोहर तोहर लत्ती की ओकर खेती तो हौ लतिया पर हौ लालिमा पर अब छाँव करी
0: जी
1: कैसे एक बनान के वो केला के वो व्याजी तोरा मनमा बनाए के अब ऐसा एगो जीवेक्षों में बनेल कि हर एगो पेड़ गंदा जूसर पर बहुत छाँव करता और अजय ऐसे एगो लालिन में बनेता दिशा में बनेता कि जब सूर्य ऐसे उगता और डूबता एक साल में तो सूर्य एक को जीवेक्षों ने पकड़ेला लेकिन ज़्यादातर अजय अवसर रही तब बेहतर रहा क्योंकि सूर्य के जन किरण बात और खेत में निमन से ढुकी शायद तब सकता जा तेली में भी रुपाई करे अच्छा अजय घमा भीतरे तेली में नहीं ढुकी तो वहाँ तो रुपाई करके बहुत मुश्किल रही कुछ सकेला नहीं हो जमी तो ऐसे छंगा देखे के
0: जी
1: अभी तो इतना सूर्य के बात रहल अब छाँव के बात बोली जाओ अब कैसे सकेला अब आले खेत के बात बोले तो एगो इलाका में शायद एक जना के खेत बा वो थोड़ा कैसे बोला सा लापौत बाते वगैरह या बारिश होला तब बारिश जब होला तो वो पानी कैसे ओकर खेत में से गुजर के जाला ये भी चला सोचे कि नहीं कि जब खेत के हम गल हैं जैसा देखे एक जना हमके बोले ले रहा तो माजा इलाका में तो वहाँ पर ही जब बोले हमके बोले बाद जे

खेती बाड़ी करी और एगो लाशिया भी बनाई। तो हम जब वो जन जगह बा वहाँ पर जब चल के जाँच पड़ताल कर पड़ताछ कर जाँच करते हैं तो हमके लौक था कि वो जो नादिसौत बा पहाड़ पहाड़ी इलाका में बा तब से माटी धोअल बातें तो यानी कि वहाँ पर ही मोटा पानी नीचे किसी भी मोटा के पानी पहाड़ के पानी

0: भी वहाँ बन रहा लाशे बना के हम बोले वहाँ बनाओ तू, तो दूसरा कोई सिक्लोन आए या पानी ज़्यादा बरसी तो पानी जब तेज रफ्तार से जब नीचे आए वो तो सब लेके चल जाए।
1: मैंने कि चाहला दूर सोचे कि
0: चला सब जो स्थिति बा साइट पर लोकालिटी साइट पर जहाँ पर तोर खेत बा उस सब पर चला जांच करके पानी बसेला कहाँ से जला कौन चला प्रोविजन करे के तो हर खेत में सगरो माटी बा या पावास बाते रोज बाते कैसे सकबा जन जन जन जन जगह में वो रोज बाते ओके अलग प्रकार से प्रयोग करी कैसे सकबा जहाँ पावास बाते कैसे प्रयोग करी जहाँ माटी बा कैसे प्रयोग करके कैसे जहाँ रोज बा नहीं सब ऐसी ऐसी छोड़ दे बता नहीं छबाते सकबा पास में लत्ती डाल दे लेकिन लत्ती रोज पर फिले हुई सकबा चाहे ऐसा या रोज पर कुछ तो नहीं कहते कुछ बना दे वगैरह लेकिन प्रयोग कर ब जन बा कैसे शुरू में बोला जन जन जन प्रॉब्लम बाते ओके सोल्यूशन में चला बदले के
1: तो आजकल हमने ऐसा जिंदगी जियत है सर हमने सोची राजा कि हाँ रुपए हुआ तब तक जस्ती जस्ती मिल जाए हमने के लाइफ स्टाइल जो बातें वो बदल कर बातें और वो हमने आगे के सोची राजा पर हमने जो फास्ट पेस जैसे हमने बोली राजा हाँ आज हम रोपली तब जितना जल्दी हो सके हमने के मिली खाए के हमने के जिए के तो हमने हमेशा बोली राजा जो छोटा छोटा स्टेप्स बातें वो एक ही हला जे लेबर तो प्रॉब्लम हो ला जरा तो कदम जो बातें चाहे सोच समझ कर आगे बढ़ाए के स्टेप बाय स्टेप तो ये सब कैसे हुई जब में लॉन्ग टर्म जो बातें वो फायदा हुई
0: तब पर्मा कल्चर में तरह जो टेक्निक बतावल गल बा उमें एक एक कुछ में सब चीज नहीं कहला जा आज एक कुछ में सब चीज वो कर बा तो सकेला निमन से प्लान भी नहीं हुई ओकर में हम नहीं कैसे बोला सा बिल्डिंग ब्लॉक बाय ब्लॉक जैसे बोला कदम कदम कदम से
1: जी
0: सब बड़ा करेगी तो चला अनेक खेत हुई तो चला सोचे कि हमने कौन प्रकार के खेती करी ला जा तो आज एक गला सब्जी खाली करी ला जा तो कौन कौन सब्जी करी ला जा कौन मौसम में है सा तो कैसे सकब है हमारे आज एक बीघा बा तो हम कैसे सकब है एक बीघा बा के अनेक पार्सल में बांट दे ताकि हम एक एगो चीज के मोनोकल्चर नहीं करब चला एगो जीवस्ते रह के कैसे बोल चला सस्टेनेबल रह के ना तो कमती बीमारी कमती पिलुआ वगैरह आए अब कैसे देख लेबा लालो के पौधा तनि सुन ऊँचा होला अब एगो लत्ती लेबा एगो लत्ती सा कि नीचे वो रहे लेकिन कोई लत्ती बा ऊपरे चढ़ेला
1: जी
0: हाँ तो आप कैसे सा कब जा कहाँ पर ही कौन ची रोपे कब रोपब ताकि गन्ना एगो ओकर दूसर पर हानि नहीं पहुँचा लेकिन लाभदायक सकेला रहे अब कैसे कोई कोई मकई रोपेला तो हम मकई रोप देवे तो नीचे में सके जा करेला रोप दे बाद में तो गते गते गते ऐसे आवेला
1: और चाहेला आदते हो के ना आजकल हमने क्लाइमेट चेंज के बात उ सब करत है सब देखते है सब पानी आवता कमती पानी आवता भरती मानी कि ढेर पानी आवता घामा बात सब चाहेला आदते हो के
0: हाँ बोलते जाने के चाहे जाने के जहाँ तुहर लोकालिटी बा जहाँ तुहर खेत बाते या तुहर घर बाते वहाँ पर ही तुहरा कुछ ऐसा नजर आवता शुरू में बोले जाना चला ऑब्जर्वे करे के हाँ तो ये सब चला जाने के तो क्लाइमेट चेंज आवता तो सुखार अभी गल हला सुखारी पर बात कर जा तो ये भी चला सोचे कि तब हम तभी वहाँ बरसात पर एगो उदाहरण दे ली तब बरसात होला तो पानी कौन बगल से चला लेकिन उल्टा भी चला सोचे कि जहाँ पर है तो क्या यहाँ पर ही सुखारी भी आवेला पानी नहीं मिलेला उतना तो पानी नहीं मिलना तो कैसे से कब्जा कौन योजना आनब सा कि गन्ना हमके पानी पर कमती चला निर्भर हो के कौन हाँ। वहते से कब्जा रूपे
1: हाँ।
0: अभी एक जना के दिखत है एक आध गो वहते डेवलपे कर लेबा खास कर टमाटर पर यूरोप में भी लासे सुखारी पड़े था तो उस सुखारी के मौसम में भी वो गन्ना टमाटर गन्ना कमती पानी से छीनी होता खेत में बितरे में नहीं लासे में नहीं बा खेत में
1: हाइजाबर एक उत्तम हम देखते हैं डिजाइन फ्रॉम पैटर्न्स ये कौन सी है
0: तो सब चीज के एक रिपीटिशन होला ना सब चीज के कैसे हम बोले मोनोकल्चर नहीं करे के आज खेती के लिप्स तब मोनोकल्चर नहीं चाह रहे करे तो एक पैटर्न कहते रही जो एक चीज बा आ यहाँ पर रोप ले है जा तो एकदम से मोनोकल्चर कहते आ सगरों नहीं रही ना तो आ हिनिया हुआ हुआ हुआ तब बे वगैरह वगैरह और फिर प्रकृति में ओकर पैटर्न है काउचिक यानी कि स्ट्रिक्टमेंट गन्ना एगो चीज

0: नरेहला लोद में लानाचुए में जब जब अपन खेती बाड़ी करबा पमाकल चमे तो हवो चीज से चला एस्पिर हुई कि साथ साथ कैसे से कर लाए एक आध गो चीज के रूपे जन जन दोस्त रहे कंपेनियन बोला कंपेनियन क्रॉपिंग जन जन
1: मिलजुल
0: के रही साथ साथ जाए
1: जी। तो चले हमने वापस आए ला जा एक छोटा सा ब्रेक के बाद।

0: इधर सच्चे बात है, हमनी के देश में हरियाली बातें अभी जहाँ जाए अपन घरे हो अपन गांव अपन शहर में हो रास्ता में हो बीच में हो देखबा जोली जोली प्लांट गाँव छू सब रूपाल गल बाटी तो हैजा परी आज हमने परमा कल्चर के बारे में बतियात है सर। जैसे हम भाई शंभू से बोलत हैजा हमने सब करीला सर पर सकेला एक जो लावताज बातें हमने एक बारे में जस्ती नहीं सोची रहा सर बस करे के मन होल हमने कर दे रहा सर। भाई शंभू एगो चीज बातें है जा परी रोड साइड लैंडस्केपिंग में जो परमा कल्चर बा हमने जानी ला जा बड़का बड़का पो सब हमने देखी ला सर ये सब परमा कल्चर है और वो जो जे हाँ कैसे एम्प्लीमेंटे होला और जो एम्प्लीमेंटे होवेला तो कैसे ओकर मेंटेनेंस होला
1: रोड यहाँ पर हमारे ख्याल से नहीं कह लें सर रोड साइड में रोड साइड लैंडस्केपिंग में मैं हम हमने हमने सकब जा परमा कल्चर से इंस्पिरे होके करी
0: कैसे
1: देखा के जब रोड साइड पर लैंडस्केपिंग हुला तब पेड़ पौधा लगावल जला तब पेड़ पौधा जब लगावल जला तो चला पहला सोचे के कि उ इलाका में क्योंकि अप यानी कि अपर प्लाटो बा जब लोलैंड बान क्लीमा बाते दूसर रहेला तो चला जाने के कि ई इलाका में कौन तरह के पेड़ पौधा सकल जाए लगाए ई पहला। दूसर बात है कि जब पेड़ पौधा के जब चुनब जा तो ऐसा पेड़ पौधा चला लगाए के जो उनके डाली या ओकर ओकर जो जड़ी बातें कोई दौजे नहीं सकी हो चालक लोग खाते या फिर पेटों लोग खाते क्योंकि कभी देखी ला जा कि जब रास्ता पर डाली लेकर जाते हुआ तो पेड़ के डाली रास्ता पर हुआ या तो फिर जन थोतवा बातें वो दिखाए तो फाट गलबा क्योंकि हट गलबा हिल गलबा या रास्ता ही जन बातें वो दिखाए जाए तो बोम्बे गलबा या फुट गलबा वगैरह वगैरह तो सब कोई दौजे है
0: जी
1: हाँ तो ये सब चला पहला सोच के करे के अब सच कैसे बोलें जब परमा कल्चर में डिजाइन प्रोसेस में ये सब चला सोचे के तो फिर बात जब शुरू में बोली जा कि परमा कल्चर में देखा जा कैसे सकल सा मिनिमम एहतमाशों करे तो आज ऐसा ऐसा चीज रूप जा जो हमने के परी बार बार हर हफ्ता या हर महीना आकर गंदा प्रूनिंग करे के घास काटे के तो ये परमा कल्चर नहीं हो तो कह में बहुत एहतमाशों बातें ऐसा ऐसा चीज जला रोपे के जो में सकेला वो पौधा जो बातें नट्टा हुए रही उतना डाली नहीं होला तो प्रूनिंग नहीं पड़ला करे के या तो फिर जो घास बाते ऐसा एगो चला एगो एगो ग्राउंड कवर कहते ऐसा एगो चीज डाले के जो जो अपने की सेल्फ मेंटेन करी और दूसरा चीज के नए नए नए जमे दे उनके सप्रेस करी तो ऐसे तो मिनिमम है तो वॉशो परी करे के नए परी जाके बार बार घास वगैरह काटे के तो एगो दूसरा सा उदाहरण है एक बहुत बहुत साल हो गल पोलवी में हबा के पास पोलवी में तो एगो लैंडस्केपिंग हो रहा तो पोलवी में तो उतना पानी नहीं बरसेला था लेकिन और घमा घमा तो वहाँ पर ही आए मारेला बहुत तो एक महीना के बाद जब जाते थे देखा सब चीज़ सूख गल बात तो कौन छो बात हो डिज़ाइन प्रोसेस वहाँ में तो कोई सोच ले नहीं बाकी वहाँ पर ही देखा वहाँ पर ही पानी कमती मिलेला तो चाहला एगो लैंडस्केपिंग कर चला कोई सिस्टम इरीगाशो या ऐसा नहीं कोई माटी की तैयारी करे के जो निमिजते ज़्यादा से ज़्यादा कौन से अवे करी या तो फिर कैसे परमा कल्चर में होला वो चिप जन बातें तो जो लकड़ी बातें ओके चिप चिप चिप छोटा छोटा करके हाँ काट के तो ओके ग्राउंड कवर कहते दला जला तो जब ग्राउंड कवर कहते दलाल बाद तगनला उली मिजते भी चीनी करी सर के ऑर्गेनिक माटा भी बनी और जो घास बा वो भी नहीं जमी ऐसा चाहला सोचे के
0: जी बनी कि चाहला जैसे एक

0: बोले हवा इंटीग्रेट रादर देन सेग्रीगेट
1: सब चीज को निकते बाते इन्हें बाकी तो हम कहीं एगो पौधा डाले या एगो खेती करे तो कहना हम खाली कुछ तरबूज रोपली तो अब हम किसान खाली तरबूज खाते सोचे के हम किसान सब चीज संगे सोचे के कौन पौधा है कौन सब्जी है कैसन माटी है लोवियोगन में कौन चिबा कौन कन ऐसा पेड़ पौधा लगा जो हम के अमर खेती की पोतेजी करी कौन चीज लगा जो सकेला जो पिलुआ बा मारू पिलुआ बा ओके भगाई ओके हेने ने आनी तो सब चीज इंटीग्रे बात है सब चीज को निकते बात है
0: एगो डाइवर्सिटी चाहिए ला हुई के
1: हाँ ये आवश्यक है कोनो एगो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में खाली परमाकल्चर में नहीं कुछ में कोनो एगो सिस्टम एग्रीकल में जो बोला सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करे मोनोकल्चर नहीं चला करेगी
0: ये चला एगो जीवीएसटी
1: रह के लेकिन जीवीएसटी खाली हमने के सब्जी या फल वगैरह में नहीं है जीवीएसटी हमने के जो जो पौधा हमने के खेत के ऊटू में बा उपर में बा जो जो जो पेड़ बाते कैसे से कब जा लीला के
0: नीम के कुछ जो बातें इंक्लूड होला
1: हाँ सब संगे चलेगा कैसे सब सा कैसे पता नहीं नीम के पेड़ लगाए तब पानी होकर पत्ता के प्रयोग सब ऐसा करिए कैसे सब वेचवे के होकर पौधा लगाए तब के तोहर माटी आज धुआत हुई तब ओके ब्लू के करे ला मिगे के सकल डाले तो कैसे कैसे कोनो कोनो कैसे तुलसी बात है हमने हमने जान ला सा तुलसी कैसे पूजा कर ला जाओ कहते हैं तुलसी आवश्यक बात है तो तुलसी आज कृषि के माध्यम से देखा जा एगो एगो खेतीहर के आँख से देखा जा तो तुलसी ऐसा नहीं पौधा जो मुझ दे फ्री जो फ्री में होला फल में होला ओके आश्चर्य करेला
0: जी
1: तो आज एगो तोहर एगो व्याजी बात है तो तुलसी लगा दे ले हुआ करीब में तब हुआ पर तुलसी के पास में वो अपन लथाप डाल ले हुआ मात ब्लॉक डाल ले हुआ तो तेरा काम ही आए
0: सच्ची बार बोला था वजह कुछ हो पूछे के बातें हमने के लाइन खुलल बातें हाँ 402-8085-4002-8085 तो हमने यहाँ जो नपमा कल्चर जैसे बात बोला था वह ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक वो बातें और जे जितना जना वो करेलन अच्छा मोरिस में जैसे हमने जानी ला जा कई जना जो पशुपालन करेलन और उपमा कल्चर ये दोनों संगे संगे चलेला
1: बिल्कुल जैसे बताए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और जैसे बोले सा सब चीज़ को निकते बा अभी तो उदाहरण है जैसा खेती पर या घर पे लेकिन जो पशुपालन के लगा उलोग भी एक में बात है का है
0: फीमिया मिलेला
1: फीमिया मिलेला हाँ तो फीमिया मिलेला अब जे सब जो यूरिन बा वो भी मिलेला जे आज गाय के हुई फीमिया के सब रिसिकले करके खाली फीमिया नहीं सब कॉम्पोस्ट बना दे नीमन बढ़िया कॉम्पोस्ट रही तब कॉम्पोस्ट के खेती में सब जा प्रयोग करे या सब जा पो में सेवी करे घर पे एगो चीज और कबो बात नहीं कर ले जा कि एगो किसान बा उत्तरी इलाका में तो जब शुरू में जब लाफे में इंटीग्रे करता हल तो ओकरा लगे गाय नहीं रहल अभी बात है तो ओकरा लगे गाय नहीं रहल ओकरा लगे बतक रहल कानव रहल तो कौन चीज करे तो जो चिकन चिकन वायमेश ग्रिल एगो ग्रिल करते हैं तो वो लेके एगो पार्सल में ना सैंक पेयर्स ऐसे पार्सल में खेती तो वो बीघा के कहला लेकिन सकेला सैंक जिस पेयर्स के पार्सल में तो वो चिकन वायमेश के बहे डाले होता है तब बटक के ऊपर में खोल ले होता है तब वो कुछ हो जाके जो वहाँ पर जो पिलुआ बा वगैरह वगैरह बा अपन मुर्गियों के उनमें छोड़ देता है तो जब एगो खेती समाप्त हो गल तो मैं छोड़ दी तब बकरी भी छोड़ दे तब बाद में ओके निकाल के जब दूसरे को पार्सल में डाल दे तो यहाँ पर ही कौन चीज हो जन जानवर रहल इवन लाफे में टिक गए ना है तो जन जानवर बा वहाँ पर ही घास खाता पिलुआ खाता फैचलीजे वो करा था
0: मतलब हर जगह जो प्रॉब्लम बा वो का सोल्यूशन हर जगह मिला था
1: हाँ देख ला कैसे कैसे किसान जन बा कितना दूर के सोच के कर ले बा और मुफ्त में कम करवाने चाहला जन
0: जितना खेती रहा सब हवन जा फायदा से कोनो प्रशिक्षण मिलेला कि कैसे चाहेला अपनाए के इम्प्लीमेंट होई के
1: हमने के को हाते या तो नेचुरल फार्मिंग ही में को बाते आज एक यही खाली देखा अब जाता नेचुरल फार्मिंग के को में तोरा अनेक प्रकार के जो योजना बाते नेचुरल फार्मिंग में तो सब तोरा मिली होकर में ओकर में करे के

0: ताजे थोड़ा मन हुए नेचुरल फार्मिंग पर जानकारी प्राप्त करे खातिन या तो फिर ट्रेनिंग ले खातिन तो हमके कुछ दफ्तर जाया जा और वहाँ पर ही बोलिया जा।
1: अच्छा एगो जना हवन उनका सुनी ला जा। हेलो
2: हेलो हेलो
1: नमस्ते जी।
2: नमस्ते नमस्ते जी। मैं थोड़ा सा एक थोड़ा सा बात बोलूँगा
1: जी।
2: मैं तो बुजुर्ग हूँ, सोचिए हम लोग अगर बचे हुए अभी से सारा रास्ता में नहीं ले जाएंगे तो कब कौन उसका ले जाएंगे? क्योंकि गुरुकुल देखो इंडिया में वहाँ पर गुरुकुल है, जैसे बोलचाली कुल पे यहाँ पर हम लोग का गुरुकुल जो है, हम लोग को बच्चे के छोड़ना चाहे मॉरिशस में भी गुरुकुल ऐसा चाहिए, तो तब हम लोग का बच्चा जाके जो ड्रग में नहीं घुसेगा ना। तो इसीलिए मैंने आपका प्रोग्राम भजी से सुन रहा हूँ। रेजू में बच्चे लोग को बोलो जाओ वहाँ सीखो। हर कैसे बोलते हैं ना, हम लोग जितना अच्छी प्राइमरी स्कूल है कॉलेज है तो सब कोई के पिताजी के बोलना अपना जाओ जी, पापा जी बोलते हैं पोटा लेकर कैसे क्या हो रहा है, तो ये बड़ा चीज बड़ा मौका दो मौका दो ताकि चीज पर बचाने के लिए। बच्चे मैं एक बुजुर्ग हूँ, मेरे भी तो गांव में यहाँ पर तो जो होगा वो विषय आज शाम को तो हम लोग सब पूछेंगे ना क्या क्या हो रहा है, कैसे पुलिस को मदद करना चाहिए, पुलिस नहीं होगा तो क्या होगा, क्या हो एक दिन के लिए पुलिस निकाल लूँ तब देखना क्या होगा, क्या हुआ था आज देखो गाँव में क्या हुआ था। इसी देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हम लोग को पुलिस को साल्यूट करना, लोग बच्चे लोग अगर किसी पुलिस के देख रहा हो तो साल्यूट करना उसको।
1: अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद चाचा जी, बहुत धन्यवाद। तो चल जी निमन रास्ता पर चल बा तो हमने आगे जलब जा।
0: एक पर चाचा जी कुछ याद रख कुछ अलग के बात कर लें लेकिन एक पर कुछ कुछ याद आ रहा मुझे भी। सन 2012 में उस साल में हम फ्रांस में रहनी एगो कोंगले मोजाल में गए रहनी तो वहाँ पर ही एगो इंस्टीट्यूशन बा नाम है इंद्रा, तो इंद्रा के एगो मैगजीन पाके दिल रहा तो वो मैगजीन में तो एगो कार्टून द्वारा बताओ गया कैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करे के, तो हाउ में बतावला एगो जवान जो बातें अपन अपन बुजुर्ग के बोला था जो एगो कार्टून में लिखा बताओ बगा मशीनरी में पेस्टिसाइड वगैरह ऐसे बातें, तो वो अपन बुजुर्ग बता नहीं तो कह चलना ऐसे नहीं करे के तो कह चलना ऐसे कृषि करे के, तो अब कैसे कृषि करे के ओका में ओके बताओ बगा गाय बा फिमिया बा माटी के चलाव लाता
1: जी।
0: तो उस समय में देखा लगभग 15 साल होता अब, तो उस समय में देखा एगो सोच में परिवर्तन आ गल रहा वहाँ पर ही कि जन प्रकार से हमने कृषि करते हैं जा इंटेंसिव केमिकल वगैरह वो ठीक नहीं बातें, हमने कि चला सस्टेनेबल कार्टून के महत्व ही रहा कि चला सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करे के। तो भारत में जेब तो अभी भारत में अनेक आश्रम बातें और ये लोग ये प्रोसेस लीड करते हैं जा कि कैसे पमा कल्चर कैसे ऑटो लिविंग बेंगलोर में इंटरनेशनल सेंटर में बड़का पमा कल्चर के खेत बातें ऑर्गेनिक फॉर्म बातें सदगुरु भी देख बता वो तो बता जा वो भी यही बोला तो जा और सॉइल सेव द सॉइल के होकर विचार ले जा देश विदेश जाके यही बोला तो जा कि हमने चला जो माटी बातें चला उपजाव रखे के नहीं था जो पीढ़ी आवा था नहीं सके होकर में कृषि करी
1: जी। तो जे देखबा तो अभी एगो शब्द इस्तेमाल करा चेंज चेंज तो होते रहेला और वो एक संगे हमने के आगे जाए के बात है, तो कैसे ये जो चेंज हुआ बातें पमा कल्चर में हमने एक से जूझे से जस्ती ओकर से जितना फायदा बातें ओकर से हमने सकब सले
0: देखा कभी कभार बदलाव आने खातिर उपस्ताक भी रहेला कैसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में बलि जागरना गाय के फिमिया संगे काम करे के काव डंग का यूरिन वगैरह तो सकेला एगो जवान जन ओके ओके कृषि पसंद हुए तो बोली जब गाय के फिमिया जब काव यूरिन सब मानी पीले करे तो ओके सकेला अपीलिंग नहीं लगी। पामा कल्चर एगो ऑस्ट्रेलियन

0: nikah konsep puan pada ikhya atau kan dengan design process aisan mati ki dusar tarika se batal ga bakai si sustainable agriculture ka dikhe aur aaj kal aaj dekh bata agriculture janmani ki krishi bate o kan la ha o krishi ne aaj se bana sa bat bate fail ho gaya ta ma ke karba ta jaise mila ta karba usse ne bate हमने के कृषि जन बातें आजकल एगो एंटरप्राइज कहते हो गलबा एगो एंटरप्राइज कहते हो गलबा
1: एगो पिली हो गलबा हमने के देश में सब सब
0: जहाँ पर वहाँ पर आमदनी भी बातें और जहाँ पर थोड़ा मन रही कैसे हो बड़का बड़का गाड़ी भी चलाए के था वो भी सके प्राप्त हुए
1: जी तो चल एग्रीकल्चर खेती बाड़ी में फायदा वो बाटे हमने के माटी के मोल बाटे सकल सब बोले
0: बिल्कुल बिल्कुल फायदा बाटे
1: जी तो चल आज के चर्चा कार्यक्रम है जे परी समाप्त हो गल बाटे बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान संजय शंभू जी फागिद अने से और वो आवत हफ्ता फिरों से मिलब सा तब लिख सब कोई के हमने है ये बोलब जा अपन माटी के मोल देखिया जा माटी के संभाल के रखिया क्या हमने तो माटी से आल है जब माटी में चल जाब सा तो निमन से संरक्षण करिया सुरक्षित रखिया तुहु सुरक्षित रखिया निमन खाइया जोन चीज हमने रोपाई करी लासा हाइचा पारी हवे हमने खाप सा और स्वस्थ रहब सा प्रणाम शुभ दिन।

0: आइए सुनते हैं समाचार विधिमा के साथ। नमस्कार।
1: नमस्कार गिनीशा, सभी सुनने वालों को नमस्कार। सदे का आज दक्षिण गणराज्य के डर्बन शहर स्थित डर्बन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में अपने राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का 46वां आम शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम भाग ले रहे हैं। 40वें सदिक शिखर सम्मेलन का विषय एक न्यायपूर्ण दुनिया की तलाश में बुनियादी ढांचे के विकास, कृषि और महत्वपूर्ण खनिज परिवर्तन के माध्यम से मजबूत टिकाऊ और समावेशी औद्योगिकीकरण है। मॉरिशस को सितंबर महीने के आखिर से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से ईंधन का सप्लाई प्राप्त होना शुरू होगा। इस संदर्भ में गुरुवार को स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और भारतीय कंपनी के बीच लंबी अवधि के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर होंगी। और जहां तक कीमतों के संबंध में, शर्तों पर हर साल फिर से बातचीत की जा सकती हैं और चर्चाएं समय सीमा से 2 महीने पहले शुरू होंगी, और यदि युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय तनाव समाप्त हो जाते हैं तो मॉरिशस बातचीत

0: बातचीत। और M3 रेडियो मनोरंजन।
1: आपके सितारे,

0: के सितारे
1: सोमवार 17 अगस्त रेडियो मनोरंजन पर आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सुमी और आप सबका साथ देने के लिए हम आ चुके हैं लेकर आपके सितारे प्रोग्राम। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोगों का वीकेंड जो है बहुत अच्छे से बीता होगा एंड इट्स मंडे टुडे और उम्मीद करते हैं मंडे का दिन भी अच्छे से बीत रहा होगा और अभी से लेकर शाम के 6 बजे तक हम आपको एंटरटेन करेंगे आपके सितारे इस प्रोग्राम के जरिए। और आज आपके सितारे इस प्रोग्राम में विल बी टॉकिंग किस पर बात करेंगे हम सोच ही रहे थे, तब पता चला कि कल यानी कि 16th of August को बर्थडे था डेविड धवन जी का। डेविड धवन बॉलीवुड के पॉपुलर फिल्म डायरेक्टर है और खासकर जाने जाते हैं कॉमेडी फिल्मों के लिए। सो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे डेविड धवन जी को, कल इनका बर्थडे था। 16th August 1951 को ही वॉज बॉर्न और इन्होंने फिल्मों में काफ़ी नाम कमाया है। यही नहीं बल्कि इनके बच्चे भी फिल्मों में काफ़ी एक्टिव है, इनके बेटे भी काफ़ी फिल्में कर चुके हैं, काफ़ी पॉपुलर है। और आज इनके लाइफ पर बात करेंगे, इनकी बनाई हुई फिल्मों पर बात करेंगे। अभी के लिए चलिए इस गाने के साथ प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं। और आंखें फिल्म का ये तराना है, आंखें फिल्म इनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक रही है। आंखें जो फिल्म है 1993 में आई थी, ऑब्वियसली इस फिल्म में गोविंदा नज़र आए थे, साथ में चंकी पांडे थे, कादर खान थे। गोविंदा और कादर खान जो है हमेशा से ही डेविड धवन के फिल्मों का हिस्सा रहे हैं और ये कॉमेडी फिल्म जो है इसके ज़रिए इनके करियर को एक नई पहचान मिली थी।

0: आपके सितारे।
1: चलिए यू आर कनेक्टेड टू आपके सितारे ऑन रेडियो मनोरंजन एंड आज हम बात कर रहे हैं डेविड धवन जी के बारे में। इनके जीवन की बात करें तो 16th अगस्त 1951 को इनका जन्म हुआ था एक पंजाबी फैमिली में। इनके पिता एक बैंक में मैनेजर थे और वहीं पर इन्होंने अपनी पढ़ाई की, वहीं पर एक्टिंग की भी इन्होंने पढ़ाई की। फिर समय के साथ इन्हें जो है फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इनकी इन्होंने करियर की शुरुआत की थी सारांश इस फिल्म को फिल्म में एज एडिटर के रूप में। सारांश ये जो फिल्म है अपने टाइम की काफ़ी पॉपुलर फिल्मों में से एक, इसमें अनुपम खेर नज़र आए थे। और वहीं पर 90 के सालों में इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की, वहीं पर बैक टू बैक काफ़ी पॉपुलर फिल्में थी। जैसे कि आखिरी फिल्म का गाना आपने अभी सुना, शोला और शबनम फिल्म का ये जो गाना अभी चल रहा था, ये फिल्म भी काफ़ी पॉपुलर थी। और डेविड धवन जी की बात करें तो गोविंदा जी के साथ इनकी जोड़ी जो है ऐसी जमी है कि क्या है? लगभग 18 फिल्में इन्होंने एक साथ की और 18 में से ज़्यादातर फिल्में जो है पॉपुलर रही। और आज दोनों ही एक दूसरे को इस बात का क्रेडिट देते हैं। लेकिन इसके अलावा गोविंदा के अलावा भी इन्होंने काफ़ी अन्य एक्टर्स के साथ काम किया। जैसे कि जो अगला गाना हम चलाने वाले हैं बोल राधा बोल इस फिल्म का है, और इस फिल्म में ऋषि कपूर और जूही चावला नजर आए थे।

0: आपके सितारे।
1: चलिए दिस इज आपके सितारे। डेविड धवन जी के बारे में बात हो रही है, उनके बनाई हुई फिल्मों के बारे में बात हो रही है, और बात करते हैं अब अगली फिल्म की। जी हाँ, साजन चले ससुराल फिल्म जो है ये भी काफ़ी पॉपुलर हुई थी। ये जो फिल्म है इसमें ऑब्वियसली गोविंदा थे, तब्बू थी, करिश्मा कपूर थे, सतीश कौशिक, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था डेविड धवन जी ने। इस फिल्म को लिखा था, खासकर इस फिल्म के डायलॉग्स को लिखा था कादर खान जी। 96 में ये जो फिल्म है ये रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी थी, और फिल्म के गाने बड़े कमाल के थे। डेविड धवन जी की फिल्मों की खासियत यही है कि कॉमिक टाइमिंग तो इनकी कमाल की होती ही है, और साथ ही ये फिल्म म्यूजिकली भी सुपरहिट होती है। और ऑब्वियसली तब्बू की बात करें, गोविंदा जी की बात करें, करिश्मा कपूर जी की बात करें, तो अपने टाइम के पॉपुलर एक्टर एक्ट्रेसेस में से एक रहे, और ये फिल्म बहुत से लोगों को बहुत पसंद भी आई थी।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: आपके सितारे
2: चले प्यार तो डेविड धवन जी से हर कोई करता है और इनके बनाई हुई फिल्मों से भी हर कोई प्यार करता है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो इनकी फिल्मों को पसंद नहीं करता होगा। और अब अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे और अगला जो तराना है मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी इस फिल्म से लिया गया है और इस फिल्म में नज़र आए थे अक्षय कुमार, साथ में थी जूही चावला। इस फिल्म के गाने भी बड़े कमाल के थे और फिल्म भी काफ़ी दिलचस्प थी। और ऐसे ज़्यादातर इनके फिल्मों में कॉमिक टाइमिंग की बात करें तो कादर खान तो मैक्सिमम इनकी फिल्मों में हुआ ही करते हैं और डेविड धवन जी जो है यहाँ पर सिनेमा के मशहूर फिल्म डायरेक्टर तो है, साथ ही एंटरटेनमेंट के लिए भी काफ़ी जाने जाते हैं। 90 के दशक इनके करियर के लिए बहुत ही कमाल का रहा है। फिल्मों में इनकी रुचि काफ़ी पहले से ही थी। फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से इन्होंने पढ़ाई की और शुरुआती दौर में ये एक्टर बनना चाहते थे लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और बन बैठे बॉलीवुड के पॉपुलर डायरेक्टर्स में से एक।
1: RM3 Radio.

0: मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी।
1: You're listening to RM3 Radio, Mana.

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: तो चलिए अभी जुड़वा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, चलती है क्या 9 से 12। और इस अगले गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं आपके सितारे इस प्रोग्राम के सेकंड आवर की ओर। इस समय सरिता जी का ट्रिब्यून से हमारा साथ दे रही है और उन्हें गाने बड़े पसंद आ रहे हैं और गाने को गुनगुनाते गुनगुनाते अपना काम कर रही है और प्रोग्राम का मज़ा उठा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सरिता जी। नॉट टू फॉरगेट, आप हमें मैसेज कर सकते हैं 5250620 पर। आपके सितारे प्रोग्राम चल रहा है ऑन रेडियो मनोरंजन।

0: के सितारे।
1: आप सभी का वेलकम है इन द सेकंड आवर ऑफ आपके सितारे और यहाँ पर मैं सुमी आप सभी का साथ दे रही हूँ हर मंडे की तरह। शाम के 5:05 हो चुके हैं यहाँ पर और हमारा जो प्रोग्राम है 5:50 पर चलेगा। और आज आपके सितारे प्रोग्राम हम डेविड धवन जी के बारे में बात कर रहे हैं। कल इनका जन्मदिन था, सो इनको एक बार फिर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे इनके सभी फैंस की ओर से। ऐसे जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो है इन्होंने एक्टिंग के बारे में सोचकर फिल्मों की ओर रुख किया था, फिर कुछ समय बाद इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि ये एक्टिंग नहीं कर सकते हैं। और वहीं पर जब इन्होंने फिल्में बनाने के बारे में सोचा तो मनमोहन देसाई और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे दिग्गजों को देखकर इन्हें जो है फिल्मों की ओर इनकी रुचि बढ़ी, फिल्में बनाने की ओर, खासकर बंगाली फिल्में कुछ इन्हें काफ़ी प्रभावित की और उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने जो है फिल्म मेकिंग में अपने करियर को आगे बढ़ाया। और जब ये फिल्म मेकिंग में पढ़ाई कर रहे थे तब ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। और सिर्फ गोविंदा जी के साथ ही नहीं बल्कि गोविंदा, संजय दत्त, सलमान खान,

कपूर अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े एक्टर्स के साथ उन्होंने अपने करियर के दौरान फिल्में बनाई हैं और एक्ट्रेसेस की बात करें तो ऑब्वियसली करिश्मा कपूर तब्बू जूही चावला जैसे अपने टाइम के पॉपुलर एक्ट्रेसेस चलिए अभी के लिए हसीना मान जाए फिल्म का ये टाइटल ट्रैक चल पड़ा है और ये फिल्म भी इनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में से रही है

0: के सितारे।
1: चलिए यहाँ पर इस समय बहुत सारे हमारे सुनने वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं से भी आप साथ दे रहे हैं, आप सभी के इस प्यार भरे साथ के लिए शुक्रिया। और यहाँ पर डेविड धवन जी की बात करें तो अपने करियर के दौरान इन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई और अपने बेटे जो है अपने बेटे को भी इन्होंने लॉन्च किया, वरुण धवन को। और वरुण धवन जो है काफ़ी बेहतरीन फिल्में इन्होंने भी दी हैं, मैं तेरा हीरो, कुली नंबर वन, जुड़वा टू जैसी फिल्में। और साथ ही इनके एक और बेटे हैं, वो भी फिल्म डायरेक्टर हैं। और जिस तरह फिल्मों का शौक़ पिता को है, वैसे ही फिल्मों का शौक़ इनके दोनों बेटों को भी है। अभी के लिए जो गाना हम चलाने वाले हैं, दीवाना मस्ताना इस फिल्म का तराना होगा। दीवाना मस्ताना इस फिल्म में गोविंदा नजर आए थे, साथ में अनिल कपूर थे और साथ में थी जूही चावला।

के ऐसी फिल्मों को बहुत प्यार दिया है और अभी के लिए पार्टनर फिल्म का ये तराना हो जाए। पार्टनर ये फिल्म भी अपने आप में काफ़ी कमाल की रही है। पार्टनर इस फिल्म से गोविंदा जी ने काफ़ी समय बाद फिल्मों में कमबैक किया था। पार्टनर इस फिल्म में गोविंदा जी के साथ सलमान खान नज़र आए। इस फिल्म को भी डेविड धवन जी ने ही बनाया था।

0: के सितारे।
1: चलिए आपके सितारे इस प्रोग्राम से आप जुड़े हुए हैं और रेडियो मनोरंजन, और इसी के साथ समय हुआ है हम बड़े बड़े मियां छोटे मियां फिल्म के इस गाने की ओर। डेविड धवन जी ने अमिताभ बच्चन जी के साथ भी काम किया है। जी हां, बड़े मियां छोटे मियां इस फिल्म में अमिताभ बच्चन जी के साथ गोविंदा नज़र आए थे। इस फिल्म के लिए गोविंदा जी को बेस्ट कॉमेडियन का जो है अवार्ड भी मिला था। और इसी फिल्म के इस टाइटल ट्रैक के साथ हमारा ये जो आपके सितारे प्रोग्राम है ये ख़त्म होने को चला। लगभग 2 घंटों का ये जो सफ़र रहा, कब शुरू हुआ कब ख़त्म होने को चला पता ही नहीं चला। डेविड धवन जी का जो फिल्मी सफ़र रहा है बड़ा ही कमाल का रहा है। वो अपने ऑडियंस की नफ्स को पहचानते थे और उस हिसाब से उन्हें वो देते थे जो वो देखना पसंद करते थे। और साथ ही कॉमिक टाइमिंग के साथ साथ फैमिली ड्रामा भी होता था, रोमांस भी होता था, थोड़ा बहुत एक्शन भी होता था। यानी कि टोटली जो बॉलीवुड मसाला कहते हैं ना, इस तरह के फिल्में वो बनाते थे और लोगों ने इनके फिल्मों को बहुत पसंद भी किया, बहुत प्यार भी दिया। तो चलिए इसी के साथ, इस आखिरी गाने के साथ जो है आपके सितारे ये प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। और 5:50 पर आप हमारी धरोहर इस प्रोग्राम को सुन पाएंगे किरण जानकी जी से। उसके बाद एक भोजपुरी गीत होगा और उसके बाद 6 बजे आप सुन पाएंगे पूरा समाचार MBC रेडियो पर। तो आपके प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आपकी मुलाकात दोबारा होगी 6:30 रेडियो मनोरंजन पर ही। तो यूं ही साथ देते रहिए, हमारा शुक्रिया।
0: आपके सितारे।

0: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
1: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। गल सप्ताह देखत है जा कि देश के और दुनिया के जो अलग अलग विरासत धरोहर बा ओकर पर ध्यान दिले आई जा। आज थोड़ा भारत पर नजर डौर आई जा। प्राचीन भारत में कबो ऐसन लोग रहत रलन सा जे लोग शायद बहुत उन्नत रलन सा या फिर बड़ा बड़ा चट्टान के आकार देवे में माहिर रलन जा। जैसे बिहार के जो गुफा बा जहाँ चट्टान के काठ के भीतर एक कमरा बनावा कर रहा है, मानल जला कि वो पत्थर नहीं बल्कि एगो मकान रहल। दूसर बगल महाराष्ट्र के कैलाश मंदिर में दिख पा जहाँ एक ही बड़ा चट्टान के ऊपरे से नीचे खोद खोद के एगो वैभवशाली मंदिर बना देवल गल। ऐसन काम आज के आधुनिक इंसान लोग भी नहीं सकियन जा करे तकनीक और मशीन के बल पर भी। ऐसे ही पत्थर के अपन जमाना में छाप उस जमाना के आदमी लोग भारत में अनेकों जगह पर छोड़ ले हवन सा।

और भारत के उत्तर पूर्वी राज्य के ओर देश के बाकी हिस्सा के लोग जस्ती ध्यान नई दिल्ली हवन जा, जैसे कि त्रिपुरा राज्य, जहाँ पर पत्थर से बनल पहाड़ी पर 1 करोड़ में एगो कमती देवी देवता के मूर्ति बनावल कर रहा है। एकर नाम है ऊना कोटी। ऊना कोटी दिखबता जैसे बोली कि 1 करोड़ में एगो कमती है। और यहाँ पर पहाड़ी इलाका में दूर दूर तक घना जंगल और दलदली इलाका से भरल एगो इलाका है, जहाँ आस पड़ोस में कोनो बस्ती नहीं बा। तो एक साथ इतना मूर्ति के निर्माण आखिर इतना प्राचीन काल में कैसे होल? ऊना कोटी के जो नज़ारा बा, यहाँ के जो रॉक आर्ट के बारे में अभी चर्चा करत है, एक सकबा आप यूट्यूब में देखे और देखबा कि ये कितना विचित्र बा। ऊना कोटी कितने बरिस तक अनजान रहल, गुमनाम रहल, अभी भी बहुत कोई एकर नाम नहीं जाने लन सा, नहीं सुनने हवन सा। जंगल में 1 करोड़ मूर्ति मिलना से ऊना कोटी भारत के सबसे रहस्यमय जगह में ई अब गिनल जाए लगल बा। काजने के ई जंगल के बीच अपन कला के प्रदर्शन कर ले रहल। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक ही रात में ये सब मूर्ति के निर्माण करल गया है। और बोलल जाला कि कालुकुमा उस शिल्पकार के नाम रहल। ई मान्यता के अनुसार कल्लू भगवान शिव और माँ पार्वती संगे कैलाश पर्वत पर भ्रमण करत रहल, लेकिन ई मुमकिन नहीं रहल। शिल्पकार के सामने शर्त रखा गल कि अगर एक रात में वो 1 कोटी मूर्ति बना दे तो उसके शिव और पार्वती के संगे कैलाश पर्वत पर जाए और रात भर वो मूर्ति बनेलक। लेकिन 1 करोड़ में एगो मूर्ति कमती रहल और ई वजह से वो नहीं सकल शिव और पार्वती के संगे कैलाश पर्वत पर जाए और वो पृथ्वी के यही भाग में रह गल। यही खातिर इस जगह के नाम ऊना कोटी पड़ल। लेकिन सवाल बा कि कैसे एक रात में 1 करोड़ के मूर्ति सकल जाए बनावे और कोनो यंत्र के बिना? यंत्र उस समय में कब और कहाँ सकत मिले? ये भी बोलल जाला कि 7वीं सदी में ये मूर्ति के निर्माण करल गल रहल। समय समय पर यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल खोज होवेला, लेकिन ये जंगल में ये 1 करोड़ रॉक आर्ट के कर ले बा, ये आज भी एगो रहस्य बा। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद। नमस्ते, कल फिर मिलब जा।

नमस्कार, सोमवार 17 अगस्त 2026 के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। डर्बन में आयोजित 46वें सादिक शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के नेता खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसी साझा चुनौतियों पर चर्चा करने और एक मजबूत सादिक के निर्माण के लिए एकत्र हुए, जिसमें प्रधानमंत्री डॉ नवीन रामगुलाम भी शामिल हुए। आज से स्कूलों में नया नियम लागू, जिसके तहत प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के छात्र अब स्कूल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हालांकि फोन अपने पास रखे जा सकते हैं, बशर्ते वे बंद और बैग में हो। नियमों का उल्लंघन करने पर 5 दिन तक के स्कूल निलंबन जैसी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पोटरी की बेल एंड रिमांड कोर्ट में 10 महीने से हिरासत में बंद मलागासी व्यवसायी मामी हावा तुमांग की सशर्त जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। उस पर फ्रांस को लीची निर्यात में 90 मिलियन यूरो से अधिक का लाभ कमाने और ईरान के बोइंग 777 विमान बेचने के मामले में $5 मिलियन की रिश्वत लेने का आरोप है। GEF स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम ने मॉरिशस और रोड्रिक्स में सतत विकास पर केंद्रित 7 संगठनों के लिए 22 मिलियन रुपए जारी किए हैं, जिसमें आसिम की कीटनाशक ट्रेसेबिलिटी और वी रिसाइकल की प्लास्टिक रिसाइकलिंग की नई पहलें शामिल हैं। नागपंचमी का पावन पर्व आज मनाया

0: मनाया जा रहा है। ये पर्व नाग देवता की पूजा, भगवान शिव की आराधना, प्रकृति के प्रति सम्मान और परिवार की सुख समृद्धि से जुड़ा हुआ है। आज से ही मराठी समुदाय के लोग गणेश चतुर्थी पर्व के लिए व्रत रखना शुरू कर रहे हैं। सादिक के सदस्य देशों के 16 नेता 46वें राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के आधिकारिक उद्घाटन के लिए इस सोमवार को डर्बन में एकत्र हुए। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन रामगुलाम भी इस बड़े इलाकाई सम्मेलन में अपने समकक्षों के साथ उपस्थित रहे ताकि खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और आर्थिक विकास जैसी साझा चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग को आगे बढ़ाया जा सके। इसका उद्देश्य एक और अधिक मजबूत सादिक का निर्माण करना है। अब्दुल बुला की करुणा लालू।
1: डर्बन में सादिक की 16 सदस्य देशों के नेता सोमवार सुबह 46वीं सरकारी व राष्ट्र नेताओं के शिखर सम्मेलन के आधिकारिक उद्घाटन के लिए एकत्र हुए। इनमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम भी शामिल रहे, जिनका स्वागत दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने डर्बन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में किया। सादिक की अध्यक्षता संभाल रहे दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय समुदाय के भविष्य पर केंद्रित इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित होने के लिए सभी राष्ट्र नेताओं का आभार व्यक्त किया। औपचारिक समारोह के दौरान मॉरिशस के प्रधानमंत्री की उपस्थिति का भी विशेष उल्लेख किया गया।
2: फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस वी वेलकम Honorable Dr. Navin Chandra Ramgoolam, Prime Minister.
1: लचीले, टिकाऊ और समावेशी औद्योगिकरण के तहत आयोजित इस 46वें शिखर सम्मेलन में बुनियादी ढांचे के विकास तथा कृषि और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में बदलाव पर विशेष जोर दिया जा रहा है। उद्देश्य क्षेत्रीय एकीकरण को और मजबूत करना है।
2: Turn our borders into bridges, and we must turn our resources into industries, and we must turn our youthful population into a powerful democratic dividend that will benefit all the peoples of Southern Africa. And we must turn this solidarity that has been so strong over the years into a shared purpose. Prosperity. And this summit must therefore inspire a new era of regional integration that delivers dignity, opportunity, and the hope of every citizen of Southern Africa.
1: इससे पहले सादिक के कार्यकारी सचिव एलियास एमपीडी मागुजी ने आज के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सादिक की रणनीतिक भूमिका पर जोर दिया, खासकर एक ऐसे समय जब दुनिया अनेक चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना कर रही है।
3: Our ambition must be to move beyond the export of raw materials and position Sadiq as a globally competitive center. For beneficiation, value addition, manufacturing, innovation, and indeed the industrialization we are pursuing.
1: उद्घाटन समारोह में अफ्रीकी संघ आयोग के अध्यक्ष महमूद अली यूसुफ तथा सादिक के पदमुक्त अध्यक्ष जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनंगागुआ के संदेश भी शामिल थे, जिन्होंने क्षेत्र में अधिक एकता और एकजुटता का आह्वान किया। उद्घाटन समारोह का समापन जिम्बाब्वे से दक्षिण अफ्रीका को सादिक की अध्यक्षता के आधिकारिक हस्तांतरण के साथ हुआ। शिखर सम्मेलन के निष्कर्षों और अंतिम घोषणा की प्रतीक्षा के बीच नेताओं ने कई क्षेत्रों में प्रगति करने की अपनी इच्छा जताई। आर्थिक एवं औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचा, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, शांति और स्थिरता, जलवायु परिवर्तन के प्रति मजबूती तथा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दक्षिणी अफ्रीका की आवाज़ को और मजबूत करना।
0: प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने रविवार शाम डर्बन में 46वें सादिक शिखर सम्मेलन में उपस्थित राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के साथ साथ प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों और विशेष अतिथियों के सम्मान में दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा द्वारा आयोजित स्वागत रात्रि भोज में भाग लिया। डर्बन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शाम को

0: पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने अपनी पत्नी वीना राम गुलाम के साथ हॉल में प्रवेश किया और फिर इलाके के अन्य नेताओं के साथ अपने स्थान पर बैठे। इस बैठक के औपचारिक स्वरूप से परे इस शाम ने सादिक के सदस्य देशों के बीच सहयोग, एकजुटता और एकता के संदेश को रेखांकित किया। ये एक ऐसी गतिशीलता है जिसके तहत इलाके के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे कि खाद्य, समुद्री और ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और व्यापार तथा व्यापार को बढ़ावा देना के लिए साझा प्रतिक्रियाएं दी जानी हैं। आज से छात्रों ने तीसरी तिमाही के लिए स्कूल का रास्ता पकड़ा और छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव हुआ है। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक वे अब अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हालांकि नए नियमों में इसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन वे छात्रों को इन्हें अपने पास रखने से नहीं रोकते हैं, बशर्ते वे बंद हों और बस्ती में रखे हुए हों। इन नियमों का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 5 दिन तक का स्कूल से निलंबन यानी सस्पेंशन भी शामिल है। कल यानी मंगलवार को अमेरिका के सोशल मीडिया इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण मुकदमों में से एक की शुरुआत होने जा रही है। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा को कैलिफोर्निया की अदालत में उन आरोपों का जवाब देना होगा जिनमें कहा गया है कि समूह ने जानबूझकर अपने प्लेटफॉर्म को युवाओं के लिए लत लगाने वाला बनाया है।
1: लगातार स्क्रॉलिंग, आने वाली नोटिफिकेशन और वीडियो का ऑटोप्ले, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ये सुविधाएं अब आम हो चुकी हैं। लेकिन आज ये बड़ी कानूनी बहस के केंद्र में हैं। मामले की सुनवाई ओकलैंड में हो रही है और इसके करीब 7 सप्ताह तक चलने की उम्मीद है। 4 अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यूजर्सी ने आरोप लगाया कि मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म इस तरह डिज़ाइन किए हैं ताकि युवा यूज़र उनसे लगातार जुड़े रहें और उनकी सुरक्षा को लेकर उन्हें गुमराह किया गया है। कुल 29 राज्य इस सामूहिक कानूनी कार्रवाई में शामिल हैं। राज्य सरकारें सैद्धांतिक रूप से $1.4 trillion तक के हर जाने की मांग कर रही हैं। साथ ही वे फेसबुक और इंस्टाग्राम के काम करने के तरीके में बदलाव की भी मांग कर रहे हैं। मेटा के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग और इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोसेरी के अदालत में गवाही देने की उम्मीद है। दूसरी ओर मेटा ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि उसने हाल के वर्षों में नाबालिगों की सुरक्षा के लिए अपने उपायों को मजबूत किया है। ये मुकदमा इसको लेकर एक अहम मिसाल कायम कर सकता है कि युवा उपयोगकर्ताओं पर अपने उत्पादों के प्रभाव के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
0: मॉरिशस को सितंबर के अंत तक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला ईंधन मिलना शुरू हो जाएगा। पेट्रोलियम और गैस क्षेत्र में मॉरिशस और भारत के बीच सहयोग के तहत एसटीसी और भारतीय कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते पर इस गुरुवार को हस्ताक्षर किए जाने हैं। व्यापार मंत्री माइकल सिक्वेन ने बताया कि आने वाले वर्षों के लिए देश की आपूर्ति सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। उनको सुनते हैं।
2: मंत्री माइकल सिक्वेन ने कहा, गुरुवार को इस पर हस्ताक्षर किए गए और इंडियन ऑयल मॉरिशस सरकार को पदार्थ सप्लाई कर पाएगी। सितंबर महीने के अंत में इसकी शुरुआत होगी। कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए, ये 5 वर्षों का कॉन्ट्रैक्ट है। 2006 में जिस तरह इस पर दस्तखत किए गए थे, उस वक्त भारतीय सरकार के साथ एक अन्य G2G था। उस समय मंगलो था, भारतीय सरकार ही कंपनी चुनती है। दाम के लिए कॉन्ट्रैक्ट 12 महीनों का है, लेकिन 2 महीने पहले ही समझौता बातचीत शुरू की जा सकती है। कह सकते हैं कि इस पर गौर करना है। समझौता बातचीत के लिए 2 पहलू हैं। उदाहरण के लिए व्याप्त लड़ाई 30 दिन है तो कह सकते हैं कि एक नोटिस दे सकते हैं ये कहते हुए कि लड़ाई थम गई है तो समझौता बातचीत कर सकते हैं। भारतीय सरकार के साथ तय कॉन्ट्रैक्ट से क्या मॉरिशनों के लिए कोई बदलाव होगा? इस प्रश्न के जवाब में मंत्री माइकल सिक्वेन ने बताया कि सबसे अहम बात है सप्लाई सुरक्षित रहनी चाहिए। अगर लड़ाई के दौरान जहाज के रवाना होने में कठिनाई हो रही है, ऐसे में लड़ाई खत्म होने पर सुनिश्चित करेंगे कि दाम बेहतर हो।
0: और जैसे कि पहले हम आपको बता रहे थे कि आज से छात्रों ने तीसरी तिमाही के लिए स्कूल का रास्ता पकड़ा और छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव हुआ है। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक स्तर तक वे अब अपने मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर पाएंगे। चलिए जानते हैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी सिलवाना पाहे मामन की इस रिपोर्ट में। विवरण रजनी।

0: स्पीकर का है।
1: इनका आगमन सभी घरों में हुआ, लेकिन स्कूल में अब इसके इस्तेमाल पर पाबंदी है। स्कूल में इस सेमेस्टर की शुरुआत में स्कूली पढ़ाई के दौरान मोबाइल के प्रयोग पर पाबंदी लगाई गई है। इस डिजिटल पोज का कई तरह से मतलब निकाला जा सकता है।
2: Les quartiers, une photo, moi je suis camarade ce livre et que les suivent depuis là-dedans. Tout le temps, moi je peux servir ça pour ma révision, ma délavée, t'as du petit peu de maman neutre. D'ailleurs, mon gars, bon résultat, forme 5 existe à cause potable. Pour adapter mon brodin de l'autre façon, et que la case, mon cas, servir mon potable.
3: Comment me vient l'école, mon potable de me l'amener, écoute la musique et tout.
4: Bon, pour moi, pour de la part, moi, pas autant. Quand mon amour, mon camarade de l'école, et mon un peu activité que m'ont fait de l'école, comme mon jeu volleyball, mon jeu football.
5: Vu que nous pouvons vivre dans le monde digital, moi, mon budget pour le son, tout ça, beaucoup de professeurs, they tend to share the information, the homework that we get online.
1: Head girl Dhyana ne interview ke samay ise le liya tha. मोबाइल फोन को उसके मालिक को लौटाया गया और उसे वापस बैग में रखा गया और ये यही रहेगा कुछ समय के लिए। स्कूल के समय मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, इस मनाही की बदौलत अध्यापकों को थोड़ा सा समर्थन मिल पाएगा जिन्हें ऐसी स्थितियों में सामना करना पड़ रहा था जब छात्रों और बच्चों का ध्यान बढ़ रहा था।
6: Avant quand il n'avait pas de portable, nous avions l'élève pour nous. Avec le portable, c'est tout le monde extérieur qui rentre dans la classe. Quand on a l'élève en classe, on veut que l'élève soit là avec nous, avec toute son attention braquée sur les cours qu'on fait.
1: ये मनाही अब से सभी छात्रों के लिए नियम है, बशर्ते कि अध्यापक की मंजूरी मिले। या तो मोबाइल फोन का प्रयोग पढ़ाई के लिए किया जा रहा हो या फिर चिकित्सा कारणों को लेकर। इन नियमों का पालन न करने पर सजा का भी प्रावधान है।
7: L'élève utilise donc le mobile device pour la première fois. Donc il y a un avertissement verbal qui est donné à l'élève. Une deuxième fois, le portable est retenu à l'école. Les parents sont informés en écrit. L'élève reçoit un avertissement en écrit aussi. Et le mobile device est retourné aux parents. Si l'élève utilise le mobile device pour la troisième fois, l'élève n'est plus autorisé à porter son mobile device pour le reste du trimestre. Et quatrième fois, on garde les mêmes étapes. Ce qui change ici, c'est que l'élève va subir une suspension temporaire de 5 jours consécutifs.
1: ये तीसरा सेमेस्टर स्कूली वर्ष का सबसे छोटा सेमेस्टर है, लेकिन सबसे अहम भी। सालांत की परीक्षाओं की भी अवधि है। अध्यापकों को उम्मीद है कि मोबाइल फोन को थोड़ा अलग रखने पर बच्चों के नतीजों में सुधार आने में मदद मिलेगी। मॉरिशस के कॉलेजों में 87,000 से अधिक छात्र हैं और प्राथमिक स्कूलों में कोई 82,000 बच्चे।
8: फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन और मामी खावातुमांग के बचाव पक्ष के बीच कानूनी लड़ाई एक नया चरण पार कर रही है। पोटली स्थित बेल एंड रिमांड कोर्ट में आज सुबह बचाव पक्ष की उस याचिका पर सुनवाई शुरू हुई जिसमें 10 महीने से अधिक समय से हिरासत में बंद मालागासी व्यवसायी की सशर्त जमानत की मांग की गई है। एक ऐसी सुनवाई जिसकी शुरुआत फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के एक्टिंग चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन से पूछताछ के साथ हुई। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामी खावातुमांग पर आरोप है कि उसने मुख्य रूप से अपने पद का दुरुपयोग करके फ्रांस को मडागास्कर की लीची के निर्यात के तहत 90 मिलियन यूरो से अधिक का लाभ उठाया। ये भी आरोप है कि उसने मडागास्कर से ईरान को 5 बोइंग 777 विमानों की बिक्री के सिलसिले में रिश्वत के रूप में $5 मिलियन प्राप्त किए थे। काविंता पिसा, करुणा लालू।
9: मामी खावातुमांग, जिन्हें 24 अक्टूबर 2025 से हिरासत में रखा गया है, ने अपनी रक्षा टीम की जमानत संबंधी याचिका पर सुनवाई मेलगोज स्थित हाई सिक्योरिटी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देखी। 56 वर्षीय मलागासी कारोबारी का प्रतिनिधित्व वकील कुशल लुबिन कर रहे हैं। फ्रांसीसी वकील एक्टो बेनोदिनी भी बचाव पक्ष की सहायता के लिए अदालत में मौजूद रहे। मामी खावातुमांग की बेटी और उनके दामाद ने भी अदालत की कार्यवाही में हिस्सा लिया। मजिस्ट्रेट फारूक नातिया के

0: समक्ष एफसीसी के एक्टिंग चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन परमहंस आलिया ने एफसीसी की ओर से पेश वकील त्रिशूल नागा के सवालों के जवाब दिए। परमहंस आलिया के अनुसार एफसीसी की जांच जटिल है, आरोपी पर कई कथित अपराधों का संदेह है जिनमें पद का दुरुपयोग, हितों का टकराव, भ्रष्टाचार, प्रभाव का दुरुपयोग, धन की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग सहित अन्य आरोप शामिल हैं। एफसीसी की जांच के कई पहलू हैं, इनमें मडागास्कर से ईरान को 5 बोइंग 777 विमानों की बिक्री, लीची का निर्यात, गेहूं का आयात, अंटनानारिवो में एक राजमार्ग का निर्माण और माराहाई परियोजना शामिल हैं। बोइंग विमानों की बिक्री वाले मामले में जिसमें मामी हवातुमांग पर भ्रष्टाचार का शक है, एफसीसी को अमेरिकी एफबीआई का सहयोग मिल रहा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामी हवातुमांग को कथित तौर पर 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत मिली थी ताकि वो राजनीतिक अधिकारियों पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इस बिक्री को अंतिम रूप दिलाने में मदद कर सके। जाँच का एक अन्य पहलू लीची निर्यात क्षेत्र में संभावित कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से जुड़ा है। अदालत में पेश किए गए दस्तावेजों के अनुसार सुजात समूह के सीईओ और अंतरिम लाभार्थी मामी हवातुमांग ने कथित तौर पर मॉरिशस में पंजीकृत एक कंपनी के माध्यम से 2017 से 2025 के बीच मडागास्कर से फ्रांस को लीची के निर्यात के सिलसिले में 92 मिलियन यूरो का लाभ प्राप्त किया। जमानत पर रिहाई की याचिका पर सुनवाई का दूसरा दिन कल निर्धारित है। वकील कुशल लोबिन द्वारा एफसीसी के एक्टिंग चीफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन से जांच के विभिन्न पहलुओं पर जिरह यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन किए जाने की उम्मीद है।
1: जीएफ स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम ने मॉरिशस और रोड्रिग्स में 7 संगठनों का समर्थन करने के लिए 22 मिलियन रुपए जारी किए हैं। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से सतत विकास पर केंद्रित हैं, नई पहलों में कीटनाशकों की पता लगाने की क्षमता पर असीम की एक पहल और प्लास्टिक के बर्तनों के रिसाइकलिंग के लिए एनजीओ वी रिसाइकल की पहल शामिल है। मीगान पुनापनायकन की रिपोर्ट पेश है।
0: इस विशेष रूप से तैयार किए गए कंटेनर में रखे गए प्लास्टिक के डिब्बों को नया जीवन देने का प्रयास किया जा रहा है। खुद मरम्मत और फिर उपयोग किए गए उपकरणों की मदद से रिसाइकलिंग की पूरी प्रक्रिया विकसित की गई है। ये पहल वे रिसाइकल एनजीओ की है। स्टेफानी जाके कहती हैं, कुछ किस्म की पैकेजिंग के साथ शुरुआत की थी, तब मॉरिशस में रिसाइकल करने वाले कोई भी इन्हें नहीं ले रहे थे। हमने एक हल ढूंढा, ये उद्योग कायम किया। कई चरणों में इन प्लास्टिक का शोधन करते हुए इनसे वस्तुओं का निर्माण किया, टेबल आदि। वे रिसाइकल की तरह 6 अन्य संगठनों को भी जेफ स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम से वित्तीय सहायता मिली है। इन सभी पहलों के केंद्र में सतत विकास है।
2: Notre projet c'est d'étudier le dynamisme de la population
0: de कहते हैं, हमारी परियोजना इन जानवरों की आबादी पर अध्ययन करना है, इनकी संख्या, इनके विकास पर जानकारी प्राप्त करना और कशालों की सेहत का भी पता लगाना। एहसान डल्लू ने कहा, हमारी परियोजना रोड्रिग्स में एक नेचुरल रिजर्व से संबंधित है। करीब 15 हेक्टेयर देशज जंगल का संरक्षण किया जा रहा है जहां 30,000 पौधे पैदा किए जाएंगे। वहीं मॉरिशस उपभोक्ता संघ आसिम ने कीटनाशकों की ट्रेसिबिलिटी से संबंधित एक परियोजना शुरू की है। जे अंचलम ने कहा, सब्जियों पर स्वतंत्र जांच की जाएगी, बाजार में भी कीटनाशक दवाओं की मात्रा की जांच करेंगे। इस नए चरण के लिए 22 मिलियन रुपए की राशि जारी की गई है। उन संगठनों के लिए है जो सामुदायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: Best part of the whole story is that these projects are scalable.
0: आका भाटिया ने कहा, ये परियोजना विकासशील है, छोटे स्तर पर सीमित नहीं, विस्तार की संभावनाएं हैं, टिकाऊ आधार पर निर्माण होता है। 30 वर्षों में जेफ स्मॉल ग्रांट्स प्रोग्राम मॉरिशस में अब तक 200 परियोजनाओं को वित्त पोषित कर चुका है।
1: गणेश चतुर्थी के त्यौहार के अवसर पर कल और आज पूरी द्वीप में नागपंचमी की पूजा आयोजित की गई। ये पूजा मराठी समुदाय

0: के लिए उपवास की शुरुआत का प्रतीक है। हमारी टीमें रगजी परिवार और बुआशेरी मराठी मंडली में मौजूद थीं, जहां इस त्यौहार को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। सुमेरा अकबर अली, प्रियंका हरी।
1: राम वर्धनम देवम शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायति सर्व विघ्नो प्रशान्तये।
2: आनंद पिछले 26 सालों से अपने यहाँ गणेश उत्सव का आयोजन करते हैं, इसलिए आज उन्होंने नाग पंचमी की पूजा की। वे इस साल भी अपने यहाँ गणपति बप्पा का स्वागत करेंगे। एक महीने में गणपति पधारेंगे, उन्हें इसी स्थान पर आने का निमंत्रण दे रहे हैं। हमें बहुत खुशी है, इसलिए हर साल ये पर्व मनाते हैं। नाग देवता की पूजा करने से सुरक्षा की कामना की जाती है। पूरा दिन प्रार्थना करने के बाद इस मूर्ति का विसर्जन किया गया और लंबोदर भगवान का स्वागत करने की तैयारी शुरू हो गई। दिन भर प्रार्थनाएं की जाती हैं, शिवलिंग और नाग देवता का अभिषेक करते हैं और शाम को नाग देव की मूर्ति का विसर्जन करेंगे।
3: नाग पंचमी इसलिए किया जाता है कि परिवार में खुशी समृद्धि ये सब लाते हैं। नाग पंचमी की तिथि शुरू हुआ रविवार को फ्री को और ख़त्म सोमवार को फ्री 29 को। ऐसे माना जाता है कि उस दिन पर हम गणेश चतुर्थी के लिए व्रत शुरू करते हैं और यहीं पर हम गणपति बापा को निमंत्रण भी देते हैं कि आप हमारे घर पर आइए।
1: ओम बृहस्पति नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि।
2: आज से 40 दिनों तक व्रत धारण किए जाएंगे और विशेष प्रार्थनाएं की जाएंगी। आज से रोज प्रार्थना करेंगे, 40 दिनों के दौरान व्रत रखेंगे।
4: Là, la prière peut commencer de aujourd'hui. Nous pouvons faire la prière 40 jours. Nous pouvons comme nous bapa, Ganpati. À partir d'aujourd'hui, préparation peut commencer.
2: आज से तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आरती, भजन, कीर्तन और झाकरी के लिए रोज रियाज करेंगे।
4: Puis beaucoup préparation l'aubaine, kirtan, bhajan.
2: बुआशेरी में भी राष्ट्रीय स्तर पर नाग पंचमी की पूजा की गई। मंत्रों का उच्चारण करते हुए हाथ जोड़ते हुए नाग देव के आशीर्वाद की कामना की गई।
5: Nous célébrons le Nag Panchami dans le mois de Shravan, le cinquième jour de la lune Shukla Paksh, ça veut dire la lune.
2: Shukla Paksh ki panchami tithi ko Nag Panchami hai. Is din se vrat dharan karne lagte hain aur Bhadrapad ki chaturthi ko Ganesh chaturthi manayenge.
5: Tum dans le mois de Bhadrapad chaturthi.
6: Nous avons l'occasion de faire Nag Panchami qui symbolise.
2: हमें बहुत गर्व है कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर हमारे मंदिर में नाग पंचमी मनाने का अवसर मिला। गणेश चतुर्थी पर्व के उपलक्ष्य में 14 सितंबर को गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी और 15 सितंबर को विसर्जन विधि की जाएगी।

और अब अंत में चले जाते हैं स्थानीय मौसम का हाल। एक जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर नम और अस्थिर हवा की लहर बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जा रहा है कि आज रात बादल छाए रहेंगे और पूर्व दक्षिण तथा सेंट्रल प्रांतों पर वर्षा होगी। कभी कभी ऊंचे इलाकों पर सामान्य से जोरदार वर्षा हो सकती है। कुछ इलाकों में कोहरा छाया रहेगा। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्रांतों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल देश भर में बारिश होती रहेगी, ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। अधिकतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 21 से 24, अन्य इलाकों पर 26 से 28 डिग्री सेल्सियस। हवा पूर्व की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। फिर भी कल समुद्र की स्थिति में सुधार आएगा। कल सुबह 6:30 बजे सूरज उगेगा और शाम 5:57 पर सूरज ढल जाएगा।

0: चार समाप्त हुए। हम लुडोविक को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं। इस समय शाम के 6:27 हुए हैं। थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड न्यू वेमिल ट्रियोले में 65 साल के 65 ईयर्स ओल्ड के जनाब बाई निज़ाम सुकुमिया इंतकाल कर गए हैं। उनका जनाजा आज रात 9 बजे उनके घर रॉयल रोड न्यू वेमिल ट्रियोले से उठाकर प्लेंडी पपाई का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 9 PM। SSO रोड ईलो कॉन्जियाबल में 66 साल की 66 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धनवंती बुलक पैदाइशी नाम पुनीत और जो बंधु नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके पति श्री राधा किशन बुलक के घर SSO रोड ईलो कॉन्जियाबल से उठाकर कॉन्जियाबल की शमशान भूमि दी जाएगी। कमीशन टुमारो एट 10 AM। सीवेन चिनियन रोड गुडलैंड्स में 76 साल के 76 ईयर्स ओल्ड के श्री मदिमुतु चिनियन जो मुगेश चिनियन नाम से भी जाने जाते थे और जो पहले गायक थे की मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे विलेन चिनियन के घर सीवेन चिनियन रोड गुडलैंड्स से उठाकर बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। स्वामी शिवानंदा एवेन्यू फ्लोरियाल में 69 साल की 69 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कमलावती राधा लक्ष्मी रचिया पैदाइशी नाम भी सिसर और जो अनीता नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके पति श्री शिवन रचिया के घर स्वामी शिवानंदा एवेन्यू फ्लोरियाल से उठाकर अली ब्रियों की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। रेलवे रोड हाईलैंड्स में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री धनीलाल सुलिक जो सूर्यदेव नाम से भी जाने जाते थे और जो पहले क्यूपिप नगर पालिका में पुराने कर्मचारी थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनकी पत्नी श्रीमती बसंती सुलिक के घर रेलवे रोड हाईलैंड्स से उठाकर बिगाहा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। नंबर 11 सिटी से आशा दीपिने में 25 साल के 25 ईयर्स ओल्ड के श्री केसावन वीरेन जो केसावन नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके पिता श्री वीरेन कृष्णा के घर नंबर 11 सिटी से आशा दीपिने से उठाकर गौन होजाली की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। रॉम्ब्रॉन स्ट्रीट विलनोमीबर्ग में 37 साल के 37 ईयर्स ओल्ड के श्री कमलेश आदिन गादू जो मोगाम्बो नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी कल दिन के 2 बजे उनकी मां श्रीमती लक्ष्मी आदिन गादू के घर रेम्ब्रंट स्ट्रीट विलनोमीबर्ग से उठाकर तोंबोमीबर्ग की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। शिवाला रोड मर्द ऑस्ट्रेलिया में 46 साल की 46 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती शास्त्री कावलेसर पैदाइशी नाम बिगन और जो वीना नाम से भी जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके घर शिवाला रोड मर्द ऑस्ट्रेलिया से उठाकर वहीं की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। मंडप लेन मिडलैंड्स में 63 साल के 63 ईयर्स ओल्ड के श्री राज नोयन जो बुबनो नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। उनके अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर मंडप लेन मिडलैंड्स से उठाकर मिडलैंड्स की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। मोरा पिची त्रिविया में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के श्री सिपासाद सिंह मंगला जो अजीत नाम से भी जाने जाते थे की मृत्यु हो गई हैं। वे भी 24 बंगाली स्ट्रीट लातू के निक पॉइंट साबल रहते थे। उनके अर्थी कल सुपहर 3 बजे मोरा पिची त्रिविया से उठाकर सिपाही भूले वाले दिप्रैत की शमशान भूमि दी जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 3 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी संवेदना है।
1: ₹819 kHz ये है रेडियो मॉरिश। सेंटर 95.5, नॉर्थ साउथ 95.6, ईस्ट वेस्ट 98.2।
2: यू आर लिसनिंग योर RM3 मनोरंजन रेडियो। मनोरंजन रेडियो।
3: Your kind of music.

0: करते हैं आप सभी के इस प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी से लेकर 7 बजे तक नई सोच इस प्रोग्राम को आप सुन पाएंगे और 7 से 9 बजे के बीच आप सुन पाएंगे दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम को। नई सोच इस प्रोग्राम में आपको तो पता ही है कुछ फिलोसफिकल कुछ लाइफ से जुड़े गाने हम आपके लिए चलाते हैं। तो ऐसे में आज का ये जो पहला गाना है भूतनाथ फिल्म से लिया गया समय का पहिया। यकीनन टाइम की बात करें समय की बात करें तो समय अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारी लाइफ के लिए और समय को बिना वजह कमी हमें गंवाना नहीं चाहिए क्योंकि लाइफ टाइम की बात करें तो टाइम बहुत ही प्रेशियस होता है।
1: You're listening to RM3 Radio।

काम क्रोध और लोभ मैं दज कर जा सकता हूँ, तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे भुला सकता हूँ। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: चलिए नई सोचिए सेगमेंट चल रहा है रेडियो मनोरंजन पर और वक्त की कद्र करेंगे तो वक्त भी हमारी कद्र करेगा क्योंकि एक बार समय जब हाथ से निकल जाता है तो सिर्फ हम अफसोस करते रह जाते हैं। अभी के लिए चलिए यहाँ पर मशाल फिल्म का ये खूबसूरत गाना चल पड़ा है किशोरदा और साथियों की आवाज़ों में।

चलिए हम भी आपका साथ यूं ही देते रहेंगे, जब भी मौका मिलेगा यहाँ पर आकर आप सभी को एंटरटेन करने का हम आते रहेंगे, आपका साथ यूं ही देते रहेंगे। और हमें पता है कि उस ओर से बड़े ही प्यार से आप सभी लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे सभी प्रोग्रामों को पसंद करते हैं, हमारे गानों को इंजॉय करते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच। और इस आखिरी गाने के साथ नई सोच ये सेगमेंट ख़त्म होने को चला। मेरी जंग फिल्म का जो ट्रैक है, आप सभी लवली लिसनर्स के नाम हम करते हैं, और इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम की ओर। तो तैयार हो जाइए, डेडिकेशंस का ये जो सिलसिला है दिलों की आवाज़ इस प्रोग्राम से शुरू होगा। तो आप हमारा साथ देते रहिए यूं ही रात के 9 बजे तक।

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: चलिए एक बार फिर से आप सभी का दिल से वेलकम हम करते हैं ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन। दिस इज योर दिलों की आवाज़ और हर मंडे की तरह मैं हूँ सुमी, आप सबका साथ हम दे रहे हैं और रात के 9 बजे तक जो है हम आपका साथ देने वाले हैं। सो उम्मीद करते हैं कि आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और पूरा दिन बहुत अच्छे से बीता ही होगा और अभी से लेकर रात के 9 बजे तक खूबसूरत गानों के ज़रिए ये जो पल है, ये जो 2 घंटों का सफ़र है, इसे हम यादगार बनाएंगे। और जहां कहीं से भी साथ दे रहे हैं आप सभी के प्यार भरे साथ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी अभी प्रोग्राम शुरू हुआ है और आपके डेडिकेशंस के जो बरसात है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 4028070 है नंबर हमारा और साथ ही ढेर सारे मैसेजेस हमें ऑलरेडी मिल रहे हैं ऑन 5250620 पर। तो चलिए ऐसे ही आपका प्यार भरा साथ हमें यूं ही मिलता रहे और खूबसूरत गाने तराने यहाँ पर रात के 9 बजे तक चलने वाले हैं। आप बताइए कि किस गाने में किसका नाम आप जोड़ना चाहते हैं।

0: दिलों की आवाज़।
1: चले सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, यहाँ पर हम भी आपके साथ रहते हैं। जब भी मौका मिलता है आ जाते हैं आपका साथ हम देने के लिए, और इस समय आप हमारे साथ जुड़े हैं, कनेक्टेड है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आज मंडे है और सावन का महीना है, और सावन के महीने में सोमवार का अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। बहुत से लोग पूजा प्रार्थनाएँ करते हैं, तो भगवान शिव जो है आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ऐसी कामना हम करते हैं, ऐसे विश हम करते हैं। और इस समय आकाश जी ग्रौबासा की ओर जा रहे हैं श्रावण मास के अंतर्गत पूजा करने के लिए, और उन्होंने कहा कि एक गाना हो जाए घूंघट फिल्म से, तू ही मेरा शिवा, सभी शिव भक्तों के लिए और सभी रामदानी परिवार के लिए जो ग्लेन पार्क से है, और यहाँ पर जितने भी लोग पूजा प्रार्थनाएं करने जा रहे हैं, भगवान शिव का आशीर्वाद आप सब

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: चलिए आपकी जो दिल की आवाज़ें हैं वो हम तक पहुंच रही हैं आपके डेडिकेशंस के ज़रिए, आपके मैसेजेस के ज़रिए, आपकी फरमाइशों के ज़रिए, और आप हमारे साथ इतने प्यार से कनेक्टेड है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। देखते ही देखते यहाँ पर 7:25 ऑलरेडी होने को है, डिनर करते करते हमारे साथ कनेक्टेड है आप सभी को बोना पीछी हम कहेंगे। और चलिए बढ़ते हैं इस अगले तराने की ओर। अगला जो गाना है, इश्क में जीना इश्क में मरना, इस फिल्म का ये गाना होगा कुमार सानू जी की आवाज़ में, और गाना जाएगा खासकर सुदेवी जी आपके नाम वाकवा से आप हमें सुन रही हैं, आपकी ओर से गाना जाएगा आपकी दीदी लालिता के लिए जो ट्रियोले से हमारे साथ कनेक्टेड है, सभी कुशल फैमिली के लिए। देन वी हैव दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, माला, मालिंगा से सभी रामरतन परिवार जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यही गाना आपकी ओर से हमारी पूरी टीम के लिए। थैंक यू वेरी मच सुदेवी जी, ऐसे ही हमारे प्रोग्राम्स को एंजॉय करते रहिए, और ये गाना खासकर आपके लिए भी।

0: दिलों की आवाज।
1: कहते हैं ना कि जहाँ पर प्यार होता है वहाँ पर हर एक चीज अपने आप में बहुत खूबसूरत होती है। तो चलिए, आप भी अगर किसी गाने के जरिए अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो बेशक आपका वेलकम है 5250600 पर। अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। अगला तराना कुमार सानू अलका जी की आवाजों में होगा। गिरीश हरलोल जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और नमस्ते गिरीश जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप भी बिल्कुल ठीक है। और चलिए अगला गाना आपके नाम और सभी हरलोल फैमिलीज के लिए।

जहाँ पर दिल की सुने या दिमाग की सुने, और कन्फ्यूजन में कभी कभार हम गलत फैसला भी ले लेते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि हमें हमेशा अपनी दिल की सुननी चाहिए, क्योंकि दिल जो है कभी भी गलत नहीं कहता है, दिल जो है कभी कोई गलत फैसला नहीं करता है, और दिल जो है कभी किसी का नुकसान नहीं करता है। तो दिल जो कहता है वही करेंगे तो शायद अच्छा होगा। चलिए अभी के लिए बढ़ते हैं इस अगले गाने की ओर। अगला गाना जो है यहाँ पर खास कर जाता है स्वेनल की ओर से उनके भाई श्रवण के लिए, साथ में उनकी भाभी है कीर्ति, देन वी हैव कियान, नव्या, सभी तिलक फैमिलीज जो हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ कनेक्टेड है, एंड देन वी हैव आंतीश रामसरन जो स्विट्जरलैंड से इस समय हमें सुन रहे हैं। सो जाएगा ये गाना आप सभी के लिए, राजा भैया इस फिल्म से लिया गया, उदित नारायण एंड अलका जी की आवाज़ों में।

0: खुशियों की आवाज।
1: यकीनन 90s के गानों की बात ही कुछ और है, इतने रोमांटिक, इतने सूदिंग होते हैं कि क्या कहें। और इन गानों को सुनते सुनते कैसे समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता। लाइक अभी देखते ही देखते 8:15 ऑलरेडी बज चुके हैं एंड इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट वन। अगला जो तराना है हनीमून फिल्म से लिया गया है। चंदनी पुरुषोत्तम जी इस समय ब्रिटानिया से हमारा साथ दे रही है। ये गाना जाता है उनकी ओर से सभी पुरुषोत्तम फैमिली के लिए जो ब्रिटानिया से इस समय हमारे साथ कनेक्टेड है, और साथ ही हमारे लिए भी। ओह थैंक यू वेरी मच, और हमारे सभी लवली लिसनर्स के लिए।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: कहते हैं कि लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होना ही चाहिए जिससे हम अपने दिल की हर एक बात कह पाए, जिसके सामने ना ही कोई झिझक हो, ना ही कोई हिचकिचाहट हो, जहां पर बोलने के पहले 10 बार सोचना ना पड़े। आपको पता है कि आपको जज नहीं किया जाएगा या आपकी किसी बात पर कोई नाराज नहीं होगा। अगर आपके भी लाइफ में कोई ऐसा लाइफ पार्टनर है, कोई ऐसा दोस्त है, तो आप बहुत ही लकी है और उनको संभाल कर रखिएगा। चलिए अभी के लिए बढ़ते हैं हम इस अगले गाने की ओर। खून भरी मांग फिल्म का ये जो अगला तराना होगा, और ये गाना जो है जाता है माया जी आपके नाम, मोताय ब्लॉन्स से हमारे साथ कनेक्टेड है और कह रही है गाना हो जाए इनके सभी फैमिली मेंबर्स के लिए।

0: दिलों की आवाज।
1: चलिए दिलों की आवाज के सेकंड आवर में आप सभी का वेलकम है, आप सभी का स्वागत है। रात के 8:05 यहां पर हो रहे हैं और रेडियो मनोरंजन पर इस समय दिलों की आवाज ये प्रोग्राम चल रहा है जो चलेगा रात के 9 तक। और खूबसूरत गाने यहां पर आप ही की फरमाइश पर, आप ही के रिक्वेस्ट पर हम चला रहे हैं। एंड मूविंग ऑन टू दिस नेक्स्ट वन, विजय पथ का ये तराना है और ऑब्वियसली इसमें नजर आए थे अजय देव का, साथ में थी तब्बू, कुमार सानू और अलका जी की आवाज़ों में ये गाना जाता है रिहाना आपके नाम। यस, फिनिक्स से हमारे साथ जुड़ी हुई है, गाना इनकी ओर से हमारे तमाम सुनने वालों के नाम जो इस समय हमें सुन रहे हैं।

0: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: ऊपर वाले ने अपनी मोहब्बत के सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी, पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस पार नहीं आने देंगे, मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
2: ये नदियां जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

0: खुशियों की आवाज।
1: यकीनन कुछ बातें, कुछ जज्बात, कुछ एहसास सरहदों के पार जाते हैं, मतलब कि इन्हें ना ही कोई बांध सकता है ना ही कोई रोक सकता है, क्योंकि दिल के जो एहसास है, एक दिल जो है दूसरे दिल की बात समझ ही जाता है। तो चलिए, आप भी अपने दिल की बात किसी गाने के ज़रिए किसी को कहना चाहते हैं तो आप अपनी डेडिकेशन हम तक पहुँचा सकते हैं। अभी के लिए बारी है इस अगले तराने की, जो जाता है गुलशन जी आपकी ओर से, लवली एंजल आयशा के लिए, मामा प्रभा के लिए, सिस्टर दीक्षिता के लिए और बोला फैमिलीज के नाम।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: चलिए यहाँ पर माधुरी जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है और कह रही कि हमें भूल गए आप सुमी जी। बिल्कुल नहीं माधुरी जी, हम आपको बिल्कुल नहीं भूले हैं। माधुरी के लिए एक माधुरी का गाना नहीं हो ऐसे कैसे हो सकता है भला। तो चलिए तेजाब फिल्म का जो अगला गाना है आपके नाम हम करते हैं और साथ ही हमारी प्यारी परी के लिए।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें

0: दिलों की आवाज की आवाज दिलों की आवाज।
1: और चलिए यहाँ पर अब बारी है इस अगले तराने की, और इस समय हमारे साथ दारेन, श्वेता, रवीश, प्रिशा, लुवेशा और रोशनुआ के सभी आपादू परिवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और गाना जाता है आप सभी के नाम, गुनहगार फिल्म का ये तराना है, कुमार सानू और अलका जी की आवाज़ों में।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: चलिए साथ तो छूटता जा रहा है, यानी कि हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो ख़त्म होने को चला, और जाते जाते ये आखिरी गाना आप सभी लवली लिसनर्स के नाम हम करते हैं। 6:30 बजे से अभी तक आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपका प्यार भरा साथ हमें यूं ही हमेशा मिलता रहे। इसी के साथ आखिरी गाने के साथ हम आपसे विदा लेंगे। जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। जी हाँ, कल हम आपसे मिलेंगे भक्ति में शक्ति इस प्रोग्राम में, और साथ ही दोपहर के 12 से 2 बजे के बीच सुहाना सफ़र इस प्रोग्राम में। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ लवली लिसनिंग ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन। रात के 9 बजे से जो है सीधा प्रोग्राम आप रेडियो मॉरिशस से यहाँ पर सुन पाएंगे। तो नमस्कार, शुभ रात्रि आप सभी को हमारी ओर से।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के सवाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
3: नमस्ते, हमने के सब श्रोता लोग के स्वागत करते हैं जहाँ हमने के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम पे। और ये भोजपुरी तड़का कार्यक्रम तो हर खातिर लेके आए हैं जहाँ अभी से यानी कि 9:05 से 11 ले तो हमने के कार्यक्रम में तो हर स्वागत करते हैं जहाँ। और तो हर खातिर ढेर दुआ लेके आए हैं जहाँ अपन दिल में कि तो हर जीवन बहुत सुखमय रही, तो हर हर पल सुख से भरल रही और तो हर जीवन में प्रगति ही प्रगति रही, तो हर सेहत अच्छा रही। भोजपुरी तड़का लेके आए हैं जा तो हर खातिर और ये कार्यक्रम में भाग ले बजा तो 5251700055 पर सक बजा हमने के मैसेज भेजे या फिर 4028085 पर सक बजा टेलीफोन करे और बोले कौन गाना सुने खोजा था भोजपुरी के। और वैसे आज तो नाग पंचमी मनाई ली जा और नाग पंचमी पर हमने नाग देवता की पूजा करी ला जा। जैसे नाग देवता अपन सिर पर धरती के भार उठैले रहेलन और उसने तोहलोग के भी अपन जिम्मेदारी निभाए के शक्ति देहन नाग देवता, यही प्रार्थना करी ला जा। और ऐसे में हमने के कार्यक्रम में तोहर स्वागत करत हैं जा तोहर पसीन के गाना संगे और ये उम्मीद रखते जा कि जितना बन पड़ी हम तो लोग के खूब सुख शांति प्रदान करे के कोशिश करब जा। चला हमने के कार्यक्रम में हमने पवन जल बरसे गाना सुनी जा सबसे पहला और ये गाना देवचरण जद्दू जी गए हमन। चला सुनी जा उनकर आवाज़ में पवन जल बरसे में ये गाना कौन तरह से सजावल गलबा।

गणेशन हरी जी के गावल यानी कि रतन हरी जी के गावल सड़क सुरक्षा पर ही गाना और ये गाना हमने बजवा थे जा कौंकुप के सुनीता जी खातिर उनकर बगल से कुंकुमा के उनकर बहिन विमाला जी खातिर।

चले अभी सड़क सुरक्षा पर बात कर लीजिए, अब स्वास्थ्य पर बात करब जा। आत्माराम जी ई गाना साहिर जगारू जी के गावल सुने खोजत वन और सुनवाई खोजत वन पर बहिन सुदेवी के, बहिन ललिता, बहिन छोटी, बहिन प्रभावती के, औरी बेलिया के, पूरा इसनु परिवार के।

स्वास्थ्य के बारे में तो बात कर ली जा, अब चला तनी दिल के दर्द के बारे में बात कर। अब जा ना नुवेफों से गायत्री जी, अपन बेटा अजय खातिर गाना मंगले हो वन विरमाला दीनू जी के गावल, यानी कि मेरा दीनू जी के गावल। गायत्री जी गाना मंगले वन मायबू के मामी कल्याणी मोहन जी खातिर, अपन बेटा अजय खातिर, मोतायलों के भाभी का शकुंतला खातिर, नोवेल फ्रांस के सखी गीता बाई खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का तड़का चला भोजपुरी तड़का में अबरी कुत्तो हर खातिर जमनलाल चोईतू जी के गावली लेकुसवा होला गाना सुनवाईला जा और लेकुसवा ई गनवा हमने बजावत है जा अमृता जी खातिर अमृता जी रहेलन पे चित्र तरह ई गाना मंगले हवन पर पति रवीन खातिर और अपन बेटा सुजय खातिर।

बाबा सौदे मास में जब दौड़े लता बहुत कोई के दौड़ावे लाई चला अभी कुछ सुनी जा हमनी बहल गौरी जी के गावल गाना और ये गाना हमने अमृता जी खातिर बजवावत है जा पीतों से अमृता जी गाना मंगले हवन सोनिया और परी खातिर अपन पट्टो मीनाक्षी खातिर बेटा विशान खातिर और बिटिया पूनम खातिर

आप चला हमने सुनी जा कौन चिले के आल हवा कौन चिले के जाई बस विनोद शिवदत्त जी के ईसा चाई भरल गाना और ई गाना हमने बजावत है जाते अखूर से शांति जी खातिर शांति जी गाना मंगले हवन दागोचिया के अपन पूरा मलाठी परिवार खातिर अपन दागोचिया के अपन भगीना ओम खातिर और अपन भाई बलराम खातिर अभी स्ताशो पोम्प्रेम उसके स्ताशो में लापुलिस के काम करते हवन अभी रात के ड्यूटी पर हवन तबों को काश बली ला जाता बलराम जी।

समधी के लगल हिचकी गीता गजाधर जी के गावल गाना ये गाना हमने बजाव था जस सोहंती जी के पसीन पर सोहंती जी गाना मंगला हुआ अपन भाई राघव खातिर और अपन भाई विनेश खातिर

संभावती तुमन जी के गावली गाना है और ये गाना हमने बजावत है जा ललिता जी खाती है तो से ललिता जी ये गाना मंगले हवन अपन बहन सुदेवी खातिर बहन ज्ञानी देवीना और नीता खातिर छोटी जी प्रभावती जी हरी जी और आत्माराम जी खातिर सुखलाल मौसी उषा लुकाना और माला राम जवन खातिर

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का में तोहर खातिर उ गाना सुनवाओ चलावो जा। अब जोन हमसे मंगले हवन सुदेवी जी और जोन अपन ननद खातिर सब भौजी लोग खुशीला खुश रहेला गाय के। और ई गाना सुदेवी जी भाकवा से मंगले हवन गैले हो, मतलब ई गाना है सरिता बुथू जी के एल्बम में। और ई गीत सुदेवी जी मंगले हवन थ्रियोले से दीदी ललिता खातिर और कुशल परिवार खातिर, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना और माला खातिर, माला गया के राम रतन परिवार खातिर और हमने के सब श्रोता लोग खातिर सुदेवी जी मंगले हवन। गाना चला सुनी जा नन।

प्रकाश दुखी जी गेले हन जाने ले ले और ये रोमांटिक सन गाना हमने बजाओ थे जा अमित जी के पसीन पर। अमित जी रहेलन मोशवाजी बकिर अभी हवन अपन चाची के घरे, अपन चाची के घरे यानी कि बॉम्बू में संगे संगे अपन कुजें रवीन के गाना सुनत हवन सुनावत हवन अपन चाची के भी।

और चलग मच्छी मरवा के जीवन के बारे में सुनी जा। वैसे तो सब कार्य ही कठिन रहेला, जे अपन काम करेला तो कठिनाई से ही करेला, और कोई अपन शारीरिक थकान से करेला, कोई मानसिक थकान से करेला, सब कोई थक जाला। बकीर कोई कोई के कार्य में, कोई कोई के काम में जीवन के जंजाल हो जाला, जान के जंजाल हो जाला। चलो भगवान से प्रार्थना करेला जा, सब कोई अपन काम बड़ी सुविधा के साथ करी। जय हरलाल जी के गावल ई गाना मच्छी मरवा के बारे में बोलत हवन, और ही हमने ई गाना बजवावत है जय रवि जी के नाम।

गणपत सत्यनी संज के गावाली छोटे मोरे मंगवा और ये गाना हमने बजाया था जब विवेक जी खातिर वाले दिफर से विवेक जी ये गाना मंगले हवन ते रुझ के रतना जी खातिर

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का,
2: भोजपुरी तड़का में अभी प्रभा जी के संदेश पढ़ी ला जैसा प्रभा जी बेलगोज रहलन और ये अभी अभी परी तालाब से आवत हवन और बोलत हवन परी तालाब में भक्त लोग के जितना भीड़ बा उ देख के उनका मन बहुत गदगद होकर और इ खातिर एगो गाना शिव जी पर आधारित मंगले हवन श्रावण मास के अवसर पर सब हमने के श्रोता लोग के श्रावण मास के मंगल कामना देवत हवन प्रभा जी और लीलो माथुर सुकंज के गावर ये गाना चल सुनी जा ये गाना प्रभा जी सब यात्रा लोग के नाम करत हवन जे जात हवन जा जे लौटत हवन जा और मन में भक्ति से ओत प्रोत हवन जा ये गाना उन लोग सब कोई के नाम चला शिव जी के महिमा गाइला जा संगे संगे

एक गाना सुनी जा हमने बंधु मोहम्मद खालिद जी के गावल यानी कि राजा जी के गावल तो चले राजा की आवाज में ही गाना सुनी जा हमने थोड़ा जी के जो ना गुजार

10:40 और भाई 11 बजे लेक हमने की कार्यक्रम चले और 11 बजे लेक तो के भोजपुरी के मस्त मस्त गाना सुनावा थे जा रहा हमारा आम तो हर जगह ले वन ई फुलिया मोरे बाबा के देवर चला ई फुलिया के बारे में सुनी जा हमने मीरा के पसंद के गाना मीरा जी का था।

नैहर के चिजवन तो अपने अपने रहेला काबल बा अभी चला शशि सोहदेव जी के सुनी जा कबूतर और कबूतरी के ई प्रेम कहानी चला सुनी जा हमनी वीना जी के पसीद पर वीना जी गाना मंगले हुआ ने अपन दोनों बेटी खातिर स्नेहा और काव्या खातिर।

और चलो जे बीतल दिनवा के बारे में सुने के खुशी रहेला जाता चलो बीतल दिनवन कैसे रहता हल हरिपाल हरिपोल जी की आवाज़ में सुनब जा अभिमन्यु हरिपोल जी गावत हवन अभिमन्यु हरिपोल जी जिनकरा हम माहिन सौत्या हमनी माहिन सौत्या बोलीला जा तो चलो माहिन सौत्या से सुनी जा आज हमनी बीतल दिनवा के बाद।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का। चला भोजपुरी तड़का में हमने बसंत सुपोल जी के गावल कमर ठोला गाना सुना इला जाता है। ये गाना हमें छोटी जी खाते चला हुआ था जा बोलो जे के छोटी जी ये गाना बड़ी पसंद करेला चला छोटी जी गाना तो हर नाम

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: तो भोजपुरी तड़का कार्यक्रम के समय है जे पर पूरा हुआ था हम के साथ दिलाए कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम खड़ा होवेला तो हर पसंद के साथ तो हर फरमाइश के साथ तो हर मिसाज या फिर कॉल के साथ तो एक कार्यक्रम में अपन पसंद जाहिर कर ले कर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम हजा पर समाप्त हुआ था 11 बजे सुनिया जा आज के सुनहरे पल कार्यक्रम पुराना गीत के कार्यक्रम गिनेशा से आवत हला फिर से मिलब जा और ये गो भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में साथ साथ रह जा। आवत हला लेक शुभ रात्रि नमस्ते।

सुनहरे पल सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। गुड इवनिंग जी, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। मैं हूँ आपका दोस्त जो साथ निभाने आई हूँ आपकी सुनहरे पल में सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। वैसे देखा जाए तो कभी कभी हम जिंदगी में इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते, लेकिन एक पुराना गीत बस

दो मिनट के लिए ही सही हमें रोक देता है, मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है और याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ भागने का नाम नहीं है, महसूस करने का भी नाम है। तो आज थोड़ी देर के लिए हर टेंशन को साइड में रखिए और इन हसीन नगमों के साथ दिल को सुकून दीजिए। ये है सुनहरे पल, जहां हर गीत एक नई याद बनकर आपके दिल में उतर जाते हैं।

वैसे मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पुराने गीत सिर्फ सुने नहीं जाते हैं, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं वो महसूस किए जाते हैं। वैसे हर लफ्ज में सच्चाई है, हर सुर में कहानी है और हर धुन में एक एहसास। और इसीलिए तो सालों बाद भी जब ये गीत बजते हैं ना, हमारे दिल खुद ब खुद उनके साथ गुनगुनाने लग जाते हैं। किनिशा आपका साथ दे रहे हैं इस खूबसूरत से सफर में जिसका नाम है आपका सुनहरे पल। और अगले कुछ लम्हों तक हम साथ मिलकर यादों का एक और खूबसूरत सफर तय करेंगे। क्या ख्याल है आपका?

वैसे दोस्तों आज मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी। अगर आपको अपनी जिंदगी का सिर्फ एक ही गीत हमेशा के लिए चुनना हो तो वो कौन सा होगा? शायद उस गीत के साथ कोई याद जुड़ी होगी, बहुत ही खास याद। मेरा मतलब है कोई अपना जुड़ा होगा या कोई खूबसूरत लम्हा। आज के इस सफर में शायद वही गीत आपको फिर से मिल जाए। गिनेश आपका साथ दे रहे हैं सुनहरे पल में और हम चाहते हैं कि आप भी शिद्दत से हमारा साथ दें। आराम से बैठ जाइए, गुनगुनाने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये अगला नगमा सीधे हमारे दिल से आपके दिल तक, आपके लिए स्पेशली ऑन रेडियो मॉरिशस।

0: अरे मेरे मोहब्बत के प्रोफेसर, अगर इतना ही पसंद आ गया था तो एक अदद प्यार का सबक उसे भी पढ़ा दिया होता।
1: माफ करो बाबा, हम वो प्रोफेसर हैं जो जिंदगी में सिर्फ एक स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। अपनी किस्मत तो देखो, ऐसा कुड़ शागिर्द मिला है कि जिंदगी पढ़ाते पढ़ाते गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें प्यार करना नहीं आएगा।
0: नहीं आएगा? नहीं आएगा?
1: नहीं आएगा?
0: नहीं आएगा।

वैसे दोस्तों क्या आपको पता है कि रेडियो की सबसे खूबसूरत बात क्या है? रेडियो की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ सिर्फ आवाज नहीं होती है, लेकिन हर आवाज के साथ एक तस्वीर भी बन जाती है। आज जब ये गीत बजेंगे, कोई अपनी माँ को याद करेगा, कोई अपने पापा को, कोई बचपन को, या शायद कोई अपनी पहली मोहब्बत को। इसीलिए तो हम कहते हैं कि गीत कभी पुराने नहीं होते, यादें कभी पुरानी नहीं होती हैं, और उनको

देखा जाए तो हर जेनरेशन का अपना म्यूजिक होता है, है ना? लेकिन पुराने बॉलीवुड के गीत एक ऐसा दौलत है जो हर जेनरेशन को पसंद आती है। दादा दादी भी इन्हें पसंद करते हैं, मम्मी पापा भी, और आज की जेनरेशन भी इन गीतों की सिंप्लिसिटी और मेलोडी की दीवानी है। तो आइए मिलकर सेलिब्रेट करते हैं इस सुनहरे दौर को सिर्फ सुनहरे पल में।

0: एक घंटे का ये सफर कैसे बीता वैसे दोस्त मुझे वाकई में पता नहीं चला क्योंकि गीत इतने खूबसूरत हमने पेश किए हैं आपके लिए सिर्फ आपके लिए तो चलिए जी बाकी जो हमारे दोस्त अभी भी काम पे हैं बोको आज टू यू जो अभी सोने की तैयारी में है गुड नाइट टू यू और फिलहाल हमें इजाजत दीजिए हमें तो जाना पड़ेगा ना ताकि हम वापस आ सके फिर से एक बार आपका साथ देने के लिए सुनहरे पल में शुभ रात्रि शब्बा खैर मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स
1: तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: ओ हीर की खातिर मर गया राजा, छोड़ के तख्त हजारा।
2: So what?
1: और हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी।
2: Big deal, dude.
1: हीर तो फिर दी शॉपिंग कर दी, दिन भर सेक्टर सतारा भाई, दिन भर सेक्टर सतारा।
2: चढ़िया चा फैशन दा।

0: सी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: आरती मन मानती कहना क्यों नहीं मानती, पाठशाला में छुट्टी हो गई, बस्ता क्यों नहीं बा